नमस्कार, एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आश्विन माह की 13 तारीख, तदानुसार 5 अक्टूबर 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 42 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है। हम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं।

0: हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पारमेलिन वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ आज सुबह 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रपति पारमेलिन आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पारमेलिन से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि रूस कई ऐसे अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में 62वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह का समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार और निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध है। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। समारोह सुबह 11 बजे बोगीबील टर्मिनल पर आयोजित किया जाएगा। पहली खेप में असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित मेथेनॉल बांग्लादेश के ढाका स्थित पानगांव बंदरगाह ले जाया जाएगा। इसके लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर पारिवारिक पेंशन भोगियों से जुड़े मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर वाली पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माय भारत के माध्यम से कल देश भर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया।

0: विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आरंभ इस पहल का उद्देश्य मादक पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ नशा मुक्त जीवन शैली को प्रोत्साहन देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदन वार, जो रिले किया जाएगा विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

चिंतन। अहंकार ही असल रूप में माया है, अतः मनुष्य को इसका त्याग कर देना चाहिए। अहंकार को त्याग कर ही मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। ये विचार स्वामी रामकृष्ण परमहंस के हैं। ये था आज का चिंतन, और अब भक्ति रचनाएं।

0: अपने देश की वो सेवा अपनी कौम की लगन लगा के चल,
1: लगन लगा के चल, कदम मिला के चल, कदम मिला के चल।
2: इस देशभक्ति गीत के साथ ही आज का वंदनवार कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है झरोखा, हमारे आज रात तक प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस की अगली कड़ी। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम संगीत सरिता में सुबह 6:45 पर सुनिए श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार हैं गायक एवं संगीतकार पद्मश्री शेखर सेन। पुराने फिल्मी गीत सुनिए भूले बिसरे गीत प्रोग्राम में सुबह 7:00। 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक होगा पहले सुबह 8:30 पर और फिर रात 8:15 पर। कार्यक्रम त्रिवेणी सुनिए पहले सुबह 8:15 पर और फिर दिन में 2:00।

जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम आज का अखबार पेश किया जाएगा सुबह 9:30 पर। लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ होगा सुबह 10:05 पर। आज इस कार्यक्रम का विषय होगा शिक्षक हमारे भविष्य निर्माता।

दिन में 11 बजे सुनिए जनगणना 2027 दूसरे चरण के बारे में डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशंस हरियाणा डॉक्टर ललित जैन से रमेश कपूर की बातचीत। 11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शेरो नगमा। दोपहर 12:05 पर सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे दोपहर 1:05 पर हिंदी में और 1:10 पर पंजाबी में। प्रादेशिक समाचार आप शाम को भी सुन सकते हैं 6:10 पर हिंदी में और 6:20 पर पंजाबी में। कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे दोपहर 1:15 पर और फिर शाम 5:05 पर।

1:30 पर होगा कार्यक्रम सुरीला सफ़र। 2:30 पर सुनिए कार्यक्रम सदा बहार नगमे। कार्यक्रम सखी सहेली होगा 3:00। शाम 4:00 पिटारा में सुनिए कार्यक्रम सेहतनामा में PCOD IVF इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। शाम 5:30 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी समाचार समीक्षा।

कुछ पंजाबी गीत हम आपको सुनवाएंगे, पहले शाम 6:35 पर, फिर रात 7:47 पर और फिर सुरसांझ कार्यक्रम में रात 10:32 पर। जयमाला ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:00। रात 8:00 हवा महल कार्यक्रम में सुनिए नाटिका परिवर्तन का दूसरा भाग।

कार्यक्रम आपके लिए प्रसारित होगा रात 9:30 पर। सुनिए कार्यक्रम आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम संगीतकार उषा खन्ना पर केंद्रित होगा और रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत। झरोखा में आप सुन रहे थे हमारे आज रात तक प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अब आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस पाठ, जो रिली किया जाएगा विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

लक्ष्मण का बाण सीधा मेघनाथ की छाती में लगा। देह त्याग करने से पहले उस महावीर ने छल कपट का त्याग किया और सच्चे हृदय से श्री राम और लक्ष्मण का स्मरण किया। हनुमान और अंगद विह्वल स्वर में कह उठे, हे वीर, धन्य है तेरी माता जिसने अपनी कोख में तुझे धारण किया, और धन्य है तू जिसे लक्ष्मण जी के हाथों सदगति प्राप्त हुई। हनुमान मेघनाथ का पार्थिव शरीर रावण के महल के द्वार पर रखाए। पुत्र की ये गति देख रावण मूर्छित हो गया। अन्य रानियों सहित मंदोदरी के विलाप से अंतःपुर द्रवित हो गया। बाहर नगर में शोकातुर प्रजाजन रावण को कोस रहे हैं, जिसने अपने अभिमान और हट के कारण लंका को ये दिन दिखाया। लेकिन रावण अपनी स्त्रियों को एक दार्शनिक की भांति उपदेश दे रहा है कि इस जगत के समान ही शरीर भी नाशवान है। रात्रि बीत जाती है। वानर सेना एक बार फिर युद्ध भूमि में आ डटी है। रावण ने पवन गति से दौड़ने वाला अपना रथ सजाया और अपने विश्वस्त योद्धाओं को साथ ले रणभूमि की ओर चल पड़ा। चारों ओर भयानक अपशकुन होने लगे।

0: श्रोताओं नमस्कार, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन, आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार, शताब्दी की भक्ति रचनाएं ये श्रृंखला इन दिनों प्रसारित हो रही है संगीत सरिता कार्यक्रम में। पिछली कड़ी में हम बात कर रहे थे केसी डे के बारे में और कार्यक्रम के अंत में शेखर दादा ने एक रचना सुनाई थी और वो भटियाली संगीत, जो समय की पाबंदी के कारण वो रचना पूरी नहीं हो पाई थी। और भटियाली संगीत के बहुत सारे रंग हैं, शेखर दादा बहुत अच्छा गाते हैं ये कहने की ज़रूरत नहीं है, वो तो एक साधक है और ऐसे गुणी कलावंत का सानिध्य हमें मिला है, हमारा सौभाग्य है। शेखर दादा, आज हम आपसे इस कड़ी में अनुरोध कर रहे हैं कि वो जो भटियाली संगीत जहाँ पर छोड़ा था कल की कड़ी में, आज वो सुना दीजिए प्लीज़ हमारे श्रोताओं को।
2: हाँ बिल्कुल ममता जी, और संगीत सरिता के सभी श्रोताओं को एक बार पुनः प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ।

0: करना ही है।
1: श्यामा यानी माँ काली का नाम है।
2: जी
1: तो शक्ति के रूपों के ऊपर हमारे भजन होते हैं और ये भजन 500 साल पुराने हैं। 500 साल, 550 साल, 300 साल, 450 साल, ऐसी इनकी अवधि हो चुकी है और वो आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं।
2: जी।
1: सब रागों पर आधारित हैं और एक बहुत बड़ा नाम उनका 1930 के कालखंड में है। मैं केवल उनका नाम उल्लेखित कर रहा हूं ताकि श्रोताओं को मालूम हो और वो खुद अपने शोध से उनको सुन लें। स्वर्गीय पन्ना लाल भट्टाचार्य जी
2: जी
1: के द्वारा जो श्यामा संगीत गाया गया वो बहुत ही अद्भुत है।
2: जी।
1: इसके अलावा रविंद्रनाथ ठाकुर जी का योगदान है जिसको हम रविंद्र संगीत के नाम से जानते हैं और उसमें बहुत सारा हिस्सा जो है वो निर्गुण भक्ति का भी है क्योंकि वो स्वयं ब्राह्म समाज से प्रेरित थे। उनके जो पिता थे वो स्वयं ब्राह्म समाज के बहुत बड़े आचार्य माने जाते थे। उनकी रचनाओं में आपको बहुत सारा ब्राह्म संगीत यानी कि निर्गुण संगीत मिलेगा
2: जी।
1: और उसी कालखंड में चूंकि हम लोग आकाशवाणी के लिए कार्य कर रहे हैं तो आकाशवाणी के एक बहुत अद्भुत संगीतकार थे, उनका नाम था काजी नजरुल इस्लाम
2: जी। जी।
1: और उनके जो रचनाएं हैं वो रेडियो के लिए कंपोज करते थे और वो सारी रचनाएं केवल एक बार रेडियो पर प्रसारित होती थी और आज वो सारी रचनाएं अमर रचनाएं हो चुकी हैं जो केवल रेडियो में एक गाना हर दिन उनको दिया गया था कि हर दिन आप एक गाना गाइए।
2: जी जी।
1: तो वो नजरुल गीति के नाम से वो रचनाएं हमारे पास हैं
2: मौजूद।
1: लेकिन आज की इस कड़ी में जिन महान कलावंत, जिन महान शिल्पी मैं सुनाना चाह रहा हूं उनको उस कालखंड में कहा गया कि ये आधुनिक मीरा हैं।
2: जी जी।
1: 300 से अधिक गाने उन्होंने गाए, फिल्मों में भी और प्राइवेट भी
2: जी,
1: और बहुत बड़े बड़े संगीतकारों के साथ, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के साथ, काजी नजरुल इस्लाम जी के साथ, कमल दास गुप्ता जैसे महान संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया है। और उनका एक, मैं चाहता हूं कि एक बहुत ही सुंदर उनकी एक अमर रचना है। सबसे पहले तो मैं नाम उनका बता रहा हूं, आदरणीय ज्योतिका रॉय जी।
2: जी जी।
1: ज्योतिका रॉय जी पूरा जीवन एक साध्वी की तरह वो रही, वो बिल्कुल बहुत ही आनंद में रहने वाली, आपको उनसे मिलके कभी लगा ही नहीं। मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं 3-4 बार उनसे मिला हूं, वो हमारे घर पर भी आई, लेकिन इतने सरल मन की, बच्चे जैसी बिल्कुल
2: जी। क्या बात है।
1: और जब गाने बैठे तो सब भूल जाएं।
2: क्या बात।
1: तो उनका एक प्रसिद्ध भजन है, घूंघट का पट खोल तो हे पिया मिलेंगे। मैं चाहूंगा हमारे सभी श्रोता ये अमर रचना सुने आदरणीय ज्योतिका रॉय जी के कंठ से।

0: ज्योतिका राय के स्वर में अभी ये रचना हमारे श्रोता सुन रहे थे। तो दादा अभी आप क्या सुनाएंगे?
1: मैं चाहता हूँ कि आज ज्योतिका राय जी का उल्लेख हो रहा है
0: जी,
1: तो उनकी एक रचना का तो मैं केवल नाम ले रहा हूँ, श्रोता खुद ढूंढ कर सुन ले। बहुत प्रसिद्ध भजन था उनका, तुलसी मीरा सूर कबीर, एक तुणीर में चारों तीर।
0: क्या बात है,
1: ऐसे बहुत प्रसिद्ध उनका भजन हुआ था। मुझे इसलिए याद है कि मेरी माँ गाया करती थी।
0: क्या बात।
1: और उनकी एक और रचना है जो मैं चाहता हूँ कि हमारे श्रोता सुने, मिश्र शिवरंजनी और काफी थाट में ये रचना है, तन मन पे मनहर ने रंग दियो डार। बहुत ही सुंदर, इतनी अच्छी रचना ज्योतिका रॉय जी की है। मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोता आनंद लें आज की इस कड़ी में।
0: जी।

0: श्रोताओं, संगीत सरिता की आज की ये कड़ी बस यहीं तक। अब हमें अनुमति दीजिए,
1: कल इसी श्रृंखला में फिर मिलेंगे। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, ये श्रृंखला आप सुन रहे थे। आमंत्रित कलाकार, गायक, संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी आपने सुनी। कल 6वीं कड़ी सुनना ना भूलिएगा। तबला संगत आशीष बिश्वास, तकनीकी सहायक HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इसका

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
3: घर का सपना हो नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ होम ऑटो पर्सनल पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
4: एड्स HIV ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
5: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
4: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
5: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
4: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: स्वच्छता ही सेवा है।
7: प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
6: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं बारूद फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, हनी ईरानी और शेख मुख्तार ने। इसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है खयाम का।

0: बोलो बा से क्या होता है?
1: बंदर।
2: बादुर।

0: क्या होता है?
1: टीटर।
0: डब्बे।

0: सुनिए एक खुशखबरी। कहिए ना, आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
1: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022400।

0: 1-800-224-662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: और अब आइए आपको सुनवाते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में आवारा इस फिल्म का गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: स्वच्छता ही सेवा है।
2: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
3: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
2: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
3: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
4: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।

0: लता मंगेशकर के स्वर में अभी आपने सुना जिया सरहदी का लिखा ये गीत। अनिल बिस्वास ने इसकी धुन बनाई। फिल्म का नाम अनोखा प्यार।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चार दिल चार राहें। इससे मीना कपूर और साथियों ने इसे गाया है, सही ने इसे लिखा है और अनिल बिस्वास का संगीत है।

साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत अभी आपने सुना। आइए अब आपको सुनवाते हैं आर पार, इस फिल्म का गीत गीता दत्त की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है, संगीत ओपी नैयर का।

तुम्हारे हाथों में मेहंदी रचेगी, तुम्हारी मुरादें भर आएंगी, तुम्हारे सपने सच्चे हो जाएंगे। उस दिन दीदी,

0: आ फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज लता मंगेशकर की, शैलेंद्र की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
2: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
1: पहला, असुरक्षित यौन संबंध, यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
2: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
1: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। आइए इस युगल गीतों के कार्यक्रम का आगाज करते हैं लता मंगेशकर और मुकेश के गाए इस गीत के साथ, जिसे लिखा है इंदिवर ने, कल्याण जी आनंद जी ने इसकी धुन बनाई है। फिल्म का नाम सरस्वती चंद्र।

0: मुकेश और सुमन कल्याणपुर के स्वरों में अभी आपने सुना साथी फिल्म का गीत। इसे लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और नौशाद का संगीत।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।

0: झुक गया आसमां, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। हसरत जयपुरी के बोल थे और धुन बनाई शंकर जयकिशन ने। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी
1: और वो

0: इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: हम है राही प्यार के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से और इस समय वक्त है एक अंतराल का।

0: स्वच्छ भारत है एक बड़ा अभियान, सब मिलके करें अपना योगदान।
1: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
3: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

0: विविध भारती से आप सुन रहे थे कार्यक्रम हम है राही प्यार के। अब ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। नेहा अगरकर देसाई को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे। फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट ने विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की थी। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण के साथ 85 पदकों पर अपना अभियान समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पहमला वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ आज सुबह 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी।
1: इस वर्ष फरवरी में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था। इस यात्रा का महत्व इस दृष्टि से और बढ़ जाता है कि वह इस महीने की 7 तारीख को दूसरे भारत EFTA प्रॉस्पेरिटी समिट में भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। EFTA देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश साझेदार है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच दीर्घकालिक मैत्रीपूर्ण संबंध है। राष्ट्रपति की इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही आपसी हित के नए क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति पहमला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पहमला से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे।
2: आज इस मालवाहक यात्रा के शुभारंभ के साथ ही डिब्रूगढ़ एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग व्यापार केंद्र के रूप में अपनी स्वतंत्रता पूर्व विरासत को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएगा। 8 दशकों से अधिक समय के बाद पहली बार असम से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए सीधे एक अंतर्राष्ट्रीय माल खेप रवाना की जाएगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज सुबह 11 बजे इस कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पहली खेप में नामरूप स्थित असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड द्वारा उत्पादित 1080 टन मिथानोल भेजा जा रहा है। 2 नवीनीकृत मालवाहक पोत इस खेप को बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह तक पहुंचाएंगे। डिब्रूगढ़ से जादव गोगोई के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और लक्षद्वीप में आंधी तूफान के साथ बारिश और बिजली चमकने का अनुमान है। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मौसम के ऐसा ही रहने की उम्मीद है। उधर उत्तर प्रदेश में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने के बीच लखनऊ जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। गोमती नदी के निचले इलाकों में लखनऊ शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारी और संयुक्त पुलिस आयुक्त ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाने के लिए तत्काल 10 नाव तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र, निरंतर प्रतिबद्धता और सुशासन से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज बात एक जिला एक उत्पाद पहल की।
1: मिजोरम के अधिकारियों ने बताया है कि लुंगलेई जिले में केले की खेती करने वालों ने केंद्र की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत केले से बने उत्पादों से लगभग 3,78,00,000 रुपए कमाए हैं। लुंगलेई के लिए केले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पाद के तौर पर चुना गया है। राज्य सरकार इसकी खेती को बढ़ावा दे रही है और केले से चिप्स, जूस और खाने की दूसरी चीजें बनाने के लिए प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा दे रही है। लुंगलेई की उपायुक्त नवनीत मान ने बताया कि केले की फसल को तब चुना गया जब जिला प्रशासन ने बागवानी विभाग के साथ मिलकर जिले की खेती की क्षमता का अध्ययन किया और पाया कि इस इलाके में केले की अच्छी पैदावार होती है।
2: हमारे जिले में केले की खेती की बहुत संभावना है। इसे और आगे बढ़ाने के लिए हमने ऐसे नए उद्यमियों और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना शुरू किया है जो केले से बनी चीजों जैसे केले का जूस, चिप्स और केले के फूल में मूल्य संवर्धन का काम कर रहे हैं। हम उन्हें ट्रेनिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग में भी मदद दे रहे हैं।
1: उपायुक्त ने ये भी कहा कि प्रशासन किसानों को केले से बने उत्पाद बेचने में मदद करने के लिए बड़े सरकारी कार्यक्रमों में स्टॉल भी लगाता है। फिलहाल लुंगलेई जिले के लगभग 17 गाँवों में केले की खेती हो रही है जिसमे करीब 300 से 400 परिवार शामिल है। आइजोल से आइजक जोरम सांगा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। इटली के अखबार कोरियेरे देला सेरा की रिपोर्ट के अनुसार फ्लाई दुबई विमान के ओमानी सह पायलट ने विमान के अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने का प्रयास किया।
3: रिपोर्ट में इजरायली खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि अल हमामी की मूल साजिश कैप्टन स्मिथ मच्छर की हत्या कर विमान को इजरायल के तल अवीव ले जाकर वहां किसी गगनचुंबी इमारत से टकराने की थी। उसने ऑटो पायलट बंद कर विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। करीब 30 सेकंड में विमान 16,000 फीट नीचे आ गया और जमीन से टकराने की स्थिति में पहुंच गया। उसने विमान के नियंत्रण तंत्र को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की लेकिन यात्रियों ने उसे काबू कर लिया। इजरायल ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताया और इस बात की जांच कर रहा है कि ओमान के पायलट को तल अवीव जाने की अनुमति कैसे मिली, जबकि इजरायल और ओमान के बीच राजनयिक संबंध नहीं है और इजरायल की सुरक्षा नीति के तहत इस तरह की उड़ान की अनुमति नहीं है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा।
4: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहां भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में दिव्यांगजनों, विशेष रूप से IED विस्फोटों से प्रभावित

0: प्रभावित लोगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं।
1: बस्तर के नक्सल मुक्त होने के बाद इन विस्फोटों में हमने महत्वपूर्ण अंग गंवा चुके दिव्यांग लोगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए जगदलपुर में 5 से 7 अक्टूबर तक और दंतेवाड़ा में 15 से 17 अक्टूबर तक निशुल्क शिविर लगाए जा रहे हैं। दिव्यांग जनों के लिए शिविर स्थल पर आने जाने के लिए निशुल्क परिवहन के साथ भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। आकाशवाणी समाचार रायपुर।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा के कल्याण और समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने जनहित के कार्यों को भी बढ़ावा दिया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माय भारत के माध्यम से कल देशभर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1,00,000 से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए X@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर किए जा रहे प्रयासों के बारे में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को जनसत्ता सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। बकौल दैनिक जागरण, विदेश मंत्री ने कहा हाल में भारत सिर्फ पैरवी करने से परे जाकर थोड़ा और अधिक जुड़ा है। GST में गिरफ्तारी के अधिकार पर लगाम, नवभारत टाइम्स और राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि GST परिषद की इस सप्ताह बैठक में कर अधिकारियों से गिरफ्तारी का अधिकार वापस लिया जा सकता है और किसी भी गिरफ्तारी के लिए अदालत की मंजूरी को अनिवार्य किया जा सकता है। भारत 20 और देशों में डिफेंस विंग स्थापित करेगा, बढ़ेगा रक्षा निर्यात, हिंदुस्तान ने लिखा है। इससे भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता समेत विभिन्न वैश्विक मंचों पर समर्थन जुटाने में मदद मिलेगी। कैप्टन स्मिथ दुनिया के हीरो, प्रधानमंत्री मोदी संग इसराइल आमंत्रित। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की भारतीय पायलट स्मिथ से फोन पर की गई बात और सराहना को दैनिक जागरण ने प्रकाशित किया है। उधर दैनिक भास्कर ने कैप्टन स्मिथ पर हमला करने वाले को पायलट के बयान को दिया है। को पायलट ने कबूला, विमान क्रैश कराना चाहता था। जापान में संपन्न एशियाई खेलों में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर अमर उजाला की सुर्खी है। भारत के 21 स्वर्ण पदकों में से 14 में रही बेटियों की भागीदारी, 24 साल बाद बेटों से आगे रही। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है। गुजरात के महसाणा जिले में पेंशन के पैसों से 75 वर्षीय दिनेश भाई और उनकी पत्नी देविंद्रा बेन ने रेगिस्तान में तैयार किया जंगल। 5 बीघे में 5,000 से ज्यादा पेड़, हजारों परिंदों का घर बना।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति की पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की चेतावनी जारी की। भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे। फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट ने विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की थी। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण के साथ 85 पदकों पर अपना अभियान समाप्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम त्रिवेणी विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
1: आइए सुने त्रिवेणी।

दोस्तों आइए विचार करें कि पर्यावरण को बचाने की मुहिम किस तरह से चलाई जाए। पर्यावरण प्रदूषण के दूरगामी दुष्प्रभाव बहुत ही घातक हैं। वायुमंडल का ताप बढ़ रहा है, ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो रहा है, हवा प्रदूषित हो रही है, वनस्पतियां नष्ट हो रही हैं, हवा में विषैले कण घुल रहे हैं, जल प्रदूषित हो रहा है, इंसान तमाम बीमारियों से ग्रस्त हो रहा है। क्या अब भी हमें सचेत नहीं होना चाहिए? अगर पर्यावरण सुरक्षा के प्रति अभी भी हम सजग नहीं हुए तो ऐसी धरती सिर्फ इतिहास के पन्नों में अंकित रह जाएगी।

दोस्तों, जिस तरह हमारा जनजीवन पर्यावरण से प्रभावित होता है, उसी तरह हमारे कार्यकलापों से पर्यावरण प्रभावित होता है। लकड़ी के लिए जब हम पेड़ काटते हैं तो भूल जाते हैं कि धीरे धीरे पूरे जंगल समाप्त हो रहे हैं। जंगल समाप्त होने से वन्य प्राणी कम हो रहे हैं, जलाशय सूख रहे हैं, कुछ जंगली जीवों की तो पूरी की पूरी प्रजाति ही नष्ट हो रही है। गाँव के भीतर कई शहरों में भी वन्य प्राणियों के प्रवेश का ये बहुत बड़ा कारण है। इसलिए सबसे पहले पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई जाए, नए नए पौधे लगाए जाएं।

0: दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, थल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण शामिल हैं। नदियों में गंदगी फेंकना, घर के कचरे को खुले में फेंकना, तेज में लाउडस्पीकर का प्रयोग करना, कारखानों का धुआं, इसके अलावा बहुत सारा ई कचरा, ये सब जिम्मेदार हैं पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने में। आइए त्रिवेणी तट पर विचार करें, जितना संभव हो प्रदूषण न फैलाएं। पर्यावरण को बचाने के लिए हरियाली के बीज रोपें। लहलहाएंगे जब आपके रोपे पेड़ पौधे, तो आपका मन भी खुशियों से झूम उठेगा।
1: हरी

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
2: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
1: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
2: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
1: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं।

0: एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
1: गंदगी को दूर भगाओ, भारत को स्वच्छ बनाओ।

आपने ट्यून किया है विविध भारती, देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक का आगाज कर रहे हैं भुज द प्राइड ऑफ इंडिया इस फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने। मनोज मुंतशिर की रचना है, आरको का संगीत।

0: किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की

शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

डोमिनिक सेरिजो, लॉय मेंडोंसा और क्लिंटन सेरिजो की आवाजों में ये गीत अब सुना। और अब आइए आपको सुनवाते हैं तनु वेड्स मनु। इस फिल्म का गीत पूरन चंद वड़ाली, प्यारे लाल वड़ाली की आवाजों में। राजशेखर ने इसे लिखा है, कृष्णा का संगीत।

0: ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੂਈਆਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ HIV ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
1: ਅੱਜ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਓ ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ HIV ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ HIV ਦਾ ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਕਰਵਾਓ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1097 ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਸ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ
2: हम सबका यही सपना स्वच्छ भारत हो अपना
1: एड्स HIV ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे
3: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी ये क्या है कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण
1: पहला असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना दूसरा संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना तीसरा संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना
3: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से मैं बताता हूँ HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाना

0: सकता है। तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
1: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
0: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
1: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: साथियों, इन दिनों देशभर में वन्य प्राणी सप्ताह भी मनाया जा रहा है। हर साल 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक इसे मनाया जाता है। इस सप्ताह का उद्देश्य वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। जंगलों में रहने वाले जानवर हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाघ, हाथी, हिरण, पक्षियों से लेकर छोटे छोटे जीव तक प्रकृति के संतुलन में सभी की अपनी अपनी भूमिका है। याद रखिए, वन्य जीव बचेंगे तभी जंगल बचेंगे, और जंगल बचेंगे तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं रॉकस्टार फिल्म का गीत AR रहमान, जावेद अली और मोहित चौहान की आवाजों में। इरशाद कामिल ने इसे लिखा है, सुरों में ढाला है AR रहमान ने।

श्रोताओं, हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावास दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानजनक आवास के अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। विश्व पर्यावास दिवस 2026 की थीम है एडिक्वेट हाउसिंग फॉर ऑल, यानी सभी के लिए पर्याप्त आवास। ये थीम ऐसे आवास की जरूरत पर जोर देती है जो सुरक्षित, किफायती और सभी के लिए सुलभ हो। आखिरकार बेहतर आवास ही बेहतर और समावेशी समाज की नींव है।

0: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
1: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
0: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
1: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
2: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
3: मैदा टीका ला लिया, और तू भी ला ले।
4: नहीं यार, मैं नहीं लौना।
3: ऐता फिर यार मार वाली गल होगी।
4: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं, दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
5: आज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार ये तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्तिक और बॉम्बे जयश्री की आवाजों में फोर्स फिल्म का गीत, जावेद अख्तर की रचना, हैरिस जयराज का संगीत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम विविध भारती से। आइए आप कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि हर साल अक्टूबर को 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये दिन उन सभी शिक्षकों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का अवसर है जो हमारे जीवन को ज्ञान, संस्कार और सही दिशा देते हैं। शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते बल्कि हमारे व्यक्तित्व और भविष्य को भी आकार देते हैं। एक अच्छे शिक्षक की सीख जीवन भर हमारे साथ रहती है, इसलिए आज का दिन उन सभी गुरुओं को धन्यवाद कहने का दिन है जिन्होंने हमें बेहतर इंसान बनाने की राह दिखाई। और अब चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और आइए अब आपको सुनवाते हैं दम मारो दम। इस फिल्म का गीत जयदीप साहनी ने इसे लिखा है, प्रीतम का संगीत, आवाजें अश किंग और सुनिधि चौहान की।

और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं सोनू निगम का गाया ये गीत फिल्म दिल तो बच्चा है जी से। कुमार ने इसकी रचना की है और सुरों में ढाला है प्रीतम ने।

0: चित्रलोक कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आपने सुना आरक्षण फिल्म से। आवाजें थी श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की, प्रसून जोशी की रचना, शंकर एहसान लॉय का संगीत। इसी के साथ अब ये कार्यक्रम संपन्न होता है। नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रलोक, यह आकाशवाणी है और आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
2: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
3: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
2: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
3: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
4: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
5: गांधी जी के सपनों का भारत बनाएंगे, चारों ओर स्वच्छता फैलाएंगे।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का अखबार।
5: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
6: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
7: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
6: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
7: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
8: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।

0: आज का अखबार।
1: नमस्कार साथियों, कार्यक्रम आज का अखबार में मैं आपकी दोस्त अनामिका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि जब हम दुनिया में आते हैं तो हमें कुछ भी मालूम नहीं होता, ना बोलना, ना चलना और ना ही सही गलत की पहचान करना। कहते हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं होता। जीवन में कुछ भी सीखने के लिए हमें गुरु की जरूरत तो होती ही है। शिक्षक जीवन में उस मूर्तिकार की तरह होता है जो हमारे अंदर मौजूद आत्मविश्वास, हुनर और गुणों को पहचानता है और उसे दुनिया में प्रकट करता है। जैसे एक मूर्तिकार साधारण पत्थर से मूर्ति को तराशता है। अब चाहे वो हमारे माता पिता हों, स्कूल कॉलेज के गुरुजन हों या सही सलाह देने वाला आपका कोई दोस्त, वो हर शख्स जो हमें सही राह दिखाता है वह शिक्षक ही तो होता है ना? तो आज जहां विश्व शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, तो इस खूबसूरत अवसर पर आइए याद करते हैं अपने जीवन के उन शिक्षकों को जिनकी बदौलत ये जीवन और बेहतरीन बना है, और शुक्रिया अदा करते हैं उन सभी का, क्योंकि शिक्षक ही वो बागबां हैं जिनकी बदौलत बाग का हर फूल अपने रंग और खुशबू के साथ खिल पाता है। तो सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज विश्व शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज का अखबार। अब बारी है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देश के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया।

ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3 लाख मकान सौंपे।

तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ। मतदान मंगलवार को। ईरान ने कहा, अमेरिका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा, होमोर्ज जल डमरू मध्य बंद रहेगा। जापान में एशियाई खेल भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न। भारत ने खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 21 स्वर्ण पदक सहित 85 पदकों के साथ 4थे स्थान पर रहा भारत। जीएसटी में 9 साल बाद बड़ा बदलाव। टैक्स अफसरों से गिरफ्तारी का अधिकार होगा वापस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।

भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे। रूस यूक्रेन संघर्ष सुलझाने में भारत निभा रहा सक्रिय भूमिका। ये थी कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
4: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
3: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
4: नशा करन ली मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनु HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
5: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV

0: आना, तीसरा संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना, और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

कार्यक्रम आज का अखबार में अब बारी है लोकल हेडलाइंस की। रन फॉर द वाइल्ड में पर्यटकों और धावकों ने लगाई दौड़। ग्रीन मार्केट के कचरे और गोबर से बनेगी सीबीजी। सीबीजी के साथ बनेगी जैविक खाद। नगर निगम को मिलेगी रॉयल्टी। 5 टन क्षमता का प्लांट होगा अपग्रेड। लोगों को मिलेगा कचरे के बेहतर निस्तारण का फायदा। शहर के 12 और चौकों की जल्द बदलेगी सूरत। कंपनियां करेंगी चौकों पर हरियाली और रखरखाव। लोगों को मिलेंगे साफ सुथरे चौक।

नमो क्रिकेट लीग के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया आह्वान, खेल और किताबों से जुड़ेंगे युवा तो नशे से रहेंगे दूर। सेखो मैराथन में दौड़ा देशभक्ति का जुनून, वतन परस्ती और फिटनेस के जज्बे में रंगा पूरा शहर। 4000 से अधिक धावकों ने शहीद निर्मलजीत सिंह सेखो की शहीदी को किया नमन। सेक्टर 26 और 11 की आईटीआई में खुलेंगी एआई लैब। 6 महीने और 1 साल का कोर्स कर सकेंगे, डेटा पर काम करना सिखाएंगे। ट्राई सिटी के युवाओं को मिलेगा बड़ा फायदा।

आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। कार्यक्रम आज का अखबार में अब बारी है रीजनल हेडलाइंस की। गुरुग्राम में करीब 25 एकड़ में प्रस्तावित विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर को सिंगापुर के मॉडल पर विकसित करने की तैयारी। हरियाणा सरकार ने चिरायु आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का बढ़ाया दायरा। अब आय की सीमा नहीं बनेगी इलाज में बाधा। 2 वर्ष में 42.6% बढ़े UPI ट्रांजैक्शन। देश में 14वें नंबर पर हरियाणा। गुरुग्राम की प्रदेश के कुल UPI लेन देन में करीब 32.7% हिस्सेदारी। अखाड़े से ट्रैक तक एशियाड में हरियाणवी बने तिरंगे की शान। कुल 85 पदकों में से 32 पदक जीतने में हरियाणा के खिलाड़ियों ने दिया बड़ा योगदान। मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान ने कहा, हर माँ बहन मावा तिया सत्कार योजना की ब्रांड एम्बेसडर। Yes. 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक होगा राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव। पहली बार होगा मिस्टर किन्नौर का चयन। आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज का अखबार में रीजनल हेडलाइंस। समय है एक गीत का।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम आज का अखबार को समाप्त करने की अपनी दोस्त अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक थे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
2: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
3: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
4: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
1: आज का अखबार।
5: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश, या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
6: मैदा टीका ला लिया, और तू भी ला ले।
7: नहीं यार, मैं नहीं लौना।
6: ऐता फिर यार मार वाली गल होगी।
7: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं, दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
8: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो, ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट।
9: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला भारत के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति पाहमला का राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पाहमला वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी है। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति पाहमला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पाहमला से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि रूस कई ऐसे अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह का समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस

0: संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार और निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध है।
1: इंडिया And Russia have historically very good relations.
2: भारत और रूस के संबंध ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं, खासकर 1950 के दशक से। वह इतिहास भुलाया नहीं जा सकता। भारत के लिए सोवियत संघ एक ऐसा देश है जो कई तरह से हमारे साथ खड़ा रहा है, खासकर तब जब हमारी सुरक्षा और हमारी क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। ऐसे समय में जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा हमारे पड़ोसी देश में सैन्य शासन का समर्थन कर रहा था, रूस एक ऐसा देश था जिसकी विरासत ने कई मायनों में हमें आकार दिया है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए भारत का रुख स्पष्ट किया कि वो इस संघर्ष का अंत देखना चाहता है। भारत का मानना है कि इसके लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता होगी और इस संबंध में बातचीत होनी चाहिए। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। पांच दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। इटली के अखबार कोरियेरे दिल्ला सेरा की रिपोर्ट के अनुसार फ्लाई दुबई विमान के ओमानी सहपायलट ने विमान के अपहरण की कोशिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने का प्रयास किया। अखबार के अनुसार ओमानी सहपायलट हम्माम अल हम्मामी ने विमान पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ पर हमला किया था। उत्तर प्रदेश में गोमती नदी का जल स्तर बढ़ने के बीच लखनऊ जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। गोमती नदी के निचले इलाकों में लखनऊ शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारी और संयुक्त पुलिस आयुक्त ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
4: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

0: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं वर्सटाइल मशीन बद्दी।
2: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ
0: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाए।

0: प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
1: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी।
0: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
2: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।

0: नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ में सभी सुनने वाले श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ ही अनामिका। सृजन से संस्कार तक, अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश तक, एक शिक्षक ही होता है जो हमारे जीवन की नींव रखता है। तो आज विश्व शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। और आज हमारे हेलो चंडीगढ़ के कार्यक्रम का विषय है शिक्षक हमारे भविष्य निर्माता। तो साथियों, आज इसी विषय पर आपने हमारे साथ अपने भाव साझा करने हैं। हमारे नंबर हैं 2660615, 2660617, 2660619 और हमारा STD कोड नंबर है 0172। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार है। तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले कॉलर से। हेलो चंडीगढ़। हेलो चंडीगढ़।
1: गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग जी, कौन बात कर रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं?
1: मैम, मैं किरण बात कर रही हूँ शिमला से।
0: जी किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ में। जी बताइए, आज के विषय के बारे में, विषय है शिक्षक हमारे भविष्य निर्माता, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
1: मैम, आज का विषय अच्छा है
0: जी।
1: तो मैम, मैं यही कहना चाहूंगी, शिक्षक के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है।
0: जी बिल्कुल।
1: जब तक हम, मतलब सबसे पहले शिक्षक तो हमारे माँ बाप होते हैं।
0: जी जी बिल्कुल।
1: क्योंकि उनसे ही हम थोड़ा बहुत बोलना, बैठना, उठना सीखते हैं जब हम स्कूल में जाते हैं।
0: हाँ जी।
1: तो मैम, हमें गुरुओं का
0: आपने बिल्कुल सही कहा किरण जी, कि पहले शिक्षक जो है माता पिता ही होते हैं और बहुत कुछ हम उनसे सीखते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ हम उनसे सीखते हैं। जी
1: जी मैम, उसके बाद जब हम स्कूल जाते हैं,
0: हाँ जी,
1: तो मतलब जब हम अपने माँ बाप से दूर होते तो हम सोचते हैं कि कैसे बिहेव करेंगे टीचरों के साथ। लेकिन मैम, मैं अपनी बात ही कहना चाहूंगी।
0: हाँ जी बिल्कुल।
1: क्योंकि मैम, मैं जब छोटी होती थी तो मतलब कहते थे कि तुझे मतलब स्कूल भेजना तो बड़ा मुश्किल होता था
0: जी।
1: तो मतलब हम अपने टीचर का अदा करना चाहेंगे कि हम, मुझ जैसी जिद्दी बच्ची को पता नहीं कैसे संभाल के रखा उन्होंने।
0: जी बिल्कुल। और ये ना गुरुओं की बहुत ही खासियत होती है कि गुरु अपने शिष्यों की उस काबिलियत को पहचानते हैं जो शायद शिष्य भी नहीं जानते। और यकीनन जो है इसके लिए हम बार बार जो है नमन करें उतना ही कम है। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी हमसे बात करने के लिए। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर क्या कहते हैं। हेलो चंडीगढ़। हेलो चंडीगढ़ जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो चंडीगढ़। हेलो चंडीगढ़ जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: अनामिका जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: मैं सुशील शर्मा ट्यूब हिमाचल से बोल रहा था।
0: नमस्कार सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: बहुत ही अच्छा विषय रखा है
0: जी।
2: शिक्षक की भूमिका तो है ही मैम, समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका है।
0: हाँ जी बिल्कुल।

0: और शिक्षक तो मतलब एक मैं कहूँ सड़क की तरह है, मतलब खुद वहीं रहेगा लेकिन अपने जो है शिष्य को मंजिल तक पहुंचा देता है।
1: बिल्कुल मंजिल तक पहुंचा देगा, बिल्कुल सही
0: बिल्कुल
1: कहा
0: बिल्कुल।
1: आपने जी।
0: और शिक्षक जो है और बिना गुरु के ज्ञान नहीं है,
1: हाँ बिल्कुल
0: वो गुरु आपका वो मित्र भी होता है, शिक्षक
1: हाँ जी
0: मार्गदर्शक होता है,
1: जी
0: अपने जो है जीवन को जीवन की दशा और दिशा निर्धारित करने में शिक्षक की भूमिका
1: अहम
0: बहुत
1: होती है
0: महत्वपूर्ण है।
1: जी बिल्कुल
0: मतलब जिसको कहते हैं शिक्षक एक भगवान की तरह है।
1: जी
0: शिक्षक तो कह सकते हैं कि अगर किसी के पास सही समय पर अच्छे गुरु का मिलना, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा
0: बिल्कुल।
1: जी
0: और इस समाज को राष्ट्र को दिशा देने में सही तो मार्गदर्शन देने में शिक्षक की भूमिका है। और भारत तो वैसे भी जो है गुरुओं की भूमि रही है, गुरुओं की वो स्थली रही है,
1: जी
0: और
1: जी
0: राष्ट्र को जो है भारतीय जो हम कल्पना करते हैं कि भारत वो जो विश्व गुरु बने,
1: जी
0: उसमें शिक्षक
1: बिल्कुल
0: की भूमिका बड़ी
1: अहम
0: महत्वपूर्ण
1: होती
0: है
1: है
0: और हमें अपने शिक्षकों का सदा ही सम्मान करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल सुशील
0: बिल्कुल
1: जी आपने सही कहा। क्योंकि देखिए ना, नॉलेज जो है आसपास हर जगह मिलती है, लेकिन उस नॉलेज को किस तरह से विजडम में अपने इस्तेमाल करना है, विवेक के रूप में इस्तेमाल करना है, ये गुरु ही सिखाते हैं। और आपने
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: बिल्कुल।
1: प्यारे भाव हम सभी के साथ साझा किए
0: और मुझे भी अपने जो
1: जी।
0: है गुरु जी का नाम लेना इस मंच पर उचित समझता हूँ। एक मेरे शिक्षक रहे सिक्स क्लास में,
1: जी
0: श्री बालक राम नेगी जी, जिनका
1: ओ
0: मेरी जीवन को दिशा देने में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान
1: वाह
0: रहा और उन्हें मैं नमन करता हूँ।
1: जी, आशा करते हैं कि वो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे और आपके भाव उन तक और सुनने वाले सभी श्रोताओं तक भरपूर पहुंचे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी हमसे बात करने के लिए। आइए सुनते हैं एक गीत।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ में, और हमारा विषय आज का है शिक्षक हमारे भविष्य निर्माता। आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं कि आज के विषय पर उनके क्या विचार हैं। हेलो चंडीगढ़ जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: नमस्कार जी, मैं तुलाराम बोल रहा हूँ जी, मोहाली से।
1: नमस्कार तुलाराम जी, मोहाली से जी।
2: हाँ जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे देश का आजकल का नौजवान शिक्षक है बहुत पढ़ा लिखा हो गया है, PhD कर चुके हैं बच्चे, बहुत पढ़े लिखे हैं, BTech में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, मल्टी नेशनल कंपनियों में जॉब कर रहे हैं। आजकल यूथ जाग गया है, जिस देश का यूथ जाग जाता है वहाँ परिवर्तन होता है। अब हमारे देश का यूथ जाग चुका है, देश में कोई ना कोई परिवर्तन हो पक्का हो जाएगा
1: जी।
2: आप देखते रहना, जिस देश का भी यूथ जागा है वहाँ परिवर्तन हुआ ही हुआ है
1: जी। बिल्कुल तुलाराम जी, आपने सही कहा, और यकीनन सभी के ही बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, अनुभव होते हैं। लगता है हमारे कॉलर का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, तो चलिए अगले कॉलर से जुड़ते हैं और जानते हैं कि उनके विचार क्या हैं। हेलो चंडीगढ़, हेलो चंडीगढ़ जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो चंडीगढ़ जी, कौन बात कर रहे हैं?
3: आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने,
1: हेलो चंडीगढ़ जी, कौन बात कर रहे हैं?
4: नमस्कार जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, जी कौन बात कर रहे हैं?
4: मैं सुरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ, सेक्टर 51 से।
1: सुरेंद्र कुमार जी, सेक्टर 51 से, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ में जी।
4: आज का विषय बहुत अच्छा है
1: जी,
4: तो मैं इस विषय में कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो बच्चे का शिक्षक माता ही है, क्योंकि गोद में आते ही वो माता का अनुसरण करता है और माता से बहुत कुछ सीखता है, वो माँ ही बोलता है पहले
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल।
4: फिर माता और पिता उनको सिखाते हैं बच्चों को, फिर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो वो शिक्षक के संपर्क में आते हैं और शिक्षक उनके गुरु बन जाते हैं, जो उनको जीवन भर मार्गदर्शक बनते हुए बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, उनके जीवनचर्या के लिए बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण देकर उनको अच्छी शिक्षा देकर उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने में बहुत सहायक होते हैं।
1: बिल्कुल आपने सही कहा जी, यकीनन जो शिक्षक होते हैं उनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है, और हम सीखते हैं उनसे कि जीवन को जीना कैसे है, क्योंकि देखिए जीवन में हमें बहुत कुछ सीखना होता है, हर चीज़ जो है हमें पहले से आती नहीं है, और वो छोटी छोटी चीज़ें हमें माता पिता सिखाते हैं, शिक्षक सिखाते हैं, इवन हमारे दोस्त सिखाते हैं, हमारे दोस्त भी अच्छी सलाहें देकर हमें सही रास्ते की परख देते हैं जी। जी
4: इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षक का हमेशा ही सम्मान करना चाहिए, और शिक्षक हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, पुराने जमाने से बच्चे पढ़ते आए हैं और देखिएगा कि उनके गुरुओं ने उनका कैसे बनाया और आज हमारे लिए वो उदाहरण है, उन्होंने देश के लिए, देश के निर्माण के लिए बड़े बड़े काम किए बच्चों ने, वो गुरुओं ने सिखाया उनको, तो गुरु से

0: महान कोई नहीं है, गुरु की शिक्षा और गुरु का जो सम्मान है वो हमें जीवन भर बड़ा ही सहायता देता है। हमारा जीवन में कई कठिनाइयां आती है उनका सामना करने की हिम्मत देता है जी, यही मेरा कहना है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सच में बहुत ही खूबसूरत बातें बताई जो कि गुरु के सम्मान में बताई हैं, और बहुत ज़रूरी भी हैं कि हम उन्हें याद रखें क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। तो आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं कि उनका क्या विचार है आज के विषय में। हेलो चंडीगढ़, लगता है कि हमारे कॉलर के जो कॉल है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। तो आइए जब तक हमें कॉल आते हैं तो सुनते हैं, तब तक एक गीत।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़। आज का विषय है शिक्षक हमारे भविष्य निर्माता। तो आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं कि उनका क्या कहना है आज के विषय के बारे में।
1: हेलो
0: हेलो चंडीगढ़ जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: हेलो
0: हेलो चंडीगढ़ जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: गुड मॉर्निंग मैडम, मैं पंचकुला सेक्टर 21 से कर्नल उमेश्वर सिंह पठानिया बात कर रहा हूँ।
0: जी वेरी गुड मॉर्निंग जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी पठानिया जी, बताइए क्या है आपके विचार आज के विषय पर?
1: हाँ जी, आज का जो विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है
0: जी।
1: जो भी हमारे को ये टीचर जो है वो हमारे फ्यूचर के पूरे डेवलपमेंट करते हैं
0: जी, बिल्कुल।
1: दे आर टोटली इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग आवर ऑलराउंड पर्सनैलिटी एज वेल एज करियर।
0: जी
1: बच्चा एक कच्ची उम्र में जब मोल्ड किया जाता है, पहले अपने माँ बाप से मोल्ड किया जाता है, उसके बाद उसके शिक्षक ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: जो हमारा कैरियर सिलेक्शन है या जो हमने आगे लाइफ में करना है,
0: हाँ जी,
1: उसमें 90% योगदान हमारे शिक्षकों का होता है।
0: जी बिल्कुल।
1: और हमें इनका हमेशा ही धन्यवाद करना है और हमेशा हमें इनके साथ थैंकफुल रहना है कि इन्होंने हमारी लाइफ बनाई है
0: जी,
1: और हमारा कैरियर बनाया है और आगे लाइफ को कैसे जीना है ये सिखाया है।
0: बिल्कुल पठानिया जी, आपने सही कहा, क्योंकि शिक्षक वो होते हैं जो हमें सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देते, वो हमें सवाल करना भी सिखाते हैं, वो हमें बताते हैं कि किस तरह से हमें अपने जीवन को खूबसूरती से जीना है, बेहतरीन रूप में जीना है। जी
1: हाँ जी, हाँ जी मैम
0: जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: टीचर्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैम।
0: हाँ जी, आपने सही कहा जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया पठानिया जी, आपने अपने भाव हमारे साथ साझा किए। आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं कि उनका क्या कहना है हमारे आज के विषय के बारे में। हेलो चंडीगढ़, लगता है हमारे कॉलर के जो कॉल हैं वो डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं, तो अगले कॉलर से जुड़ते हैं और जानते हैं उनके विचार क्या हैं। हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: वेरी गुड मॉर्निंग जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: मैडम मैं मोनिका बोल रही हूँ, सेक्टर 49 चंडीगढ़ से।
0: जी मोनिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो आज का विषय है शिक्षक हमारे भविष्य निर्माता, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे?
2: मैडम मैं एक कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपने जीवन में आए शिक्षकों को डेडिकेट करना चाहूंगी, कुछ पंक्तियाँ।
0: बहुत खूबसूरत जी, बताइए। हेलो, लगता है कविता सुनाने से पहले ही उनके फ़ोन कॉल कट हो चुकी है, तो इस आशा के साथ कि वो दोबारा हमें कॉल करें, हम अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं और जानते हैं कि उनके क्या भाव हैं।

0: भविष्य
1: हो जाएंगे।
0: निर्माता।
1: मैम देखिए, जो शिक्षित होते हैं ये तो एक हमारा बहुत मानने वाली बात है कि यही हमें सही रास्ता देंगे
0: जी
1: और इससे ही हमें शिक्षा मिलेगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम जहाँ थे वहीं रहेंगे करेंगे।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा।
1: इतना तो होना चाहिए जितना कि हम जा रहे हैं कहीं और कुछ पढ़ के देख लें उसको, ज्यादा भी नहीं है तो इतना तो होना चाहिए। और उनकी इज्जत करनी चाहिए, बहुत ज्यादा इज्जत देनी चाहिए उनको जो हम शिक्षित करते हैं, कर रहे हैं और इस मकाम पर ला रहे हैं कि हम इस
0: जी
1: मकाम पर पहुंच के देखो नौकरी भी लगती है, सब कुछ होता है, इतना
0: बिल्कुल, आपने सही कहा।
1: होना
0: और
1: चाहिए ना।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, बात सिर्फ साक्षरता की नहीं है, बात है ऑल ओवर डेवलपमेंट की, पूर्ण
1: हाँ
0: रूप
1: जी
0: में, सही रूप में जो है एक विकास की। जो व्यक्ति का होता है वो साक्षर रूप में भी होता है ना, अंदरूनी रूप में भी होता है। जी
1: हाँ जी
0: जी जी, आपसे एक अनुरोध है कि आप थोड़ा सा शोर से दूर आकर हमसे बात कीजिए, ताकि आपकी बात, आपके भावों को हम बहुत अच्छे से सुन पाएं और हमारे लिसनर भी सुन पाएं। लगता है हमारे कॉलर की कॉल कट चुकी है। आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं उनका क्या कहना है। हेलो चंडीगढ़, हेलो
1: हेलो
0: चंडीगढ़ जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: मैडम, मैं मोनिका बात कर रही हूँ। अभी अभी आपसे
0: जी
2: बात करके
0: मोनिका जी, हाँ आपकी
2: कॉल
0: कविता अधूरी रह
2: कॉल
0: गई
2: कट
0: थी,
2: गई थी।
0: जल्दी से संक्षिप्त में बताइएगा अपनी कविता को,
2: हाँ जी
0: क्योंकि
2: मैडम,
0: हाँ जी
2: शिक्षक के प्रति कुछ पंक्तियाँ हैं।
0: जी
2: अक्षरों का खेला सिखाता है, कलम की आवाज से पहचान करवाता है,
0: बहुत खूब
2: किताबों के झरोखों से दुनिया दिखाता है,
0: जी
2: तूफानों में शिक्षा की पतवार हाथ
0: जी
2: थमाता है,
0: जी
2: सबक नए सीखा भविष्य सजाता है, शिक्षक उंगली थाम इंसान बनाता है,
0: बहुत खूब
2: ज्ञान के तर्कश से अचूक शस्त्र चलाता है, जग सारा सम्मुख शिक्षक के झुक जाता है।
0: वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। यकीनन आपने शब्दों में किस रूप में ये पिरोया है, और ये सम्मान जिसकी अभी कितने ही कॉलर्स के साथ अभी बात हुई और जिस सम्मान की हम बात कर रहे हैं उसको आपने इस कविता के द्वारा अपने सुमन रूप में जो है आपने अपने गुरुओं के चरणों में अर्पित किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका जी,
2: धन्यवाद मैम।
0: आपने हमारे साथ अपने भाव साझा किए। जी
3: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे वर्सेटाइल मशीन बद्दी।
4: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ।
5: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
4: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी,
5: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
3: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।
6: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

0: हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो,
0: हेलो जी, कौन बात कर रहे
1: नमस्कार
0: हैं?
1: मैम।
0: नमस्कार जी।
1: मेरा नाम सुरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ, पिंजौर से, बेटा रोड।
0: सुरेंद्र कुमार जी। जी जी सुरेंद्र कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ में। जी बताइए, आज के विषय पर आपका क्या कहना है? विषय है शिक्षक हमारे

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़। आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं वो क्या कहते हैं आज के विषय के बारे में। हेलो
1: हेलो।
0: हेलो, नमस्कार
1: जी। हाँ जी,
0: कौन
1: मैं
0: बात कर
1: निधि बोल रही हूँ
0: जी। निधि
1: और
0: जी,
1: मैं खुद एक शिक्षिका हूँ।
0: वाह।
1: और जो
0: जी,
1: आज का विषय है उस पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगी।
0: जरूर।
1: कि
0: आप
1: जो मैंने जिंदगी भर में सीखा कि हमारे शिक्षक ने हमें क्या क्या अच्छी बातें सिखाई,
0: जी
1: वही मैं जब छोटे बच्चे, मेरे हिसाब से जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे कि मैं किंडरगार्टन टीचर रही हूँ,
0: जी
1: तो जितना हम छोटे से बच्चे को सबसे पहले मोल्ड कर सकते हैं
0: हाँ
1: और
0: जी
1: अच्छी आदतें और अच्छे संस्कार दे सकते हैं,
0: जी
1: वो ज्यादा जरूरी है। जो आगे चल के बच्चे उस चीज को अपने अंदर शामिल करते हैं, तब जाके करियर बना पाते हैं। तो
0: बिल्कुल
1: सबसे बड़ी चीज मेरे हिसाब से वो टीचर्स को सलाम है
0: जी
1: जो छोटे से बच्चे को, जो बिल्कुल माँ की गोदी से निकल कर आते हैं, हम
0: जी
1: उनको एक अच्छा सा वजूद देते हैं, अच्छे संस्कार डालते हैं, अच्छी सोच डालते हैं, तो ही जाकर लेटर स्टेज में वो बच्चा कोई अपनी करियर और कुछ अच्छा इंसान बनने की क्षमता रखता है।
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: मेरी हिसाब से सैल्यूट टू दोस टीचर्स
0: जी
1: जो बचपन में ही बच्चे को मोल्ड अच्छी तरह कर पाते हैं। और
0: हाँ
1: शायद
0: जी
1: यही मैंने अपनी टीचर से सीखा है और आज मैं अपने बच्चों को ये चीजें दे पाती हूँ।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो चिकनी मिट्टी की तरह होते हैं, और एक जो टीचर होता है, शिक्षक होता है, वो उसे एक आकार देता है। क्योंकि शुरुआत में तो बच्चों को भी मालूम नहीं होता कि ख्वाब क्या होते हैं, सपने क्या होते हैं, उन्हें देखना क्या होता है, पूरा करना तो बहुत दूर की बात होती है।
1: जी
0: तो ये
1: बिल्कुल।
0: शिक्षक ही होते हैं जो सिर्फ हमारे सपनों को पूरा करना हमें नहीं सिखाते, बल्कि उन ख्वाबों को, उन सपनों को देखना भी सिखाते हैं।
1: जी बिल्कुल
0: जी, तो
1: बिल्कुल जी।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके भावनाएं सुनकर।
1: थैंक
0: ऐसे ही
1: यू
0: आगे
1: सो
0: भी
1: मच।
0: जुड़े रहिएगा।
1: जी,
0: धन्यवाद
1: थैंक यू सो मच।
0: जी।
1: थैंक यू, थैंक यू।
0: हेलो चंडीगढ़ जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, जी कौन बात कर
2: हेलो
0: रहे हैं?
2: हेलो,
0: हेलो, आवाज आ रही है।
2: नमस्कार
0: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: धीरज रबारी बात कर रहा हूँ अहमदाबाद से।
0: जी, आपका नाम आप दोबारा बताएंगे, कौन बात कर?
2: धीरज रबारी गुजरात अहमदाबाद से।
0: धीरज रबारी जी, गुजरात अहमदाबाद से जी। बहुत बहुत
2: जी
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ में जी। बताइए, आज के विषय है शिक्षक हमारे भविष्य निर्माता, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
2: धन्यवाद दीदी। और शिक्षक के बारे में मैं बताऊं कि शिक्षक हमारे प्रेरणा स्रोत है। प्रथम
0: जी
2: गुरु हमारे माँ बाप है,
0: जी
2: उसके बाद आता हमारे आदरणीय जो गुरु जी शिक्षक है वही है, और इनसे हमें बहुत सीखने को मिलता है। देखा जाए तो
0: जी
2: सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सभी विषयों पर हमें जो शिक्षक ज्ञान प्रदान करते हैं वो हमें आगे वाले जीवन में बहुत काम लगता है। और इसमें मैं भी शामिल हूँ और सभी श्रोता भी शामिल हूँ, आप
0: बिल्कुल
2: भी होंगे। हमारे एक शिक्षक थे, आज मेरी आयु 57 साल की है, लेकिन
0: जी
2: वो

0: दिन हमें याद आता है कि शिक्षक हमें शिक्षण के अलावा हमें कई और विषयों पर भी ज्ञान देते थे, जैसे रेडियो पर। रेडियो के प्रेरित होने का एक ही मेरा जीवन में यानी थे तो वही शिक्षक
1: जी
0: जिसने मेरे को रेडियो के प्रति आकर्षित किया,
1: हाँ
0: और
1: जी
0: वही शिक्षक के जरिए मैं आज रेडियो सुन रहा हूँ। और जैसे देखा जाए तो अभी आकाशवाणी चंडीगढ़ है
1: जी
0: और स्टेशन है जिससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली है, और वो शिक्षक का मैं आज भी आदर करता हूँ और वो भी हमारा आदर करते हैं। उसकी उम्र ज्यादा हो गई लेकिन आज भी हमारा शिष्य और गुरु का नाता अकबर
1: बना
0: है दीदी।
1: हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल धीरज जी, आपने सही कहा। और हम बहुत सी चीज़ों से देखते हैं, किसी ने कहा
0: जी
1: कि कण कण से शिक्षा, और कण कण से शिक्षा ली तभी जा सकती है जब आपके जीवन में गुरु हो, शिक्षक हो।
0: और मैं आपको और आकाशवाणी चंडीगढ़ को यही सुझाव देना चाहता हूँ, अगर
1: जी
0: हो सके तो हमारा ये कार्यक्रम है बहुत प्रेरणात्मक कार्यक्रम है। हर
1: जी
0: कार्यक्रम में कोई अलग अलग विषय पर हम श्रोताओं से बातचीत करते हैं, तो हमारा यही सुझाव है कि ये 3 नंबर इसके बजाय 2 नंबर करें और ये कार्यक्रम साप्ताहिक करें, यही सुझाव है।
1: जी
0: नमस्कार दीदी।
1: जी नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं कि उनका क्या कहना है आज के विषय के बारे में। हेलो हेलो चंडीगढ़, हेलो चंडीगढ़ जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड।
1: लगता है कॉलर अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, तो आइए लेते हैं एक अंतराल और उसके बाद सुनते हैं ये गीत।
3: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़, और आज का विषय है शिक्षक हमारे भविष्य निर्माता। आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं आज के विषय पर उनका क्या कहना है। हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो मैडम, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं सतपाल सिंह बिंद्रा चंडीगढ़ से ही बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी सतपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ में। विषय शिक्षक हमारे भविष्य निर्माता, उस पर आपके क्या विचार हैं?
1: शिक्षक तो मैडम ऐसा है
0: जी,
1: गुरु का दर्जा भी हम उनको देते हैं
0: जी।
1: तो कबीर जी का दोहा भी है कि शिक्षक गुरु और भगवान आपके सामने खड़े हो
0: जी
1: तो किसके पांव लगना चाहिए
0: जी।
1: तो उसमें कहा गया है कि गुरु के ही हम पांव पहले छुए
0: जी।
1: तो गुरु की, शिक्षक की कितनी महानता है, पढ़ाई के क्षेत्र में हो या कोई आपको स्पोर्ट्स में
0: जी
1: और किसी चीज में आपको, आपकी अगुवाई कर रहा हो, आपको शिक्षा दे रहा हो
0: जी,
1: तो उनके बिना हम सही तरीके से इस संसार में आगे नहीं बढ़ सकते।
0: बिल्कुल सतपाल जी, आपने सही कहा, गुरु बिन ज्ञान संभव ही नहीं है जी।
1: जी मैडम
0: जी, कहिए।
1: हेलो
0: जी, कहिए, आपकी आवाज आ रही है जी।
1: आवाज आ रही है मैडम?
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है।
1: थोड़ी सी आवाज कम आ रही है सर।
0: आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है सतपाल जी, आप क्या भाव
1: जी
0: रखना चाहते हैं?
1: तो शिक्षक बचपन से ही हमें पढ़ाते लिखाते हैं
0: जी,
1: जीवन पद्धति सिखाते हैं।
0: हाँ जी।
1: जीवन में कैसे आगे बढ़ना है
0: जी,
1: शिक्षक की जो एक महत्व है हमारी जिंदगी में कभी कम नहीं हो सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि शिक्षा, जो शिक्षक की शिक्षा होती है उसका महत्व जिंदगी में कभी कम नहीं होता, बढ़ता ही है। और आपने बहुत ही खूबसूरत भाव हमारे साथ साझा किए हैं सतपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। आइए जुड़ते हैं अगले कॉलर से और जानते हैं उनका क्या कहना है। हेलो चंडीगढ़ जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो चंडीगढ़, कौन बात कर रहे हैं? हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? सत श्री अकाल जी। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: पवन बोल रहा हूँ, खन्ने से।
0: जी पवन जी, खन्ने से पवन जी बात कर रहे हैं?
2: है?
0: अपना नाम दोबारा बताइए जी।
2: पवन, पवन
0: जी, आज आपका विषय, आज का विषय है शिक्षक हमारे भविष्य निर्माता, तो इस पर आपका क्या कहना है जी?
2: गुरु का ज्ञान नहीं मिलता।
0: हाँ जी बिल्कुल, गुरु बिन ज्ञान मिल ही
2: नहीं
0: सकता।
2: ज्ञान मिला नहीं, ज्ञान नहीं मिला।
0: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही।
2: तो नंबर दो पे कहना, मतलब कई लोग का दिमाग का छोड़ना कई बंद हो गया, कहीं ना ज्ञान जल्दी हो गया, कहीं ना ज्ञान बहुत नहीं होगा। अरे तो किसी चीज में खुद ही कम कर रहे हैं, वही बात बताऊँ, किसी लोग गंदी कर रही है
0: जी। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है।
2: सरकारी गुरु बनी है।
0: बिल्कुल सही आपने कहा कि गुरु ही, हाँ जी बिल्कुल, गुरु बिन ज्ञान मिल ही नहीं सकता।
2: गुरु बहुत जरूरी है
0: जी।

0: हेलो हेलो चंडीगढ़।
1: हाँ नमस्ते।
0: नमस्कार जी।
1: आजकल शिक्षाविद में यह है कि जो शिक्षाविद होते हैं, हम दो दीदी शिवा तिवारी सत्कर्ण पंचकूला से पत्रिकेन हुआ से बोली सर, और ये जो शिक्षाविद वाला है तो शिक्षाविद तो दीदी अपना जो गुरु होता है, क्योंकि वो जो पढ़ाते हैं तभी आदमी आगे का बढ़ते हैं। तो वो जो पहला गुरु वो है या दूसरा गुरु होते हैं जो है, जो जिससे वो ज्ञान दिया जाता है।
0: बिल्कुल
1: आपने सही कहा। उससे पहला गुरु तो माता जी, जो तुम्हें माता पिता।
0: हाँ जी,
1: तीन पे गुरु होते हैं दीदी।
0: जी आपने सही कहा, माता पिता ही हमारे।
1: दीदी आपका आवाज आवत नहीं है, लेकिन हम जो बोले थे वक्त में दीदी, ये शिक्षाविद का ये की
0: आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है
1: दीदी। है जो हमारे गुरु थे वो अभी जो पढ़ाए थे वो अभी है, लेकिन उनको जो है
0: जी
1: आलू की 100 साल से ऊपर हो गया, 110 साल के हैं।
0: अच्छा, 110 साल के हैं आपके गुरु।
1: आवाज में दीदी आपका नहीं आया, लेकिन हम अपना जो आपको कहना था वो मैं दीदी आपको मुझ पर बता दिया हूँ।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका
1: गुरु के बारे में।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। शायद किसी कनेक्टिविटी के कारण उन तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही थी। तो आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं आज के विषय के बारे में। हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो मैडम, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: मैडम मैं प्रदीप बात कर रहा हूँ, संकट मोचन शिमला से।
0: जी प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ में।
2: थैंक यू मैम।
0: जी आज का विषय तो आप जानते ही होंगे, शिक्षक हमारे भविष्य निर्माता। तो आज के विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा संक्षिप्त में बताइए।
2: मैडम मैं तो यही कहना चाहूंगा कि शिक्षक का जो है हमारे जीवन में बहुत महत्व है।
0: जी
2: शिक्षक के बिना विद्यार्थी का जीवन अधूरा है, और शिक्षक ही हमें सही राह दिखाते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे के मैडम पूरक होते हैं, और माता पिता के बाद शिक्षक ही हमारा दूसरा गुरु है।
0: हाँ जी।
2: और शिक्षक ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है।
0: जी बिल्कुल आपने सही कहा कि शिक्षक ही वो किरदार होता है, वो व्यक्तित्व होता है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है। और सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचाता, बल्कि वो रास्ता किस तरह से तय करना है, कौन सा रास्ता चुनना है, वो सब गुरु बताते हैं। जी इसीलिए गुरु का होना महान है। जी
2: हमारा मार्गदर्शन करते हैं वो हमारे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ अपने भाव साझा किए। जी

0: इसी गीत के साथ फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ को समाप्त करने की अपनी दोस्त अनामिका को दीजिए इजाजत।
1: हेलो हेलो, कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
2: हेलो चंडीगढ़।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र, FM 107.2 MHz पर। लीजिए अब सुनिए जनगणना 2027 दूसरे चरण के बारे में डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशंस हरियाणा डॉक्टर ललित जैन से रमेश कपूर की बातचीत।

0: इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश कपूर का नमस्कार। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर ललित जैन, IAS, निदेशक जनगणना हरियाणा। डॉक्टर ललित जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में।
1: जी, बहुत धन्यवाद आपने मुझे यहाँ बुलाया।
0: डॉक्टर साहब, क्योंकि आप डायरेक्टर सेंसस हैं, तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि डायरेक्टर सेंसस होने के नाते किस तरह का आपके पास काम है, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, या यूं कह लें कि डायरेक्टोरेट ऑफ सेंसस किस तरह से काम करता है।
1: जी, जो सेंसस का काम है वो गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है और जितनी भी राजधानी है उसके अंदर एक प्रतिनिधि बैठता है गृह मंत्रालय का, जिसको डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशंस कहा जाता है। हमारा काम प्राइमरली सेंसस करवाना है,

0: उसके अलावा हम बर्थ एंड डेथ उसके अंदर ज्वाइंट रजिस्ट्रार हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और इसके अलावा हम नागरिकता भी देखते हैं। आपने सुना होगा कि CAA कानून है जिसके तहत जो भाई बंधु पाकिस्तान बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आए हैं भारतवर्ष में, हम उनको नागरिकता भी जारी करते हैं।
1: जी, हरियाणा में सेंसस का पहला फेज जो है वो समाप्त हो चुका है और दूसरा फेज शुरू होने वाला है, तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जनगणना के पहले फेज में क्या क्या आपने कवर किया और दूसरे फेज में आप क्या कवर करने जा रहे हैं।
0: देखिए, जनगणना का जो पहला फेज रहता है उसको हम हाउसिंग सेंसस कहते हैं। पहले फेज में हम हरियाणा के चप्पे चप्पे पे गए और सभी घरों की गिनती की, ना केवल गिनती की बल्कि लोगों से पूछा कि उनके घरों में कैसी सुविधाएं हैं, क्या उनके घर में टॉयलेट है, क्या उनके घर में सीवरेज का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है, वाहन की सुविधा है। ऐसे मुख्तलिफ सवाल थे जो हमने उनसे पूछे, और हरियाणा के अंदर हम जो 75-80 लाख के आसपास घर हैं, हर एक घर का दरवाजा हमने खटखटाया और बहुत सक्सेसफुली ये सेंसस हमने किया।
1: जी, और अब जनगणना के दूसरे फेज में आप लोग क्या कवर करने जा रहे हैं?
0: दूसरा फेज बहुत अहम फेज रहता है, इसको पॉपुलेशन सेंसस, जनगणना का जो असली फेज है ये कहा जाता है। इसमें हम असल जानकारी लेंगे कि कितनी हमारी जनसंख्या है। इसमें हम व्यक्ति का एजुकेशन का स्तर, उनकी डिसेबिलिटी, उनके पिता की डिटेल्स, उनकी जन्म की डिटेल, अन्यथा ऐसी आधार कार्ड वगैरह, हम सभी डिटेल्स को एकत्रित करेंगे जिससे कि हमें पता लगे कि भारतवर्ष की कितनी जनसंख्या है।
1: तो डॉक्टर साहब, इस बार जनगणना में क्या क्या पहली बार होने जा रहा है?
0: जी, सबसे पहले तो ये डिजिटल जनगणना है, तो डिजिटल जनगणना इस बार सारी मोबाइल फोन के ऊपर होगी। आपको याद होगा पहले बड़े बड़े रजिस्टर लेकर लोग घरों में आते थे, पेन के द्वारा नोट डाउन करते थे, इस बार सब कुछ मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से हो रहा है। इससे ना केवल कागज की बचत होगी परंतु समय की बचत होगी, रिसोर्सेज की बचत होगी और काम बहुत जल्दी किया जा सकेगा, पहला। दूसरा, पॉपुलेशन के अंदर इस बार कास्ट की जनगणना भी होगी जो पहली बार भारत में आजादी के बाद होने जा रही है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, अगर हम मकसद की बात करें तो जनगणना का असली मकसद क्या है, थोड़ा हमारे सुनने वालों को बताइए।
0: देखिए, आपने बहुत अहम सवाल पूछा कि हम इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो मकसद क्या है? एक्चुअली जितनी देश के अंदर नीतियां बनाई जाती है उसके लिए एक डेटा चाहिए। जनरली डेटा के बहुत सेकेंडरी सोर्सेज रहते हैं, परंतु एग्जैक्ट डेटा केवल जनसंख्या के द्वारा ही आ सकता है। जो नीति लोग बनाते हैं उनके पास यदि डेटा होगा, उनको पता होगा कि कहां पर किस मोहल्ले में, किस गली में, किस शहर में किस चीज की कमी है, तो बेहतर सुविधाएं और बेहतर पब्लिक पॉलिसीज हम बना पाएंगे। यही जनसंख्या का मेन मोटिव है।
1: जी, तो इस बार जब आप सेकंड फेज शुरू करेंगे तो कब तक ये जो सेकंड फेज है वो शुरू होगा जनगणना का?
0: सेकंड फेज हमारा जनवरी के अंदर शुरू हो जाएगा। पहले 15 दिन हम देंगे सेल्फ इन्यूमरेशन के लिए, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर से स्वयं को सेंसस के अंदर इनरोल कर सकता है। फिर उसके बाद एक्चुअल जनगणना के तहत हमारे प्रतिनिधि आपके घर द्वार आएंगे, वो लगभग 30 से 35 दिन का रहेगा। अभी एग्जैक्ट डेट्स आई नहीं है, जैसे ही आएंगी तो आम जनमानस को सूचित कर दिया जाएगा।
1: तो जिस तरह से आपने बताया कि स्वयं जनगणना फॉर्म भरा जा सकता है, तो किस तरह से एक आम व्यक्ति वो स्वयं वो फॉर्म भर सकता है? क्या कोई वेबसाइट है जिसके थ्रू ये फॉर्म भरा जा सकता है?
0: जी बिल्कुल, हमारे सेल्फ इन्यूमरेशन के लिए एक डेडिकेटेड वेब पोर्टल है, census.gov.in। आप यदि गूगल पर जाकर सर्च भी करेंगे सेल्फ इन्यूमरेशन को तो तुरंत हमारा पोर्टल खुल जाता है। लगभग 21 मिनट का ये काम रहता है, परंतु ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रहेगी हमारे जनमानस की, क्योंकि इससे रिसोर्सेज की बचत रहती है और दूसरा, आपका डाटा आप स्वयं भर रहे हैं, उससे एग्जैक्ट डाटा आप भर सकते हैं और कोई भी इन्यूमरेटर आकर बहुत समय तक आपके घर में नहीं बैठेगा। केवल आपको सेल्फ इन्यूमरेशन की जो एक आईडी दी जाएगी इस इन्यूमरेशन के बाद, उसको साझा करना होगा और जनसंख्या का काम हो जाएगा। इस प्रोसेस में केवल 5 से 7 मिनट लगते हैं। ये बहुत ही सरल प्रोसेस है, ये विभाग का बहुत सा समय बचाती है और बल्कि ये प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा है, बिकॉज जो सिटीजन है वह स्वयं से अपनी जानकारी दे रहा है और यही हम चाहते हैं।
1: जी, तो घर घर जाके जो सेंसस का काम है, कौन लोग हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी जाती है और किस तरह से वो काम करते हैं?
0: जी, सेंसस की जो प्राइमरली सारा काम हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स या कर्मचारी करते हैं और हम टीचर्स का इस्तेमाल इस काम के लिए प्रमुखता करते हैं। इसके अलावा हम अन्य विभागों से भी डिफरेंट कर्मचारियों को लेते हैं और इसके लिए एक छोटा सा उनको ऑनरेरियम भी दिया जाता है। परंतु देखिए, हमारे टीचर्स ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। पहले फेज के अंदर लगभग 50,000 टीचर्स उनको हमने ट्रेन किया, वह घर घर तक गए। मौसम भी बहुत कंफर्टेबल नहीं था उन दिनों के अंदर, परंतु हमें कोई दिक्कत नहीं आई। आपके माध्यम से मैं सभी टीचर साहिबान का जो हरियाणा के अंदर कार्यरत है उनका तहे दिल से धन्यवाद।

0: बात करना चाहता हूँ। उन्होंने ये नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है और विभाग उनके साथ हमेशा खड़ा है, उनकी नीड्स के लिए, सेंसर्स की ट्रेनिंग के लिए या जो भी सेंसर से रिगार्डिंग उनको इशू है।
1: जी डॉक्टर ललित जैन, एक सवाल मन में उठ रहा है कि जब टीचर्स जनगणना के लिए जाएंगे तो क्या बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका कोई असर पड़ने वाला है?
0: देखिए, हमने कोशिश की है कि टीचर्स के जो पीरियड्स हैं उनको हम इस तरह से एडजस्ट करें कि बच्चों की पढ़ाई ना उसके ऊपर इफेक्ट हो। हमने रिक्वेस्ट किया टीचर्स को छुट्टी के दिन या ऑफ आवर्स के अंदर वो जनगणना का कार्य करने के लिए जाएं, तो पूरा हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के साथ मिलकर पूरा इसका खाका तैयार रहता है कि बच्चों की पढ़ाई पे कोई असर ना हो।
1: जी, बहुत से लोगों के मन में भ्रम रहता है कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति आए तो अगर हम अपना डाटा उनको देंगे या अपनी जानकारी उनको देंगे तो कहीं उनकी जानकारी लीक ना हो जाए या उनका डाटा लीक ना हो जाए, तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है इस विषय पर?
0: भारत सरकार की तरफ से हम प्रत्येक व्यक्ति को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि उनके दिया गया डाटा किसी भी प्रकार से लीक नहीं किया जा सकता, ना ही साझा किया जा सकता है। किसी अथॉरिटी के साथ या उनके विरुद्ध इस डाटा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसकी प्रोविजन हमारे सेंसर्स एक्ट और हमारे सेंसर्स रूल्स के अंदर दी गई है। तो मेरा निवेदन है आम जनमानस से कि जो भी उनसे सवाल पूछे जाते हैं, बिना किसी शक के, बिना किसी डर के, उसका वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ जवाब दे ताकि बेहतर नीतियाँ देश के विकास के लिए बन सके।
1: जी, कई बार मन में ये रहता है कि जो जनगणना करने वाला अधिकारी है क्या वो सही है या फिर कोई ऐसे ही व्यक्ति कोई उनके घर पे नहीं आ गया है, कहीं वो फ्रॉड तो नहीं है, तो ये किस तरह से डिफरेंस किया जा सकता है उनमें?
0: आपका बड़ा रेलेवेंट सवाल है। आजकल तरह तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी डिजिटल सेफ्टी रहे। मैं आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति आपके घर हमारी तरफ से आएगा, एक तो उनको स्पेशल आइडेंटिटी कार्ड जारी किया गया है जिसके ऊपर स्कैन कोड है। यदि किसी को कोई शक शुबा है, उस स्कैन कोड को स्कैन करके ये जाना जा सकता है कि व्यक्ति ऑथेंटिक है या नहीं। दूसरा, हम आपसे कभी भी कोई OTP नहीं मांगते, और ये भी एक बात है कि जनरली जो फ्रॉडस्टर्स रहते हैं वो OTP वगैरह लेते हैं, पर हम आपसे कभी भी OTP नहीं मांगेंगे, इसलिए बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। डिफरेंशिएट बड़ा इजीली किया जा सकता है। इसके अलावा आपके जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, चाहे म्यूनिसिपल काउंसलर्स हैं, चाहे पंचायत सचिव हैं, पटवारी हैं, सरपंच हैं, उनको भी इन व्यक्तियों की जानकारी दी गई है। तो यदि किसी को फिर भी कोई शक है तो उनसे संपर्क करके भी ऑथेंटिसिटी देखी जा सकती है।
1: बिल्कुल, क्योंकि जो आपकी टीम्स हैं वो ऐसे इलाकों में भी जाएंगी जहां पर लोग कम पढ़े लिखे होंगे, स्कैन नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी हालात में वो अपने इलाके के सरपंच से या काउंसलर से वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जो जनगणना अधिकारी है वो सही है या सही नहीं है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो जब जनगणना अधिकारी लोगों के घरों में जाएंगे तो लोगों से क्या अपेक्षा रहेगी आपकी?
0: देखिए, उनको एज अ ह्यूमन बीइंग आप ट्रीट बिल्कुल एक जो बेसिक कर्टसी है वो जरूर एक्सटेंड करें। आपके पास यदि कोई ऐसे दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है कि मैं सेंसस डिपार्टमेंट से आया हूँ, तो प्लीज़ उनको आप अपने प्रेमिसेस के अंदर आने दीजिए, क्योंकि ये कार्य में फिजिकली लगभग 1 घंटा लग जाता है। तो नेचुरली उनको बैठने के लिए स्थान दें और उनके सामने बैठकर जो जो सवाल वो पूछते हैं उसके आप जवाब दीजिएगा। यदि आपके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है तो पूछकर जो घर का व्यक्ति है, सीनियर एल्डर है, जिसको इसकी जानकारी है, वो वेट करेगा आपकी। और यदि आप चाहते हैं कि कोई और समय वो आए तो आप अपना प्रेफरेंस का समय भी उनको बता सकते हैं, वो दोबारा एक बार जरूर आएंगे। हमारी कोशिश रहती है कि हम हर घर को एटलीस्ट 3 बार नॉक जरूर करें, जिससे कि यदि किसी व्यक्ति की सुविधा नहीं है तो उसकी सुविधा देकर हम वहां पर आए।
1: जी, और किसी कारणवश कोई घर छूट जाता है या परिवार वालों को लगता है कि जनगणना अधिकारी उनके घर पे नहीं आए हैं, तो ऐसे हालात में वो क्या करें?
0: देखिए, हमारी एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन है 1855, सभी इसको नोट कर लें। यदि किसी को लगता है कि उसकी जनगणना में नाम आना रह गया है तो वो उस हेल्पलाइन के ऊपर कॉल कर हमें संपर्क कर सकता है। हम तुरंत उनके वहां पर जो प्रगणक है उनको भेज देंगे। इसके अलावा जो स्थानीय प्रशासन है, अगर आप किसी पंचायत में है तो पंचायत सचिव, तहसील में है तो तहसीलदार साहबान, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और उनकी ड्यूटी बनती है कि वे आपके घर आके आपकी जनगणना करवाएं।
1: जी डॉक्टर ललित जैन, आपसे बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे। यहां पर आपकी पसंद का एक गीत आपको और अपने सुनने वालों को सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत सुनवाएं?
0: देखिए, एक वो चक दे इंडिया का वो गीत है कुछ करिए, वो मेरा बहुत पसंदीदा गीत है, बड़ा मोटिवेटिंग मुझे लगता है, तो वो हमारे श्रोताओं को सुना दीजिए।
1: बिल्कुल जरूर, आइए सुनते हैं चक दे इंडिया फिल्म का ये गीत।

0: गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये विशेष कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से, और आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर ललित जैन, IAS, निदेशक जनगणना संचालन हरियाणा। डॉक्टर साहब, जिस तरह से बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि आप लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो जनगणना अधिकारी के साथ पूरा सहयोग करें ताकि देश के लिए जो नीतियां बनाई जाएं वो सही बन पाएं और हमारा देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता जाए। तो डॉक्टर ललित जैन, अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में कोई गलत जानकारी देता है या सही ढंग से सहयोग नहीं करता है, तो क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है?
1: देखिए, हमारा सबसे पहले

0: तो यदि कोई ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आती है तो स्थानीय प्रशासन कोशिश करता है कि उस व्यक्ति को समझाया जाए। यदि फिर भी नहीं कोई समझता तो कानून के अंदर ये प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देता है या हमारे जो सेंसर्स फंक्शनरीज हैं उनके साथ बदतमीजी करता है तो 3 साल की सजा का प्रावधान है। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, हम इस प्रोविजन को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो मेरा पुनः अनुरोध है सभी श्रोताओं से कि यदि जनगणना कर्मी आपके यहाँ आता है तो उसके साथ पूर्णतः सहयोग करे ताकि जनगणना को सफल किया जा सके।
1: डॉक्टर साहब, जब जनगणना की बात हो रही है तो एक सवाल मन में उठता है कि जो हमारे फौजी भाई हैं जो बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं या और जो हमारे सशस्त्र बल हैं जो अपनी अपनी ड्यूटी पे तैनात हैं, घर से बाहर हैं, तो उनकी जनगणना किस तरह से की जाएगी?
0: आपने बहुत अहम सवाल पूछा है। हमारे फौजी भाई तो फर्स्ट सिटीजन है हमारी कंट्री के, इनकी जनगणना इन्हीं की कंटोनमेंट्स में, इन्हीं की कंपनीज में, इन्हीं की ब्रिगेड्स में, इन्हीं के अपॉइंटेड ऑफिसर्स के द्वारा की जाएगी। हमारी तरफ से उसको सुपरवाइज किया जाएगा। ऑलरेडी वो प्रोसेस हमने चालू कर दी है, इसलिए हर फौजी भाई, हर पैरामिलिट्री फोर्स का मेंबर, सबको गिना जाएगा इस जनसंख्या की महायज्ञ के अंदर।
1: जी, और इसी के साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं हरियाणा से बाहर वो पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं तो उनकी जनगणना किस तरह से की जा सकती है?
0: बहुत से लोगों को ये भ्रांतियां रहती है कि यदि घर का कोई सदस्य बाहर है पढ़ाई की वजह से, काम की वजह, जनगणना कैसे की जाएगी। देखिए, जब भी आपके पास हमारा प्रगणक आएगा तो आप उनकी भी डिटेल्स वहां पे लिखवा सकते हैं। अदरवाइज यदि उनकी जनगणना पहले हो चुकी है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कहीं उन्होंने अपने आप को उस शहर के अंदर इनरोल तो नहीं करवा लिया। तो दोनों ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। वैसे आइडली जहां पे वो रह रहे हैं, जहां पे वो खाना खा रहे हैं, जहां पे उनकी किचन है, वहां पे उनकी जनगणना होनी चाहिए, परंतु फिर भी यदि वो रह गए तो आप उनको यहां पर अपने हाउस होल्ड के अंदर गिनवा सकते हैं।
1: और डॉक्टर साहब, जो व्यक्ति स्वयं जनगणना में हिस्सा लेता है आगे क्या प्रोसेस रहता है उसका, जो फॉर्म होता है?
0: सेल्फ इन्यूमरेशन सारा GPS एनेबल्ड है। कोई भी व्यक्ति भारतवर्ष में कहीं भी बैठकर अपने घर को GPS के माध्यम से आइडेंटिफाई करके एक तो अपनी जनसंख्या के अंदर इनरोलमेंट कर सकता है। जब वो इनरोलमेंट कर चुका होगा तो एक एक्नॉलेजमेंट आएगी जिसको हम सेल्फ इन्यूमरेशन ID बोलते हैं। इस ID को केवल इन्यूमरेटर या प्रगणक को देना होगा और हेंस उसकी जनगणना के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी।
1: जी, क्योंकि आज बहुत से सुनने वाले ये कार्यक्रम सुन रहे हैं तो चलते चलते जनगणना के बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी न्यूमरेटर आपके घर आए तो प्लीज उसको आप घर में, कॉलोनी में, अपार्टमेंट्स में, हाई राइज सोसाइटीज के अंदर एंट्री जरूर दें। यदि आपको कोई भी शक शुबा है उसके बारे में तो आप हमें 1855 के ऊपर संपर्क कर सकते हैं और साथ साथ सेल्फ इन्यूमरेशन के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। स्पेशली मेरे जो कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर साथी पढ़ रहे हैं, हमने आपके मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि एक फ्री पीरियड आप सबको दे दिया जाए जिसके अंदर आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर बैठकर ही अपनी सेल्फ इन्यूमरेशन कर सकें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो युवा साथी हैं, जो टेक सेवी हैं, जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, वो अपने परिवार की सेल्फ इन्यूमरेशन ज़रूर करें। जनगणना एक बहुत बड़ा एक आंदोलन है जिसके माध्यम से आप भारत के विकास के अंदर हिस्सा डाल सकते हैं। ना केवल ये बल्कि भारत के विकास में एक इम्पॉर्टेंट अंशदान आपका रहेगा, क्योंकि जो आप जानकारी देंगे उस सटीक जानकारी के माध्यम से ही सरकार अपनी नीतियाँ बनाएगी और आपके विकास की भागीदारी सुनिश्चित होगी।
1: जी, डॉक्टर ललित जैन, आप आकाशवाणी चंडीगढ़ के स्टूडियो में आए, जनगणना के बारे में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सुनने वालों तक पहुंचाई। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी, मैं आकाशवाणी और आपका धन्यवाद करता हूं।
1: दोस्तों, इस विशेष कार्यक्रम में हम जनगणना 2027 के दूसरे चरण की बात कर रहे थे। हमारे मेहमान थे श्री ललित जैन, IAS, निदेशक जनगणना संचालन हरियाणा। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी अरुण बावा ने। अब आज का ये विशेष कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे जनगणना 2027 दूसरे चरण के बारे में डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशंस हरियाणा डॉक्टर ललित जैन से रमेश कपूर की बातचीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
2: आइए अब सुनते हैं फिल्म किनारा से ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह ने, बोल है गुलजार के और संगीत दिया है RD बर्मन ने।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस से। शब्द रचना है हसरत जयपुरी की और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: अभी आपने मोहम्मद रफी को सुना एन इवनिंग इन पेरिस, इस फिल्म से आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
0: विविध भारती चंडीगढ़ से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शेरो नगमा।

शेर व नगमा की आज की इस महफिल में आपके साथ है आपका साथी अनिल पुंच। अब से लेकर 12 बजे तक इस महफिल में आपके साथ रहेंगे और यकीनन आप भी इस महफिल में हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि कुछ अशार होते हैं, कुछ नगमे होते हैं जिन्हें हम सजाते हैं इस महफिल में। तो यूं जब महफिल होती है तो भाई सबसे मिलना, बातें करना कितना अच्छा लगता है। तो आज एक ऐसा ही ख्याल मन में आया और सोचा कि आपसे कह दूं। एक सुकून सा है तेरी बातों में, एक सुकून सा है तेरी बातों में, जब भी बात होती है दिल खुश हो जाता।

और वाकई किसी अपने से मिलना, बातें करना कितना अच्छा लगता है, जितना भी कहें उतना कम लगता है। लेकिन कहीं कहीं ये कमी बहुत खलती है। तभी तो दिल ये कह उठता है कि होंठों पर हंसी है, आंखों में नमी है। होंठों पर हंसी है, आंखों में नमी है, हर सांस कहती है बस तेरी ही एक कमी है।

शेरो नगमा कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज़ ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। रेडियो पर आप ये हमारा कार्यक्रम हमारे कसौली ट्रांसमीटर से आप सुन रहे हैं। और इस शेरो नगमा प्रोग्राम में आप सबको मालूम ही है कि कुछ अशआर चुन कर लाते हैं मिलते जुलते नगमों के साथ, तो सिलसिला जारी है। अब फिर से बात करते हैं अपने महबूब के बारे में, उसकी हर एक अदा के बारे में। तुम महक बनकर मिल जाओ इन हवाओं में कहीं, तुम महक बनकर मिल जाओ इन हवाओं में कहीं, हम सांस लेकर दिल में उतार लेंगे तुम्हें।

और साथियों, मेरी सांस, मेरी धड़कन, मेरी जान हो तुम। मेरी सांस, मेरी धड़कन, मेरी जान हो।

और हम भी धीरे धीरे वहां आ पहुंचे हैं जहां हमें आपसे इजाजत लेनी होती है क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है। आज के इस प्रोग्राम में आपने जिन फिल्मों से गाने सुने वो फिल्में हैं तेरे नाम, साथी, साया, एयरलिफ्ट और आशिकी। कलाकार थे उदित नारायण, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, अरिजीत सिंह, अमाल मलिक, तुलसी कुमार और कुमार सानू। अब आज का शेरो नगमा खत्म करने के अपने साथ ही अनिल पुंज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेरो नगमा। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। दोपहर के 12 बजने को हैं अब समाचार। आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। द्विपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हो रही है। इससे पहले राष्ट्रपति पामला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पामला के बीच बैठक में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा होगी और दोनों देशों की साझेदारी बढ़ेगी। राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
2: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
1: राष्ट्रपति पामला ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। वे आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। 3 दिन की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे राष्ट्रपति पामला के साथ वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक जैसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
3: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
4: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
1: भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं।

0: दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इसमें असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में बंगाव बंदरगाह तक ले जाया जाएगा। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा जा रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 175 अंक बढ़कर 72,085 पर और निफ्टी 50 अंक की बढ़त के साथ 22,472 पर था। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारेकाल में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। आज उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और लक्षद्वीप में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है। अगले 2 दिन में मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों और महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए हालात अनुकूल होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 12:05 हुए हैं। हम आपको लिए चलते हैं विविध भारती मुंबई हमारे अगले प्रोग्रामों के लिए, और ये प्रोग्राम है यादों की महफिल।

आइए सुने यादों की महफिल। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। सलमा आगा की आवाज, हसन कमाल के बोल रवि की तर्ज। फिल्म का नाम है निकाह।

निशान फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। सही लुधियानवी की बोल आर डी बर्मन की तर्ज, फिल्म का नाम जोशीला।

उत्सव फिल्म का ये गीत था वसंत देव के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरस थी। दिन की इस भागदौड़ में आप विविध भारती के

आप सुन रहे हैं एतबार फिल्म का गाना, अशोक उसले और भूपिंदर की आवाजी, हसन कमाल की बोल बप्पी लहरी की तर्ज है।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की हो।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
1: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

इसी के साथ अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। हम विविध भारत

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन का एक बज चुका है, अब जानकारी हमारे बाकी के कार्यक्रमों की।

प्रादेशिक समाचारों के बारे में आपको पहले बता दें, आपको मालूम ही है अब से कुछ ही देर में 1:05 पर प्रादेशिक समाचार पहले हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे अपने जालंधर केंद्र 1:10 पर पंजाबी में प्रादेशिक समाचारों के लिए, और यही क्रम रहता है शाम 6:10 पर पहले हिंदी में, उसके बाद 6:20 पर पंजाबी में। समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे दोपहर 2:15 पर, शाम 5:00, शाम 6:00, रात 8:45 पर समाचार संध्या, और रात 11:00।

स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग आप सुनेंगे शाम 5:30 बजे। हरियाणा राज्य से समाचार समीक्षा आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। और 6:35 पर आपके लिए पंजाबी गीतों का कार्यक्रम पेश किया जाएगा। सात बजकर 45 मिनट पर मुख्य प्रादेशिक समाचार, उसके बाद कुछ पंजाबी गाने। रात 10:30 पर मुख्य प्रादेशिक समाचार पहले आप सुनेंगे, उसके बाद सुरसांझ कार्यक्रम में आपके लिए पंजाबी गीत पेश किए जाएंगे। हमारे इन कार्यक्रमों के साथ साथ आप फिल्म संगीत का भी आनंद लेते हैं। दोपहर 1:15 पर, शाम 5:05 पर।

विविध भारती मुंबई से जो प्रोग्राम रिले किए जाएंगे उन प्रोग्रामों में दोपहर 1:30 पर सुरीला सफर, 2 बजे प्रोग्राम त्रिवेणी, 2:30 बजे सदाबहार नगमे, 3 बजे महिलाओं का कार्यक्रम सखी सहेली।

IVF के बारे में इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। शाम 7 बजे फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम होता है और इस कार्यक्रम में फौजी भाइयों के मनोरंजन के लिए कुछ फिल्मी गाने सुनवाए जाते हैं। रात 8 बजे प्रोग्राम हवा महल में नाटिका आपको सुनवाएंगे परिवर्तन भाग 2। संगीतकार उषा खन्ना पर केंद्रित है आज के फनकार प्रोग्राम रात 9:30 बजे। 10 बजे सुनिए छाया गीत।

0: रात 8:15 पर प्रोग्राम चित्रलोक और 9 बजे आपके लिए। ये थी जानकारी हमारे आज के कार्यक्रमों की। आज के कार्यक्रमों का लेखा जोखा वो कार्यक्रम जो आपसे लेकर रात 11 बजे तक प्रसारित किए जाएंगे, कुछ हमारे यहाँ से, हमारे केंद्र से, और कुछ विविध भारती मुंबई से हम जो रिले करते हैं। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 1:05 होने का है। आप सुनिए प्रादेशिक समाचार पहले हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे अपने जालंधर केंद्र 1:10 पर पंजाबी में प्रादेशिक समाचारों के लिए।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप पुष्पा ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा है कि यह व्यापार समझौतों पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। आज नई दिल्ली में म्यूनिख नेताओं की बैठक में निर्मला सीतारामन ने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। उन्होंने कहा कि इस समझौते में लगभग 2 अरब लोगों और वैश्विक जीडीपी के करीब 1/4 हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह समझौता प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित किए बिना पूरक बाजार के लिए पहुंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के अंतर्गत अपनी 92.5% टैरिफ लाइनें खोल दी हैं, जो व्यापार मूल्य का लगभग 97% है। भारत ने आईची नागोया में हुए 2026 एशियाई खेलों में 85 पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत के अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी में पुरुष और महिला दोनों टीमों का स्वर्ण पदक जीतना रहा। क्रिकेट में भारत ने दोनों खिताब बरकरार रखे। महिला टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 147 रन से हराया, जबकि पुरुष टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर स्वर्ण पदकों की दोहरी सफलता हासिल की। कबड्डी में भी भारत ने दोनों स्वर्ण पदक जीते। महिला टीम ने ईरान को 37-34 से हराकर अपना खिताब बरकरार रखा, जबकि पुरुष टीम ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए ईरान को 40-34 से हराया। हॉकी में भी भारत ने दोनों स्वर्ण पदक अपने नाम किए। भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 से हराकर 44 साल बाद एशियाई खेलों में पदक जीता। निर्णायक गोल 10वें मिनट में लालरेम सियामी ने किया। यह 1982 के बाद एशियाई खेलों में महिला हॉकी में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। पुरुष टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर अपना खिताब बरकरार रखा। पहली बार भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने एक ही एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। दोनों टीमों ने लॉस एंजेलिस 2028 ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किया। जापान में संपन्न हुई एशियाई खेलों में भारत की इस शानदार उपलब्धि में हरियाणा के खिलाड़ियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक जीतकर पदक तालिका में 4th स्थान हासिल किया। भारतीय दल द्वारा जीते गए 21 स्वर्ण पदकों में से 14 स्वर्ण पदकों में हरियाणा के खिलाड़ियों की हिस्सेदारी रही। 5 खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत स्पर्धाओं में जबकि 9 खिलाड़ियों ने टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते हैं। वहीं हरियाणा की महिला खिलाड़ियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

प्रदेश की दो महिला खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते, जबकि 6 महिला खिलाड़ियों ने टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। हरियाणा के 4 खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत स्पर्धाओं में, जबकि 5 खिलाड़ियों ने टीम स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। इसी प्रकार प्रदेश के 8 खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीते, जबकि 1 टीम स्पर्धा में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीतने में योगदान दिया। इस तरह हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल 32 पदक हासिल किए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के साथ सिंगापुर प्रवास के दौरान मंडाई वन्यजीव अभयारण्य का दौरा किया। चंडीगढ़ में एक सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि गुरुग्राम एवं नूह के अरावली क्षेत्र में प्रस्तावित जंगल सफारी परियोजना के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री ने यहाँ की व्यवस्थाओं, वन्यजीव प्रबंधन, पर्यटन सुविधाओं और संरक्षण संबंधी कई बारीकियों का गहन एवं महत्वपूर्ण अध्ययन किया। मंडाई वन्यजीव अभयारण्य सिंगापुर का प्रमुख वन्यजीव एवं प्रकृति पर्यटन केंद्र है, जिसमें सिंगापुर जू, नाइट सफारी, रिवर वंडर्स और अन्य आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इन सभी पहलुओं का बारीकी से अवलोकन किया, ताकि हरियाणा की प्रस्तावित परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जा सके। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: अभी आपने लता मंगेशकर की आवाज में दीदार यार फिल्म से गीत सुना, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: फिल्म संगीत में अब सुनिए ये गीत आंगन की कली फिल्म से, बप्पी लहरी के संगीत में, खुद इन्हीं की आवाज में। शैली शैलेंद्र के बोल हैं।

अभी आपने बप्पी लहरी का गाया हुआ ये गीत सुना, शैली शैलेंद्र का लिखा हुआ ये फिल्म थी आंगन की कली और संगीतकार खुद बप्पी लहरी। आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से फिल्म संगीत, FM 107.2 MHz पर ये कार्यक्रम चल रहा है। इसके साथ साथ हमारी ऐप है न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी ये कार्यक्रम साथ साथ उपलब्ध है। रेडियो पर आप हमारे कार्यक्रम हमारे कसौली ट्रांसमीटर से सुन रहे हैं और फिल्म संगीत में अब बारी है आखिरी गाने की और ये गाना सुलक्षणा पंडित की आवाज़ में है। ये फिल्म है आहिस्ता आहिस्ता, गीतकार नक्श लालपुरी, संगीतकार खयाम।

0: अभी आपने नक्श लायलपुरी के लिखे हुए बोल सुने। खयाम के संगीत में सुलक्षणा पंडित की आवाज़ में यह फिल्म थी आहिस्ता आहिस्ता। इसी गाने के साथ ही अब आज का फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
0: और आइए अब आपको लिए चलते हैं विविध भारती मुंबई अगले प्रोग्राम के लिए, जिसका नाम है सुरीला सफर।

कई लोगों को ये गाना बहुत ज्यादा पसंद आया, और इसके अलावा हमारे बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने एकदम से मेन्यू लिख दिया है कि आज उनके लंच में क्या है। एक श्रोता है जो मक्के की रोटी और मक्खन है, हमारे यहाँ बोलते हैं कि सावन में कढ़ी नहीं बनाते। आज सीजन का पहला साग और कढ़ी बनाई है, मक्के की रोटी और मक्खन साथ में है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे गांव देहात में लंच टाइम नहीं होता, एक बार सुबह और एक बार शाम को भोजन बन जाता है। एक और श्रोता है जो लंच करते हुए कार्यक्रम सुन रहे हैं और कहते हैं कि टिफिन में रोटी मिक्स वेजिटेबल है और दाल चावल और अचार। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज तो भाई हमारे घर में मूली की सब्जी बनी है और ये मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिनका कहना है कि उनके यहाँ चना और तुअर की दाल मिक्स करके बनी है, हरा धनिया डाल के, और इसके अलावा आलू की सब्जी, और उनको महीनों में 30 दिन आलू की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि अक्टूबर की खास बात यह है कि प्रकृति भी शांत हो जाती है, ना बादल ना बिजली, नदी की धारा की तरह शांत हो जाती है। बदली हुई ऋतु का मन पर भी प्रभाव पड़ता है, उदासी और नीरसता को दूर करते हैं अक्टूबर के महीने में आने वाले उत्सव। एक और श्रोता लिखते हैं कि भाई हमारे यहाँ लंच में आज दाल चावल रोटी और अचार है, ये मेरा फेवरेट खाना है। ये कितने लोगों का फेवरेट खाना है ये भी बताइएगा। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि रजा मुराद पर फिल्माया गया है ये गाना और हमारे शहर के एक मुशायरे में कई बार वो आ चुके हैं। एक श्रोता हैं जिनके घर पर आज दाल बाटी परोसी जा रही है, भाई मुंह में पानी आ गया। एक और श्रोता हैं जिनके घर में है आलू परवल की सब्जी, दही पापड़, कच्ची मिर्च और कढ़ी, ओ हो हो हो हो। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने अपनी एक लघु कथा भेज रखी है, पर कार्यक्रम में वक्त कम है और इसलिए लघु कथा पढ़ना यहाँ संभव नहीं है। और एक श्रोता है जिनके घर में बन रही है बेसन की कढ़ी, कोथिंबीर की करी, कमल ककड़ी, भाई क्या क्या मेन्यू है, छोले भटूरे और रोटी किसी के घर का मेन्यू है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में कार्यक्रम करते हुए और यहाँ कोई दाल बाफला खा रहा है, कोई परवल और आलू की सब्जी, और ओ हो हो हो हो। बस अब मुझे लगता है कि अब ये खाने का मेन्यू नहीं पढ़ना चाहिए, गाने के मेन्यू की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातों वाला मेन्यू है इनमें हो गया है मुंह में पानी।

एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि भाई मजा आ गया आज के इस कार्यक्रम में, इतना सारा मेन्यू सुनकर आप लोगों को बांधे रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है, देखिए ये जो खाने पीने की बातें हैं इनको सुनकर मुंह में पानी भी आ गया और गला भी फंसने लगा, ये क्या हो रहा है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि अब आप सबके घर के लंच का मेन्यू सुनकर मुझे अपने घर की रोटी सब्जी नहीं भा रही है। मजेदार है, अभी तो और मेन्यू आने वाला है क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं ने ये मेन्यू लिख छोड़ा है। इडली सांभर कोई खा रहा है। और इसके अलावा एक और श्रोता लिख रही है कि मैं तो खाना बनाते बनाते आपको संदेश पोस्ट कर रही हूं और इस चक्कर में 15 मिनट का काम 1 घंटे में हो रहा है क्योंकि थोड़ा खाना बनाते हैं फिर मोबाइल उठाते हैं और उस पर कमेंट लिखना शुरू हो जाते हैं। तो भाई खाना बनाने में व्यवधान हो रहा है सुरीला सफर के जरिए। इसके अलावा एक श्रोता है जो लिख रहे हैं कि आज कढ़ी आलू की सब्जी साथ में चटनी बनी है। और एक श्रोता है जिनके घर पर मछली इलिश बनी है और आलू की सब्जी। एक श्रोता लिखते हैं कि श्राद्ध के चलते ज्यादातर घरों में खीर पूड़ी हलवा आलू की सब्जी ही मिलेगी। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल यही मेन्यू पोस्ट किया है और कढ़ी बहुत सारे श्रोताओं के घर पर बनी है, दाल बाफला भी बहुत सारे श्रोताओं के घर पर बन रहा है, तो ये बड़ा ही कॉमन मेन्यू नज़र आ रहा है। और राजमा चावल भी किसी किसी के घर पर बने। अब सबसे मज़ेदार बात तो मुझे ये लगी कि ये सारा मेन्यू सुनकर हमारे एक श्रोता ऐसे हैं जिनको अपने घर का खाना अच्छा नहीं लग रहा है, अब इसमें क्या किया जाए। आप मेरे बारे में भी तो सोचिए ज़रा कि इतने सारे मेन्यू को सुनकर मुझे कितना लालच आ रहा होगा। अच्छा ये बताइए कि जिस किसी से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसके लिए क्या खाना बनाना पसंद करते हैं। जैसे इस गाने में ये जो मोहतरमा है ये पलकों की झालर बन रही हैं।

हरजाई फिल्म का ये गाना कितने सारे श्रोताओं को पसंद है और भाई अब बहुत ही शानदार मेन्यू आ रहा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ दाल ढोकली सलाद और आम के अचार का भोजन है। एक श्रोता हैं ये लिख रही हैं कि मैं बहुत ही उलझन में हूँ, बहुत दिनों के बाद बेटा घर आने वाला है, उसकी पसंद का खाना बना है, हरी सब्जी तो वो कम पसंद करता है। आपने विविध भारती के श्रोताओं से मेन्यू पूछा तो मुझे लगा कि मैं इसमें से ही कुछ बना लूं, तो भुट्टे बॉईल कर लिए गए हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि भाई जब गाने प्रसारित किए जा रहे होते हैं तब आप स्टूडियो में क्या करते हैं, क्योंकि तब तो हम कमेंट कर रहे होते हैं। तो भाई इसका जवाब ये है कि हम कमेंट पढ़ रहे होते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रही हैं कि मैं अपने बेटे के लिए सत्तू की लिट्टी

और चोखा बनाती हूँ क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद है। छुट्टियों में जब वो घर आता है तो ये बनता है। एक श्रोता है जो अपने पतिदेव के लिए बैंगन का भरता और पराठे बनाती हैं। और एक श्रोता लिख रही हैं कि हर गृहिणी को अपने परिवार में अलग अलग सदस्यों की पसंद के हिसाब से खाना बनाना पड़ता है। एक और श्रोताएं जो लिखती हैं कि मैं अभी फिजियोथेरेपी करवा के आई हूं और अब फूलगोभी की सब्जी और मूंग की धुली दाल बना रही हूं, लेकिन इतना सारा मेन्यू सुनकर कंफ्यूज हो गई हूं कि भाई मुझे क्या

0: काम की।
1: भाई इस गाने में मोहब्बत बड़े काम की चीज है और ये बेकार बेदाम की चीज है, ये इन दो बातों पर बहस हो रही है। तो चलिए आज एक पोल करते हैं, कितने लोगों को लगता है मोहब्बत काम की चीज है, कितनों को लगता है ये बेकार बेदाम की चीज है। लिखिए।

तो भैया हमने आपसे ये पूछा है कि कितने लोगों को लगता है कि मोहब्बत काम की चीज है और कितने लोगों को लगता है काम की चीज नहीं है।

0: भाई के कार्यक्रम में इतना कम वक्त है कि ये मेन्यू शामिल करूं कि ना करूं।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
0: अब जरा सोचिए कि लिस्ट में तो नहीं था ये गाना, लेकिन जिन श्रोताओं को खाना बनाना नहीं आता, पुरुषों को, उनके लिए तो भाई ये मैं के गई वाला गाना ही सही होना चाहिए। फिर बहुत सारे मेन्यू जो हैं, अब तमाम श्रोताओं से तो मैं यही कहूँगा कि आप आज ये जो सुरीला सफ़र है इसका इसके कमेंट सेक्शन को ज़रूर पढ़िएगा, और यहाँ पर जो खाने का मेन्यू है ना, ऐसी लिस्ट बन जाएगी कि कई हफ्तों तक आपके घर पर अच्छा अच्छा खाना बनता ही चला जाएगा। और अब रूठने मनाने वाला गाना कार्यक्रम का तकरीबन आखिरी गाना है। हमने पूछा था आज कौन किससे रूठा हुआ है, ज्यादा लोगों के जवाब नहीं आए, यानी कोई किसी से रूठा नहीं है। भाई किसी से भी रूठिए पर विविध भारती से नहीं।

बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं और बहुत सारे श्रोताओं ने, बल्कि तकरीबन सभी श्रोताओं ने ये कहा है कि मोहब्बत काम की ही चीज है और सुकून से जीने का सबब है। एक श्रोता लिखते हैं कि अगर प्यार ना हो तो जिंदगी नरक हो जाए। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने मजाक करते हुए ये लिखा है कि शादी से पहले मोहब्बत काम की चीज है और शादी के बाद काम की चीज नहीं है। इसके अलावा बहुत सारा मेन्यू भी आ रहा है और अब मुझे ये समझ में

भाई रूठने की बात तो हो गई। एक श्रोता ने ये लिखा है कि हमारा तो किचन में जाना निषिद्ध है क्योंकि हमें कुछ भी बनाना नहीं आता। अब ये पुरुष श्रोता हैं तो भाई आज ये कहकर इस कार्यक्रम से विदा लेंगे हम कि अगले कार्यक्रम में जब मिलेंगे तो पुरुष श्रोताओं का बनाया हुआ मेन्यू पूछेंगे, तब आप बताइएगा कि आपको कुछ बनाना नहीं आता, वरना तब तक सीख लीजिए क्योंकि

जरूरत के लिए पैसे। SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

देखिए ना भाई, ये पल किस तरह से बीत गया और कार्यक्रम का वक्त एकदम खत्म हो चुका है। आप सभी के साथ बहुत आनंद आया, आप सभी श्रोताओं ने जिस तरह से कमेंट्स करके साथ दिया और खासतौर पर जिस तरह से आज लंच का मेन्यू बताया, भाई मजा आ गया। फिर मिलेंगे और इस कार्यक्रम का मजा ही इस बात में है कि मिलकर तय करते हैं हम सुरीला सफर। दिन की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहिए, विविध भारती के संग बने रहिए, देश की सुरीली धड़कन। इजाजत दीजिए, यूनुस खान को नमस्कार।

दोस्तों आइए विचार करें कि पर्यावरण को बचाने की मुहिम किस तरह से चलाई जाए। पर्यावरण प्रदूषण के दूरगामी दुष्प्रभाव बहुत ही घातक हैं। वायुमंडल का ताप बढ़ रहा है, ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो रहा है, हवा प्रदूषित हो रही है, वनस्पतियां नष्ट हो रही हैं, हवा में विषैले कण घुल रहे हैं, जल प्रदूषित हो रहा है, इंसान तमाम बीमारियों से ग्रस्त हो रहा है। क्या अब भी हमें सचेत नहीं होना चाहिए? अगर पर्यावरण सुरक्षा के प्रति अभी भी हम सजग नहीं हुए तो ऐसी धरती सिर्फ इतिहास के पन्नों में अंकित रह जाएगी।

दोस्तों, जिस तरह हमारा जनजीवन पर्यावरण से प्रभावित होता है, उसी तरह हमारे कार्यकलापों से पर्यावरण प्रभावित होता है। लकड़ी के लिए जब हम पेड़ काटते हैं तो भूल जाते हैं कि धीरे धीरे पूरे जंगल समाप्त हो रहे हैं। जंगल समाप्त होने से वन्य प्राणी कम हो रहे हैं, जलाशय सूख रहे हैं, कुछ जंगली जीवों की तो पूरी की पूरी प्रजाति ही नष्ट हो रही है। गाँव के भीतर कई शहरों में भी वन्य प्राणियों के प्रवेश का ये बहुत बड़ा कारण है। इसलिए सबसे पहले पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई जाए, नए नए पौधे लगाए जाएं।

पर्यावरण प्रदूषण में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, थल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण शामिल हैं। नदियों में गंदगी फेंकना, घर के कचरे को खुले में फेंकना, तेज आवाज में लाउडस्पीकर का प्रयोग करना, कारखानों का धुआं, इसके अलावा बहुत सारा ई कचरा, ये सब जिम्मेदार हैं पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने में। आइए त्रिवेणी तट पर विचार करें, जितना संभव हो प्रदूषण न फैलाएं। पर्यावरण को बचाने के लिए हरियाली के बीज रोपें। लहलहाएंगे जब आपके रोपे पेड़ पौधे, तो आपका मन भी खुशियों से झूम उठेगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने तथा विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए काम करेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की। कहा, यह व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया। और मौसम विभाग ने कल तक कर्नाटका, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कार्यकाल में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्विट्जरलैंड ने आज परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणालियों और अवसंरचना के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद हुए। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के प्रति राष्ट्रपति गी पामला की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने स्विट्जरलैंड में भारतीय निर्यात के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने और दोनों देशों के बीच निवेश को और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इससे स्विट्जरलैंड को भारतीय कृषि उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात बढ़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत जैव प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान, बैंकिंग, बीमा, खाद्य प्रसंस्करण और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्विट्जरलैंड के निवेश को आकर्षित करेगा।
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश रक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी पर सहमत हुए।
1: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश वैश्विक शांति के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।
1: हम ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। यूक्रेन हो या पश्चिम

0: पश्चिम एशिया भारत शांति की दिशा में किए जाने वाले हर सार्थक प्रयास का समर्थन करता रहा है। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म अनिवार्य है।
1: इससे पहले राष्ट्रपति पामलॉन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार तथा आर्थिक भागीदारी समझौते सहित भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी को और मजबूत करने के राष्ट्रपति पामलॉन के विचारों की सराहना की। राष्ट्रपति पामलॉन को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
2: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत इस वर्ष दिसंबर तक तीन और देशों के साथ व्यापार समझौते करने की उम्मीद में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल द्विपक्षीय निवेश संधियों का नया प्रारूप तैयार है और इसे जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नए प्रारूप में दोनों पक्षों के निवेशकों को अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में म्यूनिख नेताओं की बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
4: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
5: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
4: There are rooms to operate from, both sides would do it.
1: वित्त मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा है कि ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया।
5: मुझे लगता है कि ये समझौता बिल्कुल उपयुक्त है क्योंकि ये 2 अरब लोगों के बीच होने वाला समझौता है। इस समझौते के माध्यम से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1/4 हिस्सा कवर होता है। भारत ने इस समझौते के अंतर्गत अपनी कुल टैरिफ लाइनों में से 92.5% को खोल दिया है और मूल्य के आधार पर लगभग 97% को कवर किया है।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना किया। इसमें असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में पंगाव बंदरगाह तक ले जाया जा रहा है। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा गया। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा है कि भारत ने दुनिया को दिखाया है कि पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक विकास 2 अलग-अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज विश्व पर्यावास दिवस समारोह में श्री साहू ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के संकल्प के साथ सरकार की प्राथमिकता शहरों और गांवों को हरित, स्वच्छ, सतत और रहने योग्य बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास

0: और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। विशेष श्रृंखला में आज जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के विकास को किस प्रकार आकार दे रहा है।
1: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है, जिसके पहले चरण को PPP मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपए के कुल निवेश से विकसित किया गया है। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय है।
2: देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले राज्यों में से एक हो गया है। एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहाँ के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला।
1: नोएडा के निवासी मोहित कुमार ने कहा कि ये एयरपोर्ट पूरे क्षेत्र को नई पहचान देगा।
3: इससे रोजगार, व्यापार, उद्योग, पर्यटन और युवाओं के लिए नए अवसर बढ़ेंगे। आसपास के गाँव और कस्बों में सड़क परिवहन, अन्य सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी। यह एयरपोर्ट केवल एक हवाई अड्डा नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र के उज्जवल भविष्य की नींव है।
1: पहले चरण में हवाई अड्डे की यात्री संचालन क्षमता 12 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष है, जिसे भविष्य में 70 मिलियन तक ले जाने की योजना है। ये हवाई अड्डा देश में एविएशन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। ये याचिका निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान एकतरफा फैसले लेने के आरोपों के संबंध में दायर की गई थी। न्यायालय की पीठ ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पर तैनात अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के लिए रिश्वत देने के दावों के बाद न्यायालय ने यह निर्णय लिया है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि न्यायालय के फैसले से ये साबित होता है कि राज्य सरकार जानबूझकर अपने लोगों को बचा रही थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। RBI के नीति समीक्षा की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें तथा खाद्य मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही है। समिति मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों का भी आकलन करेगी। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 218 अंक बढ़कर 72,128 पर, जबकि निफ्टी 71 अंक की बढ़त के साथ 22,493 पर था। यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती नियंत्रित शेष क्षेत्रों को वापस लेने और पूरे देश में सत्ता बहाल करने के लिए सैन्य अभियान शुरू करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
5: राष्ट्रपति रशाद अल अलीमी ने कहा कि डी एस्केलेशन की सभी कोशिशें खत्म हो चुकी है। जमीनी स्तर पर यमनी फोर्सेस ने ताइज के कई मोर्चों पर भारी क्लैशेस की जानकारी दी है। उन्होंने हूती इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को नाकाम करने और सैकड़ों हूती लड़ाकों के हताहत होने का दावा किया है। हालांकि हूतियों ने कुछ इलाकों में यमनी फोर्सेस की बढ़त के दावों को खारिज किया है। इस बीच सऊदी अरेबिया ने यमनी आर्म फोर्सेस को फुल ऑपरेशनल सपोर्ट देने का भरोसा दिया है और कहा है कि यह अभियान स्टेट अथॉरिटी बहाल होने तक जारी रहेगा। डेवलपमेंट से यमन कंफ्लिक्ट के और बढ़ने और लड़ाई के नए एक फेज में प्रवेश करने की आशंका बढ़ गई है। मनीष शिवा, आकाशवाणी दुबई।
0: मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड, तेलंगाना, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में कल तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामलांग के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा दोनों देश

0: व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने और विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की, कहा ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने सदाबहार नगमे।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम।

0: गदर एक प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गट लेके
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाव
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ।

0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: शकील बदायूं के बोल।

और कार्यक्रम की आखिरी पेशकश सुमन कल्याणपुर की आवाज, नूर महल फिल्म का ये गीत सबाब खानी के बोल जानी बाबू कव्वाल की तर्ज।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारे सभी सखियां सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार और साथ में हेल्दी नमस्कार।
2: बिल्कुल वो बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना तो जिंदगी चलती नहीं है। आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे तभी सब कुछ अच्छा लगता है।
1: सब अच्छा लगता है और अपने परिवार का खूब अच्छा ध्यान रखिए।
2: बिल्कुल। और आज हम विषय बता देते हैं, ध्यान रखा जाता है अच्छे खाने से। तो आज हम बताने वाले हैं प्रादेशिक व्यंजन में छत्तीसगढ़ के चौसेला और बफौरी। हमारे साथियों ने भी व्यंजन की इस व्यंजन की रेसिपी भेजकर रखी है तो हम पढ़ेंगे।
1: बिल्कुल। और जब साफ सुथरा घर होता है ना तो घर में बैठना रहना कितना अच्छा लगता है।
2: बहुत अच्छा लगता है।
1: अपने पसंद के गाने सुनो, जो चाहे वो करो, अपनी पसंद की किताब पढ़ो या फिर कुछ अगर ऐसे ही कुछ नाचना है मिलके सब परिवार के साथ वो भी कर सकते हैं।
2: और कहीं भी देखो, आप कहीं भी होकर के आओ, घूम फिर के आओ, आपको चाहे कितनी भी सुविधाएं मिली हो लेकिन जब आप अपने घर का दरवाजा खोलते हैं तो वो हमें स्वर्ग से कम नहीं लगता है ना।
1: कैसे सुकून वाली हम सांस लेते ना। हाँ, घर हाँ।
2: और आज कथा सुधा में हम अमावस की रात का भाग दो सुनवाने वाले हैं।
1: बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने संदेशों में भेजा है कि वो इंतजार कर रहे हैं कहानी।
2: बिल्कुल। और शिक्षक और विद्यार्थियों में संवाद जरूरी है तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सुनेंगे एक गीत।
1: बिल्कुल भाई, संवाद तो बहुत जरूरी है लेकिन साथ साथ में गीतों का होना बहुत आवश्यक है।

0: बदल दी है।
1: मंजरी, दिल भले आज ना दे या कल ना दे, लेकिन कहानी सुनने में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए।
2: बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं कहानी
1: अमावस की रात।
3: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
4: कथा सुधा में आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की कहानी अमावस की रात। अब तक आपने सुना,
5: दीपावली की संध्या थी। पंडित देवदत्त अपने अर्ध अंधकार वाले कमरे में मौन परंतु चिंता में निमग्न थे। आज एक महीने से उनकी पत्नी गिरजा की जिंदगी को निर्दय काल ने खिलवाड़ बना लिया है। पंडित देवदत्त के पूर्वजों का कारोबार बहुत विस्तृत था। वे लेन देन किया करते थे। पंडित देवदत्त का उन लेखों पर अभिमान करना अनुचित नहीं कहा जा सकता जिसमें 70 लाख रुपयों की रकम छुपी हुई थी। इस नगर में लाला शंकर दास अच्छे प्रसिद्ध वैद्य थे। वैद्य जी के हृदय के कोमल भाग तक पहुंचने के लिए देवदत्त ने बहुत कुछ हाथ पैर चलाए। वो आंखों में आंसू भर के आता, किंतु वैद्य जी का हृदय ठोस था, उसमें कोमल भाव था ही नहीं।
4: आइए अब सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
5: वही अमावस्या की रात्रि थी। वृक्षों पर सन्नाटा छा गया था। जीतने वाले अपने बच्चों को नींद से जगाकर इनाम देते थे। हारने वाले अपनी रुष्ट और क्रोधित स्त्रियों से क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इतने में घंटी के लगातार शब्द वायु और अंधकार को चीरते हुए कान में आने लगे। उनकी सुहावनी ध्वनि इस निस्तब्ध अवस्था में अत्यंत भली प्रतीत होती थी। ये शब्द समीप हो गए और अंत में पंडित देवदत्त के समीप आकर उस खंडहर में डूब गए।

0: जी उस समय निराशा के अथाह समुद्र में गोते खा रहे थे। शोक में इस योग्य भी नहीं थे कि प्राणों से भी अधिक प्यारी गिरिजा का दवा दर्पण कर सकें। क्या करें, इस निष्ठुर वैद्य को यहां कैसे लाएं? जालिम, मैं सारी उम्र तेरी गुलामी करता, तेरे इश्तहार छापता, तेरी दवाइयां कूटता। आज पंडित जी को यह ज्ञात हुआ कि 70 लाख की चिट्ठी पत्रियां इतनी कौड़ियों के मोल भी नहीं। पैतृक प्रतिष्ठा का अहंकार अब आंखों से दूर हो गया। उन्होंने उस मखमली थैले को संदूक से बाहर निकाला और उन चिट्ठी पत्रियों को, जो बाप दादों की कमाई का शेषांश थी और प्रतिष्ठा की भांति जिनकी रक्षा की जाती थी, एक एक कर दिया को अर्पण करने लगे। जिस तरह सुख और आनंद से पालित शरीर चिता की भेंट हो जाती है, उसी प्रकार वो कागजी पुतलियां भी उस प्रज्वलित दिया के धधकते हुए मुंह का ग्रास बनती थीं। इतने में किसी ने बाहर से पंडित जी को पुकारा। उन्होंने चौंक कर सिर उठाया। वे नींद के अंधेरे में टटोलते हुए दरवाजे तक आए। देखा कि कई आदमी हाथ में मशाल लिए हुए खड़े हैं और एक हाथी अपने सूंड से उस अरण्य के वृक्षों को उखाड़ रहा है जो द्वार पर द्वारपालों की भांति खड़े थे। हाथी पर एक सुंदर युवक बैठा है जिसके सिर पर केसरिया रंग की रेशमी पाग है। माथे पर अर्धचंद्राकार चंदन, भाले की तरह तनी हुई नोकदार मूछें, मुखारविंद से प्रभाव और प्रकाश टपकता हुआ कोई सरदार मालूम पड़ता था। उसका कलीदार अंगरखा और चुनावदार पैजामा, कमर में लटकती हुई तलवार और गर्दन में सुनहरे कंठे और जंजीर उसके सजीले शरीर पर अत्यंत शोभा पा रहे थे। पंडित जी को देखते ही उसने रकाब पर पैर रखा और नीचे उतरकर उनकी वंदना की। उसके इस विनीत भाव से कुछ लज्जित होकर पंडित जी बोले,
1: आपका आगमन कहां से हुआ है?
0: नवयुवक ने बड़े नम्र शब्दों में जवाब दिया,
2: मैं आपका पुराना सेवक हूँ। दास का घर राजनगर है, मैं वहां का जागीरदार हूँ। मेरे पूर्वजों पर आपके पूर्वजों ने बड़े अनुग्रह किए हैं। मेरी इस समय जो कुछ प्रतिष्ठा तथा संपदा है, सब आपके पूर्वजों की कृपा और दया का परिणाम है। मैंने अपने अनेक स्वजनों से आपका नाम सुना था और मुझे बहुत दिनों से आपके दर्शन की आकांक्षा थी। आज वह सुअवसर भी मिल गया, अब मेरा जन्म सफल हुआ।
0: पंडित देवदत्त की आंखों में आंसू भर आए। पैतृक प्रतिष्ठा का अभिमान उनके हृदय का कोमल भाग था। वो दीनता जो उनके मुख पर छाई हुई थी थोड़ी देर के लिए विदा हो गई। वे गंभीर भाव धारण करके बोले,
1: ये आपका अनुग्रह है जो ऐसा कहते हैं, नहीं तो मुझ जैसे कपूत में तो इतनी भी योग्यता नहीं है जो अपने को उन लोगों की संतति कह सकूं।
0: इतने में नौकरों ने आंगन में फर्श बिछा दिया। दोनों आदमी उस पर बैठे और बातें होने लगी, वे बातें जिनका प्रत्येक शब्द पंडित जी के मुख को इस तरह प्रफुल्लित कर रहा था जिस तरह प्रातः काल की वायु फूलों को खिला देती है। पंडित जी के पितामह ने नवयुवक ठाकुर के पितामह को 25,000 रुपए कर्ज दिए थे। ठाकुर अब गया में जाकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहता था, इसलिए जरूरी था कि उसके जिम्मे जो कुछ ऋण हो उसकी एक एक कौड़ी चुका दी जाए। ठाकुर को अपने पुराने बही खाते में ये ऋण दिखाई दिया। 25 के अब 75,000 हो चुके। वही ऋण चुका देने के लिए ठाकुर आया है। धर्म ही वो शक्ति है जो अंतःकरण में ओजस्वी विचारों को पैदा करती है। हाँ, इस विचार को कार्य में लाने के लिए पवित्र और बलवान आत्मा की आवश्यकता है, नहीं तो वे ही विचार क्रूर और पापमय हो जाते हैं। अंत में ठाकुर ने कहा,
2: आपके पास तो वे चिट्ठियां होंगी।
0: देवदत्त का दिल बैठ गया। वे संभल कर बोले,
1: संभवतः हो, कुछ कह नहीं सकते।
0: ठाकुर ने बहुत लापरवाही से कहा,
2: ढूंढिए, यदि मिल जाए तो हम लेते जाएंगे।
0: पंडित देवदत्त उठे लेकिन हृदय ठंडा हो रहा था।
1: शंका होने लगी है कि कहीं भाग्य हरे भाग ना दिखा रहा हो। कौन जाने वो पुर्जा जलकर राख हो गया या नहीं। यदि ना मिला तो रुपए कौन देता है? शोक की दूध का प्याला सामने आकर हाथ से छूट जाता है। हे भगवान, वो पत्री मिल जाए। हमने अनेक कष्ट सहे हैं, हम पर

0: दया करो, अब हम पर दया करो।
1: इस प्रकार आशा और निराशा की दशा में देवदत्त भीतर गए और दिया के टिमटिमाते हुए प्रकाश में बचे हुए पत्रों को उलट पुलट कर देखने लगे। वे उछल पड़े और उमंग में भरे हुए पागलों की भांति आनंद की अवस्था में दो तीन बार कूदे, तब दौड़कर गिरजा को गले लगा लिया और बोले,
0: प्यारी, यदि ईश्वर ने चाहा तो अब तो बच जाएगी गिरिजा, अब तो बच जाएगी।
1: उन्मत्तता में उन्हें ये एकदम नहीं जान पड़ा कि गिरिजा अब नहीं है, केवल उसकी लोथ है। देवदत्त ने पत्री को उठा लिया और द्वार तक वे इसी तेजी से आए मानो पांव में पर लग गए, परंतु यहां उन्होंने अपने को रोका और हृदय में आनंद की उमड़ती हुई तरंग को रोक कर कहा,
0: लीजिए, वो पत्री मिल गई, संयोग की बात है, नहीं तो 70 लाख के कागज दीमकों के आहार बन गए।
1: आकस्मिक सफलता में कभी कभी संदेह बाधा डालता है। जब ठाकुर ने उस पत्री को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो देवदत्त को संदेह हुआ कि कहीं वो उसे फाड़कर फेंक न दे। यद्यपि ये संदेह निरर्थक था, किंतु मनुष्य कमजोरियों का पुतला है। ठाकुर ने उनके मन के भाव को ताड़ लिया। उसने बेपरवाही से पत्री को लिया और मशाल के प्रकाश में देखकर कहा,
2: अब मुझे विश्वास हुआ, ये लीजिए आपका रुपया आपके समक्ष है, आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पूर्वजों की मुक्ति हो जाए।
1: ये कहकर उसने अपनी कमर से एक थैला निकाला और उसमें से 1-1 हजार के 75 नोट निकालकर देवदत्त को दे दिए। पंडित जी का हृदय बड़े वेग से धड़क रहा था, नाड़ी तीव्र गति से कूद रही थी। उन्होंने चारों ओर चौकन्नी दृष्टि से देखा कि कहीं कोई दूसरा तो नहीं खड़ा है, और तब कांपते हुए हाथों से नोटों को ले लिया। अपनी उच्चता प्रकट करने की व्यर्थ चेष्टा में उन्होंने नोटों की गणना भी नहीं की, केवल उड़ती हुई दृष्टि से देखकर उन्हें समेटा और अपने जेब में डाल लिया।

0: वही अमावस्या की रात्रि थी। स्वर्गीय दीपक भी धुंधले हो चुके थे। सूर्य नारायण के आने का आभास हो रहा था। उदयाचल फिरोजी बाना पहन चुका था। अस्ताचल में भी हल्के श्वेत रंग की आभा दिखाई दे रही थी। पंडित देवदत्त ठाकुर को विदा करके घर चले। उस समय उनका हृदय उदारता के निर्मल प्रकाश से प्रकाशित हो रहा था। कोई प्रार्थी उस समय उनके घर से निराश नहीं जा सकता था। सत्यनारायण की कथा धूमधाम से सुनने का निश्चय हो चुका था। गिरजा के लिए कपड़े और गहने के विचार ठीक हो गए। अंतःपुर में ही उन्होंने शालिग्राम के सम्मुख मनसा वाचा कर्मणा सिर झुकाया और तब शेष चिट्ठी पत्रियों को समेट कर उसी मखमली थैले में रख दिया। किंतु अब उनका यह विचार नहीं था कि संभवतः उन मुर्दों में भी कोई जीवित हो उठे। वरन जीविका से निश्चिंत हो अब वे पैतृक प्रतिष्ठा पर अभिमान कर सकते थे। उस समय वे धैर्य और उत्साह के नशे में मस्त थे।
1: अब मुझे जिंदगी में अधिक संपदा की जरूरत नहीं। ईश्वर ने मुझे इतना दे दिया है, इससे मेरी और गिरिजा की जिंदगी आनंद से कट जाएगी।
0: उन्हें क्या खबर थी कि गिरिजा की जिंदगी पहले कट चुकी है। देवदत्त के दिल में ये विचार गुदगुदा रहा था कि जिस समय गिरिजा इस आनंद समाचार को सुनेगी उस समय अवश्य उठ बैठेगी। चिंता और कष्ट ने ही उसकी ऐसी दुर्गति बना दी है। जिसे भरपेट कभी रोटी नसीब न हुई, जो कभी नैराश्यमय धैर्य और निर्धनता के हृदय विदारक बंधन से मुक्त न हुई, उसकी दशा इसके सिवा और हो ही क्या सकती है। ये सोचते हुए वे गिरिजा के पास गए और आहिस्ता से हिलाकर बोले,
1: गिरिजा गिरिजा आंखें खोलो, देखो ईश्वर ने तुम्हारी विनती सुन ली और हमारे ऊपर दया की है। गिरिजा गिरिजा।

0: Casi तभी
1: किंतु जब गिरिजा तनिक भी ना मिनकी तब उन्होंने चादर उठा दी और उसके मुंह की ओर देखा। हृदय से करुणात्मक ठंडी आह निकली। वे वहीं सिर थाम कर बैठ गए। आंखों से शोणित की बूंदें सी टपक पड़ी।
0: क्या ये संपदा इतने महंगे मूल्य पर मिले है? क्या परमात्मा के दरबार से मुझे इस प्यारी जान का मूल्य दिया गया है? ईश्वर, तुम खूब न्याय करते हो। मुझे गिरिजा की आवश्यकता है, रुपयों की आवश्यकता नहीं। ये सौदा बड़ा महंगा है। बड़ा मैं।

0: अमावस्या की अंधेरी रात गिरिजा के अंधकार में जीवन की भांति समाप्त हो चुकी थी। खेतों में हल चलाने वाले किसान ऊंचे और सुहावने स्वर से गा रहे थे। सर्दी से कांपते हुए बच्चे सूर्य देवता से बाहर निकलने की प्रार्थना कर रहे थे। पनघट पर गांव की अलबेली स्त्रियां जमा हो गई थीं, पानी भरने के लिए नहीं, हंसने के लिए। कोई घड़े को कुएं में डालकर अपनी पोपली सास की नकल कर रही थी, कोई खम्भों से चिपटी हुई अपनी सहेली से मुस्कुराकर प्रेम रहस्य की बातें करती थी। बूढ़ी स्त्रियां पोतों को गोद में लिए अपनी बहुओं को कोस रही थीं कि घंटे भर हुए अब तक कुएं से नहीं लौटी। किंतु राज वैद्य लाला शंकर दास अभी तक मीठी नींद ले रहे थे। खांसते हुए बच्चे और कराहते हुए बूढ़े उनके औषधालय के द्वार पर जमा हो चले थे। इस भीड़ भब्बड़ से कुछ दूर पर दो तीन सुंदर किंतु मुरझाए हुए नवयुवक टहल रहे थे और वैद्य जी से एकांत में कुछ बातें करना चाहते थे। इतने में पंडित देवदत्त, नंगे सिर नंगे बदन, लाल आंखें, डरावनी सूरत, कागज का एक पुलिंदा लिए हुए दौड़ते हुए आए और औषधालय के द्वार पर इतनी जोर से हाँक लगाने लगे कि वैद्य जी चौंक पड़े और कहार को पुकार कर बोले कि दरवाजा खोल दे। कहार महात्मा बड़ी रात गए किसी बिरादरी के पंचायत से लौटे थे। उन्हें दीर्घ निद्रा का रोग था जो वैद्य जी के लगातार भाषण और फटकार की औषधियों से भी कम न होता था। आप ऐंठते हुए उठे और किवाड़ खोलकर हुक्का चिलम की चिंता में आग ढूंढने चले गए। हकीम जी उठने की चेष्टा कर रहे थे कि सहसा देवदत्त उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए और नोटों का पुलिंदा उनके आगे पटक कर बोले,
1: वैद्य जी, ये 75,000 के नोट है, ये आपका पुरस्कार और आपकी फीस है। अब आप चलकर गिरिजा को देख लीजिए और ऐसा कुछ कीजिए कि वो केवल एक बार आंखें खोल दे। ये उसकी एक दृष्टि पर निछावर है, केवल केवल एक दृष्टि पर। आपको रुपए मनुष्य की जान से प्यारे हैं, वे आपके समक्ष हैं। मुझे गिरिजा की एक चितवन इन रुपयों से कई गुना प्यारी है। मुझे गिरिजा की एक चितवन इन रुपयों से कई गुना प्यारी है। इन रुपयों से कई गुना प्यारी
0: है। वैद्य जी ने लज्जा में सहानुभूति से देवदत्त की ओर देखा और केवल इतना कहा,
2: मुझे शोक है, मुझे अत्यंत शोक है। सदैव के लिए तुम्हारा अपराधी हूं, किंतु तुमने मुझे शिक्षा दे दी

0: ईश्वर ने चाहा तो ऐसी भूल कदापि ना होगी। मुझे शोक है, सचमुच शोक है।
1: ये बातें वैद्य जी के अंतःकरण से निकली थी।
2: आज आपने सुना कथा सुधा में मुंशी प्रेमचंद की कहानी अमावस की रात का दूसरा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, गिरिजा राजुल अशोक, पंडित देवदत्त जी श्याम, वैद्य लाला शंकर दास जयंत्र पात्रिकर, ठाकुर नवयुवक, दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुषी पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: अंतराल का वक्त हुआ खत्म और कार्यक्रम चल रहा है
1: सखी सहेली। और हमारे साथियों ने कथा सुधा में आनंद लिया होगा और अब है हम लोगों के आपस में बात करने की बारी। और शिक्षक और विद्यार्थियों में संवाद है यहाँ पर बहुत जरूरी, शिक्षक
0: ज्यादा जरूरी
1: है ना, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में जो शिक्षा को बेहतर और अच्छा बनाता है, प्रभावशाली बनाता है, तो उसमें आपस में एक दूसरे से बात करना, जिसे कहते हैं ना संवाद करना, बहुत जरूरी है। क्योंकि जो विद्यार्थी के अंदर अपनी जिज्ञासाएं और समस्याएं होती हैं वो खुल करके अपने शिक्षक से बात करते हैं, अपने उनके सामने अपनी बात रख पाते हैं, और शिक्षक भी जो होते हैं उनकी कठिनाइयों को समझकर उनका सही मार्गदर्शन दे सकते हैं, और इससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास भी बढ़ता है और सीखने में रुचि भी पैदा होती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और इतने सारे संदेश आए हैं इस विषय पर हमारे सभी श्रोताओं के। एक संदेश ये कहता है कि शिक्षा का ज्ञान और विद्यार्थी की जिज्ञासा जब संवाद के माध्यम से मिलते हैं तो सीखने की प्रक्रिया और भी सुंदर बन जाती है। संवाद न केवल ज्ञान बढ़ाता है बल्कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच विश्वास और अपनापन भी गहरा हो जाता
1: बिल्कुल।
0: है।
1: और हमारी एक साथी लिखती है कि मैं स्वयं एक शिक्षिका रही हूं, मुझे पता है कि हर विद्यार्थी के मन में अनेक प्रश्न होते हैं, उसके लिए शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संवाद जरूरी है। जब विद्यार्थी बिना डर के शिक्षक से अपनी बात कहता है तब सीखने सिखाने की प्रक्रिया सरल हो जाती है, और संवाद के माध्यम से विद्यार्थी बिना झिझक अपने सवाल, कठिनाइयां और विचार शिक्षक के सामने रखता है। इससे शिक्षक भी विद्यार्थी की रुचि, क्षमता और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, और साथ ही उसकी मानसिक स्थिति के अनुसार ही उन्हें सही सलाह देते हैं। वैसे सही बात है दीपा, जो टीचर होते हैं, हमारे शिक्षक होते हैं, तो ये नहीं कि आप एक तरह से बोल रहे हो और हर बच्चे वही समझे, आपको हर बच्चे की मानसिक स्थिति को समझना पड़ता है, इसको किस भाषा में, सरल भाषा में समझ में आता है, कोई आपकी पहली ही भाषा को समझ जाता है, तो बच्चों के हिसाब से भी हमें समझाना पड़ता है।
0: बिल्कुल। और जैसे ऐसा लगता है उत्तर ही इस बात का आ गया है एक संदेश के द्वारा। कहते हैं कि एक अच्छा शिक्षक केवल पाठ नहीं पढ़ाता बल्कि छात्र को मानसिक और भावनात्मक संबल भी देता है, जिससे छात्र परीक्षा के तनाव या निजी समस्याओं को आसानी से साझा कर पाता है।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए ज्ञानवर्धक संवाद के परिणाम स्वरूप ही श्रीमद् भगवद गीता जैसे महान ग्रंथ की रचना हुई, जो आज भी संपूर्ण मानवता को जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। बहुत अच्छी सी आपने बात लिखी है।
0: बहुत अच्छे से बताया। और ये भी बात दिखी है संदेश के माध्यम से हम तक पहुंच रही है। ये कह रहे हैं कि जब शिक्षक और विद्यार्थी आपस में लगातार बातचीत करते हैं तो छात्रों के मन का डर और झिझक खत्म हो जाता है, और विद्यार्थी बिना किसी संकोच के अपने सवाल और समस्याएं शिक्षक के सामने रख पाते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। और ये बहुत जरूरी, अगर डरते ही रहेंगे तो अपने डाउट्स हैं या हमें कुछ पूछना है, न सिर्फ अपने जो किताबी ज्ञान है उसके लिए नहीं, शैक्षणिक जो ज्ञान है उसके लिए नहीं, कुछ जीवन में भी कभी कुछ ऐसा लगता है ना लाइफ में कि हमें ये करना है नहीं करना है, कभी कुछ ऐसी बातें होती है जो हम घर में नहीं बोल पाते।
1: बिल्कुल।
0: और हम लेकिन टीचर से थोड़े से नजदीक रहते हैं और उन्हें बता पाते हैं तो वो हमें सही राह दिखाते हैं।
1: बिल्कुल। और तुम्हें याद होगा कि क्लास में जब कुछ बच्चे जिनको लगता है कि थोड़ा सा डर लगता है, संकोची होते हैं, याद नहीं हुआ, तो वो पीछे बैठ जाते हैं जा करके। और कभी कभी जो शिक्षक भी इतने होते हैं, ज्ञानी होते हैं, कि वो पीछे वाले से इशारा करते हैं कि

0: सुनते हुए पूछते हैं और उनपे नजर एकदम
1: नजर पैनी होती नजर। तो देखते हैं अब हमारे साथी अगले साथी क्या लिखते हैं। कि लिखते हैं कि शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संवाद शिक्षा की बुनियाद है। जब एक शिक्षक और छात्र आपस में खुलकर बातचीत करते हैं तो न केवल ज्ञान का आदान प्रदान बेहतर होता है बल्कि छात्र का सर्वांगीण विकास भी होता है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का संवाद के क्लासरूम संवाद दस्तावेजों की तरह ही हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक होना चाहिए। ये संवाद ही शिक्षा को बोझिल प्रक्रिया से हटाकर एक आनंददायक अनुभव में बदलता है।
0: बिल्कुल, जब ये पूरा जो यात्रा है शिक्षण की, जब ये ऐसी सुमधुर हो जाए और इतनी निडर वाली हो जाए ना, तो हर चीज हमारे दिमाग में एकदम साफ सुथरी होती है। और इसी बात को आगे एक और संदेश के द्वारा हमारे श्रोता बताते हैं कि जब शिक्षक विद्यार्थी से खुलकर बातचीत करते हैं तो उनकी जिज्ञासाओं और समस्याओं को ध्यान से सुनते हैं तो विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ता है। वे बिना झिझक अपने विचार, प्रश्न और कठिनाइयां साझा कर पाते हैं। वहीं शिक्षक भी विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता और आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। हाँ, अगर बोलेंगे ही नहीं, बच्चे बताएंगे नहीं, तो टीचर्स भी कर क्या लेंगे। बच्चे का बोलना, स्टूडेंट का बोलना बहुत जरूरी है ना।
1: कभी
0: बताएंगे नहीं, चुप ही रहेंगे तो एक शिक्षक या शिक्षिका बता क्या उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो या किस तरह उन्हें बोले या बताएं कि समझाएं।
1: नहीं, कई बार दीपा क्या होता है कि जब बच्चे होते हैं ना, वो डरे सहमे से रहते हैं, उनको बोलने में लगता है मैं ये बोलूंगा तो कहीं गलत ना हो जाए।
0: कभी कभी डरते भी सबके सामने बोलने।
1: तो जो टीचर होते हैं ना, वो इतने जो पारखी होते हैं कि वो समझ भी जाते हैं, उस बच्चे को बुलाकर प्यार से करते हैं तो वो उसको हैंडल भी कर ले जाते हैं, समझा पाते हैं। और शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संवाद रूपी सेतु जरूरी, हमारे साथी लिखते हैं, जो एक दूसरे के विचार रूपी प्रवाह को पार करवाने में आसान बनाता है। आपसी विश्वास बढ़ता है। समय समय पर फीडबैक मिलने पर सीखने की प्रक्रिया आसान बन जाती है। मानसिक तनाव में कमी आ जाती है। प्रोत्साहन भरे शब्द और सहयोग छात्रों में नेतृत्व गुण के साथ आत्मसम्मान को जगाते हैं और बढ़ाते हैं। जैसे हम विविध भारती के साथ कमेंट के द्वारा एक दूसरे के विचार का आदान प्रदान करते हैं और कर रहे हैं। उद्घोषक हमारे विचार को जब वाचा देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात है, आपके विचार जब हमें मिलते हैं तो उसमें भी ज्ञान की बातें छुपी होती है और हम लोग को भी ज्ञान मिलता है। ऐसा नहीं है
0: कि सिर्फ हम कह रहे हैं और आप अनुसरण कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: आपकी कई बातों का हम अनुसरण करते हैं और कई बार तो आपके संदेश हम संभाल के रख लेते हैं।
1: आगे काम आएंगे,
0: है ना। और बात शिक्षक और विद्यार्थी की हो रही थी, जब कोई बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ लेता है या लगता है कि इसका भविष्य बहुत उज्जवल है, तो नहीं, हम सब कहते हैं कि तुम बहुत बड़े बनोगे एक दिन, और हम उस दिन जब तुम बड़े बन जाओगे तो हमारे पास आना या हम तुम्हारे पास आएंगे। तो कहीं
1: देखो, आज हम विश्व शिक्षक दिवस भी है, तो हम लोग ये बातें इसी विषय पर कर रहे हैं कि हमारे शिक्षक हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, हमें आगे जीवन में बढ़ने की राह दिखाते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं ना। तो गुरु से बड़ा कोई नहीं
0: है, और संगीत से बड़ा भी कोई शिक्षक नहीं
1: जी।

0: बिल्कुल नहीं भाई, एक विद्यार्थी कभी अपने शिक्षक को नहीं भूलता है, वो चाहे कितनी भी आसमान की ऊंचाइयां छू ले।
1: बिल्कुल, और भूलना भी नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है आगे बढ़ने का। और जब देखो घर साफ होता है तो हमारा भी मन करता है उसमें आराम से सुकून से बैठने का, और जब बच्चों का कमरा साफ सुथरा होता है तो बच्चों का पढ़ने में भी मन लगता है, है ना।
0: बहुत ज्यादा जरूरी है ये बात, भले छोटी छोटी सी बात हो लेकिन सच में जब साफ सुथरा घर हो, आपकी टेबल बिल्कुल साफ सुथरी हो, आपके करीने से सारी किताबें लगी हैं, आपके जो स्टेशनरी का सामान है सब एक तरफ अच्छे से रखा है, और सुबह का वक्त हो तो सच में ऐसा लगता है बस बैठ जाओ और अब हम अगला एक घंटा नहीं हिलेंगे।
1: तो हम फिलहाल अभी नहीं हिलेंगे, हम कमेंट्स पर जाते हैं। हमारे साथी लिखते हैं कि स्वच्छ घर सिर्फ देखने में सुंदर नहीं लगता बल्कि मन को भी सुकून देता है। साफ सुथरा वातावरण तनाव कम करता है और सकारात्मकता बढ़ाता है। घर की सफाई के लिए रोज थोड़ा थोड़ा समय निकालें, एक ही दिन में पूरी सफाई करने के बजाय छोटे छोटे हिस्सों में काम बांटें। अनावश्यक सामान जमा ना होने दें, जो चीज़ लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुई है उसे जरूरतमंद को देना या हटाना घर को व्यवस्थित रखने का अच्छा तरीका है।
0: बिल्कुल सही कहा, और घर में हर सामान की एक निश्चित जगह होनी चाहिए, इस्तेमाल के बाद चीज़ को वापस उसी जगह पे मंजरी रख देना चाहिए तो अच्छा रहता है। इससे क्या समय की भी बहुत बचत हो जाती है, और सुबह के वक्त अगर कुछ मिनट खिड़की दरवाजे खोलकर ताज़ी हवा और धूप को भी अगर हम घर में आने दें तो देखो घर का वातावरण कितना खुशनुमा महसूस होता है।
1: बिल्कुल, और रसोई की सफाई पर विशेष ध्यान दें, सिंक, गैस चूल्हा, प्लेटफॉर्म और कूड़ेदान को नियमित रूप से साफ करें। बाथरूम की सफाई को टाले नहीं, गीलापन और नमी लंबे समय तक रहने से दुर्गंध और गंदगी बढ़ती भी है। घर में कम सामान ज़्यादा खुली जगह रखने की कोशिश करें। खुला और व्यवस्थित घर मन को भी हल्का महसूस कराता है, और सफाई करते समय पर्यावरण पर ध्यान रखें, जरूरत से ज्यादा पानी और केमिकल वाले क्लीनर इस्तेमाल ना करें।
0: बिल्कुल, और हो सके तो संभव हो तो घर में हरे पौधे लगाने चाहिए घर के, क्योंकि पौधे जो हैं वो घर की सुंदरता बढ़ाने में देखो और वातावरण को भी कितना जीवन बनाते हैं, है ना।
1: बिल्कुल,
0: और सफाई सिर्फ फर्श और फर्नीचर की नहीं हो बल्कि हमारे घर में पर्दे हैं, फिर पंखे हैं, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, ट्यूबलाइट्स होती हैं, फिर घर दरवाजों के हैंडल और पर्दों के वो जो रॉड होता है वो सब कुछ साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, खासतौर पे वो स्विच बोर्ड सबकी उंगलियों के
1: निशान पड़ जाते हैं, बिल्कुल सही पॉइंट तुमने किया,
0: साफ करना बहुत जरूरी है।
1: और घर को सुगंधित रखने के लिए बहुत तेज कृत्रिम खुशबू के बजाय फूलों, कपूर या हल्के प्राकृतिक खुशबू का इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों को भी छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें, साफ सफाई पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, सिर्फ घर की महिलाओं की नहीं है। बिल्कुल सही बात लिखी।
0: अब देखो घर में ऐसा नहीं कि हम बात करें तो सखियां कहेंगी आप तो कह रही हैं ये भी साफ कर दो, ये भी साफ कर दो, नहीं, सबको बांटिए। जब बच्चे जिस दिन घर पे छुट्टी होते हैं उनको कहिए उनका कमरा वो खुद साफ करेंगे, अगर उनका कमरा नहीं भी है तो जिस जगह पे वो बैठते हैं उनका बैग हो गया या जहां पर उनके यूनिफॉर्म्स वगैरह रखते हैं, उनके कपड़े रखे जाते हैं, वो अलमारी का वो खन या शेल्फ, उनको बोल दीजिए कि आपको ये साफ करना है। इसी तरह

0: से घर के जो हमारे श्रोता भाई हैं सुन रहे हैं, थोड़ा सा वक्त निकाल के थोड़ा थोड़ा सा अगर आप मदद कर देंगे ना, आप देखिए घर के महिलाओं के चेहरे पर अगर हंसी ना आई तो
1: हाँ,
0: आप आकर हमें डांट सकते
1: और बढ़िया आपको चाय भी मिलेगी पीने को। अरे हमारे
0: हैं।
1: साथी और लिखते हैं कि सुकून भरे स्वच्छ घर, ये वाक्य पढ़कर ही कितना सुकून मिल रहा है। हमारा घर हो या कार्य क्षेत्र या फिर सार्वजनिक स्थान हो, स्वच्छता हमारे जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। स्वच्छता है जहाँ तंदुरुस्ती है, वहाँ ये लिखते हैं, और स्वच्छता जहाँ होती वहाँ पर बरकत होती। बहुत सही बात कहा है।
0: बिल्कुल सही
1: हमें
0: कहा।
1: घर के साथ साथ जो चीज़ें आपने लिखी जहाँ जहाँ के बारे में, उन सबको भी हमारा ही कर्तव्य है कि हम उन्हें साफ रखें।
0: बिल्कुल। अच्छा, एक और संदेश ये कहता है कि साफ सुथरा सिर्फ घर ही नहीं बल्कि मन की वो अवस्था है जहाँ शारीरिक थकान बहुत कम महसूस होती है, जहाँ धूल नहीं होती वहाँ बेचैनी भी नहीं टिक पाती है, क्या बात है, और जहाँ हर चीज़ अपनी जगह पर है वहाँ विचार भी बिखरते नहीं। ऐसे घर में सुबह की चाय की खुशबू, आंगन की धूप और शाम की शांति ज़्यादा गहरी लगती है, क्योंकि सफाई आंखों को ही नहीं आत्मा को भी हल्का कर देती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और स्वच्छता से घर बड़ा नहीं होता पर दिल बड़ा हो जाता है और वहीं से सुकून जन्म लेता है। सुकून भरे स्वच्छ घर की सबसे बड़ी यह विशेषता है कि वो बोलता नहीं पर सिखाता बहुत कुछ है। और आपके इस कमेंट ने तो ऐसा लगता है सब कुछ, सारी बात
1: बात
0: एक
1: एक उसमें डाल
0: संदेश
1: दी।
0: में समा गई है।
1: बिल्कुल। हम एक साथी लिखते कि मेरी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है, सो उन्हें सैटरडे संडे छुट्टी होती है। कल संडे और सैटरडे उन्होंने पूरे घर की सफाई की, साथ में मैंने और मेरे बेटे ने हेल्प करी। गुजरात में ऐसा मानते हैं कि दिवाली से पहले नवरात्रि में माता रानी जी के आगमन से घर की पहले ही घर की साफ सफाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात लिखा है। अब समय आ ही चुका है कि माता रानी भी आने वाली है, तो हमें तो बहुत ध्यान
0: बिल्कुल।
1: रखना है।
0: और एक और हमारे श्रोता भाई श्रोता ने हमें लिखा है कि गुजराती में उन्होंने एक कहावत लिखी कि सुंदरता पामवा माटे सुंदर सुंदर बनवू पड़े, यानी कि सुंदरता पाने के लिए सुंदर बनना पड़ता है। फिर ये सुंदरता भीतर से हो या बाहर से, दोनों तरफ आवश्यक है। इसी तरह घर जितना बाहर से सुंदर दिखाई देता है उतना ही अंदर से सुंदर हो, तब सोने पे सुहागा हो जाएगा।
1: भाई देखो,
0: बिल्कुल
1: घर भी
0: सही
1: सुंदर
0: कहा।
1: हो, आपका मन भी सुंदर होना चाहिए। आपके घर में जो भी आने वाला है उनका स्वागत आप मन से दिल से करते हैं, तो वो घर और भी सुंदर लगेगा,
0: बिल्कुल
1: है ना। और एक लिखते हैं कि सुकून भरा स्वच्छ घर जब साफ और व्यवस्थित होता है, तो वहाँ कदम रखते ही दिन भर का तनाव और मानसिक थकान जो है पल भर में काफूर हो जाती है। दरअसल सफाई सिर्फ धूल मिट्टी हटाना नहीं, बल्कि जीवन की उलझनों को बुहार कर सुकून को आमंत्रित करना है। एक स्वच्छ घर वो है जहाँ पावन मतलब स्वच्छ घर का वो पावन कोना है जहाँ हमारी आत्मा को सच्चा विश्राम मिलता है। बहुत सुंदर सी बात लिखी है। और बुहार कर जो शब्द आया है, ये बहुत समय बाद सुनने को मिला है, तो बड़ा अच्छा लग
0: अच्छा
1: रहा
0: लग
1: है
0: रहा है। अच्छा, एक
1: ना।
0: शायद ये हमारे श्रोता भाई ने संदेश लिखा है, इन्होंने कहा दोपहर में 2 मिनट निकालकर अपनी मेज़ों की जांच करें, रैपर हैं, रसीदें हैं या कप वहाँ पड़े रहते हैं ना, क्योंकि ऑफिस में भी सुबह की चाय हो ही जाती है, वो सब कुछ हटा दें, सतह को पोंछ लें। दोपहर में टेबल को फिर से सेट करने की से जगह जो है वो ताज़ा रहती है और सामान फैलने से रुकता है। बिल्कुल कि सही कहा भाई। अब
1: कई
0: अगर आप ऑफिस पे
1: पर
0: हैं
1: जी
0: या कुछ ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे आपका सिटिंग जॉब है, तो ये बीच बीच में 2-2 मिनट निकाल के भी ऐसी सफाई खुद कर दें। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को बुलाने के लिए कि ये कप हटाओ, ये ऐसे रखो, इसको ऐसे रखो, खुद कर देते हैं,
1: और
0: देखिए
1: कई बार
0: कितना
1: तो
0: अच्छा
1: क्या होता
0: लगता
1: है
0: है।
1: कि आपकी जो डाइनिंग टेबल है उस पे आपने कोने में सामान रखा है, लेकिन धीरे धीरे होते होते शाम होते होते वो आधी डाइनिंग टेबल को कवर
0: डाइनिंग
1: कर
0: टेबल
1: देता
0: तो ऐसा लगता है
1: है
0: शायद हर
1: ना।
0: घर में डाइनिंग टेबल शायद
1: कोना
0: सामान
1: भरे
0: जमाने
1: रहते
0: के
1: जमाने के लिए,
0: लिए
1: क्योंकि
0: ही
1: लगता है ये चीज़ भी यहीं से ले लेंगे, अचार भी
0: बिल्कुल
1: ले लेंगे, नमक भी ले लेंगे, चटनी भी ले लेंगे।
0: सही कहा।
1: अरे भाई, इसको थोड़ा किनारे रखो,
0: भले आप
1: है
0: रखिए उस पे सामान,
1: ना।
0: लेकिन वो सिर्फ सामान जमा करने की जगह ना हो जाए। कई घरों में ऐसा होता है कि टेबल तो है, डाइनिंग टेबल तो है,
1: हाँ,
0: लेकिन सब नीचे बैठ के खाते हैं, बेशक
1: बिल्कुल,
0: खाइए, लेकिन डाइनिंग टेबल को ऐसा सामान उठा करके ला के जो
1: अलमारी ना
0: बाजार से
1: बनाइए।
0: बिल्कुल
1: चलो एक गीत सुन लेते हैं।
0: चलिए।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी,
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: मंजरी, उस संदेश के बारे में बता रही थी, पढ़ के बताओ।
4: हाँ, हमारे साथी लिखते हैं कि घर छोटा हो या बड़ा हो, घर के सभी सदस्यों की सक्रिय सहभाग से ही साफ सुथरा और सुंदर रहता है। अच्छे संस्कार और आदतों से सजे स्वच्छ सुंदर घर में भगवान के सामने रखा पवित्र मंगल दीप, कोने में रखा सुगंधित फूलों का गमला और आंगन या बालकनी की प्रसन्न तुलसी मंजरी को भी मन को सुकून देती है। बहुत इन्होंने अच्छी सी बात लिखकर भेजी, लेकिन अब हम इस संदेश के साथ में, खूबसूरती के साथ में आगे बढ़ते हुए जिन की ओर चलते हैं कि बड़ी देर से
3: हमने साफ सुथरा कर लिया, सब
4: तो खाना भी तो पका लें,
3: तो बहुत भूख लगी
4: है ना। और हमारे को एक साथी लिख भी रहे थे कि हम जो है छत्तीसगढ़ जाने वाले हैं अक्टूबर में, तो भाई आप जाइए और वहाँ पे जाकर व्यंजन खा के आइएगा
3: और बताइएगा कैसा लगा।
4: तो हमारे एक साथी ने भेजा है, चौसेला छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन है, खासतौर से त्योहार पर बनाया जाता है। इसकी सामग्री है कि चावल का आटा 2 कप, नमक स्वाद के अनुसार, अजवाइन या जीरा 1 छोटा चम्मच, और जो तेल लेना है आप आटा गूंदने के लिए, तलने के लिए वो अंदाज से ले लीजिए, गर्म पानी आवश्यकता के अनुसार। चौसेला बनाने की विधि है कि एक बर्तन में पानी उबालें और उसमें नमक अजवाइन या जीरा मिला लें, उबलते पानी में ही थोड़ा थोड़ा चावल का आटा डालें और चम्मच की सहायता से चलाएं और उसको फिर ठंडा करें। जब मिश्रण जब मिश्रण हल्का गुनगुना हो जाए तब हाथों से थोड़ा सा तेल लगाकर इसे नरम आटे की तरह गूंथ लीजिए और ढककर 10-15 मिनट रखिए और आटे की छोटी लोइयां बनाइए। इन्हें दोनों हथेलियों से दबाकर तेल से चिकनी की गई पॉलिथीन पर रखकर हल्के हाथों से पूरी बनाएं, और या आप चकले पर भी बेल सकते हैं, और एक कढ़ाई में तेल गरम करें और इन चौसेलों को धीमी आंच पर सुनहरा होने तक, क्रिस्पी होने तक तल लें, और इनको आप हरी धनिया की चटनी या टमाटर की चटनी के साथ खा सकते हैं।
3: बिल्कुल, और बफोरी अगर बनाना है तो उसके लिए देखो इसमें मुख्य रूप से रहता है चने की दाल या मिलीजुली दाल, मूंग मसूर की दाल, उससे तैयार किया जाता है ये व्यंजन। तो इसको बनाने के लिए चना दाल या आप मूंग मसूर की दाल मिक्स ले सकते हैं 1 कप, लहसुन की कलियां 5-6, अदरक ले सकते हैं 1/2 इंच मतलब थोड़ा सा, हरी मिर्च आपके अनुसार 2-3 ले सकते हैं, जीरा छोटा सा 1 चम्मच, और हल्दी पाउडर थोड़ी यानी 1/2 छोटी चम्मच, हींग चुटकी भर, नमक आप अपने अनुसार डाल लीजिए, और तड़के के लिए लीजिए सरसों, जीरा, कड़ी पत्ता और थोड़ा सा तेल। बनाने के लिए चने की दाल को 4-5 घंटे या रात भर के लिए पानी में आप भिगो कर रख दो। दाल का पानी निकाल कर उसे बिना पानी के या बहुत कम पानी से डालकर मिक्सी में आपको दरदरा पीस लेना है। पीसी हुई दाल में अब आप लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट, हींग, हल्दी और नमक और जीरा डालकर अच्छी तरह फैट लेना है। अब एक बर्तन में पानी उबालें, उसके ऊपर तेल से चुपड़ी हुई यानी ग्रीस करी हुई जालीदार छन्नी या जो इडली स्टैंड होती है ना वो रखें, इस पर छोटी छोटी पकौड़ियों के आकार में मिश्रण रख दें, इसे ढक कर 10 से 12 मिनट तक या 15 मिनट तक एकदम मीडियम आँच पर भाप में पकाना है, और जब ये बन जाए तो बफरी को बाहर निकालें और एक पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करके राई, जीरा, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च का तड़का तैयार करें, इसे बफोरी पर आप डालिए और फिर देखिए इसका स्वाद कितना अच्छा लगता है।
4: अरे स्वाद तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दीपा, आज तो पक्का मैं ये बनाने वाली हूँ, है ना,
3: बनाने वाली हूँ। तो देखो मैं भी पक्का एक गीत आपको सुनाने वाली
4: हूँ।

0: तो दीपा तुम तो कह रही थी कि गाना सुनाने वाली, मैंने सोचा तुम गा के सुनाओगी।
1: गा के नहीं भाई, जिंदा दिल फिल्म का ये गाना सुनाने वाले।
0: अच्छा,
1: तो सुनाएंगे गाना।
0: चीटिंग करी है तुमने।
1: नहीं नहीं, बिल्कुल कोई चीटिंग नहीं की है। और देखो हाँ। हम भले चीटिंग कर ले, लेकिन
0: घड़ी नहीं करने देगी, है ना?
1: नहीं करने देगी। वो कह रही है चीटिंग का गया समय समाप्त।
0: चलो अब दोनों बहने निकलो। चलो तो सभी को चलते चलते हम लोग कहते हैं नमस्कार करते हैं, विदा लेते हैं। तो सभी को मंजरी और
1: जी
0: दीपा मंजरी का नमस्कार बोलो,
1: और मंजरी का नमस्कार।
0: चलो ठीक है, ओके।
1: कार्यक्रम सखी सहेली के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: श्रोताओं नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पिछले सप्ताह आपने सुना पीसीओडी और आईवीएफ, इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। आइए अब सुनते हैं इसका दूसरा और अंतिम भाग।
1: डॉक्टर साहिबा, आज हम महिलाओं को लेकर उनकी बीमारियों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बातचीत आपसे कर रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं को इन बीमारियों से दोचार होना पड़ता है। डॉक्टर ज्योति, तो अब जीवन के उस पड़ाव की बात करते हैं जिससे हर महिला कभी न कभी गुजरती है
2: जी।
1: और वो समय है मेनोपॉज का।
2: जी।
1: क्या है ये मेनोपॉज और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और किस उम्र में ये शुरू हो सकता है? एक आम महिला भी ये जानना चाहती है कि मेनोपॉज आखिर है क्या।
2: जी, जैसे ये वर्ड बताता है मेनो पॉज, मेनो यानी पीरियड्स, पॉज यानी बंद होना, स्टॉप होना। एक लेडी के ये जर्नी में जब पीरियड बंद हो जाता है इसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। और ये बंद कितना टाइम तक होना चाहिए जब हम उसको लेबल करें एज मेनोपॉज की, एक साल जब पीरियड नहीं होता है उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ, एक साल के बाद ही उसको मेनोपॉज बोलते हैं। उसके पहले अगर पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं उसको हम पेरी मेनोपॉज बोलते हैं। तो बेसिकली पीरियड क्यों बंद हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हर महीने जो अंडा फूटता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, वो जब फूटना बंद हो जाता है यानी ओवरीज में जो एग्स हैं वो टोटली खत्म हो जाते हैं, तो नेचुरली नहीं है तो फूटेंगे नहीं तो पीरियड नहीं आएगा, तो उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। और ये जो पीरियड है उसके पहले का पीरियड जिसको हम पेरी मेनोपॉज बोलते हैं, एक वो टाइम है जब काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। बेसिकली ये समझना ज़रूरी है कि मेनोपॉज में क्या एग्जैक्टली होता है, कि एक जो मैंने बताया अंडे ख़त्म हो जाते हैं, उसके साथ साथ ओवरीज में एक हार्मोन होता है जिसको हम ईस्ट्रोजन बोलते हैं, तो ओवरीज वो हार्मोन सिक्रीट करती हैं। जब मेनोपॉज में जो ईस्ट्रोजन है वो कम्प्लीटली बंद हो जाता है धीरे धीरे, एक्चुअली जो पेरी मेनोपॉज है यानी ईस्ट्रोजन लेवल की प्रमाण मात्रा कम होने लगती है और एक टाइम आता है जब वो टोटली बंद हो जाता है सिक्रीट होना ओवरीज में से, उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं।
1: बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। तो इसकी उम्र क्या होती है, किस उम्र में शुरू हो सकता है?
2: सो एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज इन इंडिया 45-50 ईयर्स है। उसके पहले भी हो सकता है और उसके बाद भी हो सकता है।
1: कई बार बड़ी उम्र की महिलाओं से जब बातचीत होती है तो वो कहती हैं कि उन्हें अभी भी जो है मासिक धर्म होता है।
2: जी जी।
1: तो कई बार सवाल होता है कि अरे आपको भी मेनोपॉज शुरू नहीं हुआ?
2: जी।
1: तो नहीं होता
2: जी,
1: तो इसकी उम्र बड़ी भी हो सकती है।
2: यस, बड़ी भी हो सकती है। सो कभी कभी 55-56 तक भी लेडीज को पीरियड आ सकता है।
1: अच्छा, तो इसका क्या कारण हो सकता है?
2: नहीं, ये जेनेटिक है, मतलब उनके अंडे अभी तक खत्म नहीं हुए हैं तो इसलिए वो अभी भी मेंस्ट्रुएट हो रही हैं।
1: तो अच्छी बात क्या है, सही समय पर मेनोपॉज हो जाना चाहिए या लंबे समय तक आपको मासिक धर्म होता है तो कोई दिक्कत नहीं?
2: कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो अगर पीरियड जल्दी बंद हो जाता है तो वो भी अच्छी बात नहीं है, और बहुत लेट तक भी चलता है तो वो भी अच्छी बात नहीं है। सो इट हैज़ टू बी जो रेगुलर टाइम में होना चाहिए वो टाइम पे हो तो बेटर ही है। तो अगर वो जल्दी बंद होता है यानी 40 के पहले अगर पीरियड बंद हो जाता है उसको हम प्रीमैच्योर मेनोपॉज बोलते हैं, और अगर लेट बंद होता है 58-60 तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। जी, प्रीमैच्योर मेनोपॉज यानी वो जल्दी वो सिम्टम्स आना वो भी लेडी के लिए अच्छा नहीं है। और जब लेट होता है पीरियड, मतलब बहुत लंबे समय तक पीरियड जा रहा है, दैट मीन्स बॉडी में ईस्ट्रोजन अभी भी है लंबे टाइम तक, तो इन लेडीज को थोड़ा सा कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है।
1: यानी कि समय पर मेनोपॉज होना भी बहुत
2: जरूरी है।
1: आपसे महत्वपूर्ण बातचीत हमारी चल रही है डॉक्टर साहिबा, एक गीत सुन लें आपकी पसंद का।
2: जी, चुरा लिया है तुमने जो दिल को।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत आप सुनना चाहती हैं, सुनते हैं ये गीत।
2: चुरा

0: तो जैसे कहते हैं हॉट फ्लैश होना, पसीना आना, चिड़चिड़ापन, ये मूड स्विंग होना जैसे लक्षण भी हमें दिखाई देते हैं, ये क्यों दिखाई देते हैं? इसका कारण मेनोपॉज
1: ही? ये मेनोपॉज ही है। तो इनफैक्ट आई थिंक हम डिस्कस कर सकते हैं मेनोपॉज के उसके लक्षण क्या होते हैं। तो मेनोपॉज, जैसे मैंने बताया कि बॉडी में ईस्ट्रोजन कम होके एक समय बंद हो जाना, वो मेनोपॉज है। पेरी मेनोपॉज टू मेनोपॉज, ईस्ट्रोजन जो ए हार्मोन जो है वो सिर्फ ओवरीज या सिर्फ रिप्रोडक्टिव यानी यूट्रस रिलेटेड या ओवरीज रिलेटेड या गायनाइक रिलेटेड नहीं है। ये ईस्ट्रोजन बहुत सारी ऑर्गन्स पे बॉडी में काम करता है। आई वुड से राइट फ्रॉम योर हेयर टू योर टोनेल्स, मतलब बालों से लेके पाँव के नख तक ये ईस्ट्रोजन काम करता है। तो जब ये फ्लक्चुएशन आने लगते हैं तो हर एक ऑर्गन अफेक्ट होता है, जो शायद लेडीज को पता भी नहीं होता है कि दे आर गोइंग थ्रू।

0: दिस. तो जैसे पीरियड्स जब बंद होने वाले होते हैं या बंद होते हैं, तो लेडीज़ काफ़ी टाइम ये एक बाल गिरना ये एक समस्या उनको हो जाती है कि बाल काफ़ी झड़ रहे हैं, पतले हो गए हैं, टेक्सचर उनका कोर्स हो गया है. ये एक है. फिर चिड़चिड़ापन, जैसे जब आपने बताया ब्रेन पे अफेक्ट करता है, तो मेमोरी लॉस की, अरे मैंने गैस पे कुछ रख दिया है और मैं भूल गई, या मैं ये रूम में आई हूँ लेकिन मैं क्यों आई हूँ मुझे याद नहीं है.
1: अच्छा जी.
0: या तो ये कॉग्निटिव डिसफंक्शन होने लगता है, मेमोरी लॉस होने लगता है, इरिटेबल होना, हॉट फ्लशेस, ये वेजोमोटर मोटर सिम्टम बोलते हैं कि बहुत गर्मी लगना या पसीना पसीना हो जाना या बहुत गर्मी लगने के बाद बहुत ठंडी लगना, ये वेजोमोटर सिम्टम्स हैं. फिर ये दांतों पे भी अफेक्ट करता है, आँखों पे भी अफेक्ट करता है, हार्ट को भी अफेक्ट करता है, आपके बोन्स को भी अफेक्ट करता है, तो मल्टीपल ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करता है. जैसे हार्ट में जो कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट अटैक का जो रिस्क है, वो लेडीज काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड रहते हैं बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन, जो ये हार्मोन जब मेनोपॉज नहीं होता है, जब वो रेगुलर पीरियड्स में रहती हैं, जब ईस्ट्रोजन नॉर्मल मात्रा में रहता है, तो हार्ट को काफ़ी हद तक वो प्रोटेक्ट करता है. हार्ट अटैक के रिस्क लेडीज को पीरियड्स मतलब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में काफ़ी कम रहता है, लेकिन एक बार जब मेनोपॉज आ जाता है तो उनका हार्ट अटैक का रिस्क ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो जाता है.
1: जी अच्छा
0: जी. तो बेसिकली जो लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल, उसमें चेंजेस आने लगते हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं वो टाइट होने लगते हैं, तो हार्ट को जो ब्लड मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है. जो हार्ट अटैक मतलब क्या है कि हार्ट मसल को ब्लड नहीं मिल रहा है, तो हार्ट काम नहीं कर रहा है ठीक से, राइट. तो ये हार्ट में हो सकता है. बोन्स को स्ट्रांग रखता है, यानी बोन्स में जो कैल्शियम डिपोजिशन है उसको रेगुलेट करता है. तो जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं यानी ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं, फ्रैक्चर्स का रिस्क बढ़ जाता है, मसल मास लूज होने लगता है, यानी जो आपकी स्ट्रेंथ है, बॉडी स्ट्रेंथ, जैसे अगर आप 1 किलोमीटर चल रहे थे पहले समझो 15 मिनट में, अभी आपको 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा लग रहा है. आप अभी बोल रहे हैं कि क्यों मुझे ये ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि आपके मसल्स, अब जो सार्कोपीनिया बोलते हैं उसको, कि मसल मास कम हो गया है, तो आपकी मसल स्ट्रेंथ कम हो गई है. तो ये भी एक बड़ी समस्या है. यानी जो अपने सीनियर्स हैं, जो अगर ये चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, मसल ट्रेनिंग नहीं करते हैं, तो काफ़ी टाइम हम देखते हैं व्हीलचेयर में है या बहुत स्लो चल रहे हैं, एज़ कम्पेयर टू उनके जो फॉरेन काउंटर पार्ट्स हैं, जो हमारे अब्रॉड लेने वाले सीनियर सिटीजन्स हैं, वो इस चीज़ को जान के उसको बहुत उस पर ध्यान दे के अपने मसल मास को स्लोली मतलब लॉस बहुत कम होता है, तो वो काफ़ी हद तक, काफ़ी एज तक, 75, 80, 85 तक कितने एक्टिव रहते हैं. तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मसल लॉस, इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं पोस्ट मेनोपॉज. तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, ये एक समस्या हो सकती है मेनोपॉज के बाद. और कैंसर्स के रिस्क भी थोड़ा से बढ़ सकते हैं मेनोपॉज के बाद.
1: अच्छा जी, ध्यान रखना होगा.
0: जी डेफिनेटली
1: ध्यान रखना होगा. जी बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रही हैं कि जिस मेनोपॉज के बाद हम सोचते हैं कि अब बहुत सारी समस्याओं से हम फ्री हो गए हैं, क्योंकि हर महीने महावारी आना महिला को बहुत परेशान कर देता है, और खासतौर से वर्किंग वीमेन के सामने बहुत दिक्कत आती है. तो उसे लगता है कि चलिए अब इन बातों से हम थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे. लेकिन उसके बाद जो समस्याएं आप बता रही हैं कि मेनोपॉज के बाद होने वाली समस्याएं और भी खतरनाक हो सकती है अगर आपने ध्यान नहीं रखा. तो वर्किंग वीमेन के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, अगर वो इस मेनोपॉज के लक्षण से गुजर रही हैं, ऑफिस में भी वो इतना स्ट्रेस उसको होता है, घर पे आके भी काम करना पड़ता है, तो वो अपने स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल में रखे, जो चिड़चिड़ापन उसके स्वभाव में है, आपने कहा कि शरीर में आने वाले जो बदलाव है, आपके अंदर एक सुस्ती आ जाती है, शिथिलता आ जाती है, तो वो किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखे.
0: तो अगर ये सिम्टम्स, मेनोपॉज के सिम्टम्स अगर बहुत सिवियर हैं, तो हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी आर्टिफिशियली हम ईस्ट्रोजन्स दे सकते हैं, जो मैंने बोला कि जिसकी प्रमाण मात्रा कम या बंद हो जाए, जिसके कारण ये मेनोपॉजल या पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स आते हैं, तो हम आर्टिफिशियली उसको रिप्लेस कर सकते हैं, बट डेफिनेटली अंडर द गाइडेंस ऑफ अवर गायनेक ही दे सकते हैं. आप अपने आप से ना लें, क्योंकि उससे कैंसर्स के रिस्क भी ज़्यादा हो सकते हैं. तो इट हैज़ टू बी एब्सोल्युटली अंडर सुपरविजन, आपके डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही होना चाहिए. बट ज़्यादातर इंडिया में विलेजेस में तो आई एम श्योर इतने लोग, ये उनको पता भी नहीं होगा कि ये अवेलेबल है, और शायद वो लेना भी नहीं चाहेंगे, वो एक्सेप्ट भी बहुत ईजिली कर लेती हैं. और दूसरा है कि योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये अगर हम करते हैं, आई कैन नॉट मतलब इस चीज़ का इम्पोर्टेंस मैं तो क्या ही आपको बताऊं, कि अगर ये आप रेगुलरली, जो वर्किंग वुमेन के जो क्वेश्चन आप बता रहे हैं, अगर वो अपने बिजी लाइफस्टाइल में रेगुलर

0: एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, डाइट, इस पे अगर ध्यान दें तो काफ़ी हद तक अपने सिम्टम्स को वो कंट्रोल में रख सकती हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकती हैं, बट एब्सोल्युटली अंडर सुपरविजन।
1: जी बिल्कुल, और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या है ये थेरेपी, क्योंकि आम महिला इससे बिल्कुल अनभिज्ञ है, उसे नहीं मालूम कि थेरेपी होती भी है कि नहीं।
0: जी जी जी।
1: तो डॉक्टर साहिबा, जब हम बात मेनोपॉज की कर रहे हैं, मेनोपॉज के बाद हमें लगा कि ठीक है, अब हम फ्री हो गए हैं किसी भी तरह का मासिक धर्म से, हम अपने आप को मुक्त पा रहे हैं, लेकिन अगर किसी महिला को दोबारा ब्लीडिंग हो कुछ समय बाद, महीनों बाद, तो क्या उसे सामान्य समझना चाहिए या तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसी स्थिति आई है।
0: डेफिनेटली ये काफ़ी कॉमन है कि आपका पीरियड मासिक बंद हो गया है, एक साल, दो साल, तीन साल हो गए, और सडनली चार साल के बाद पीरियड आने लगा है, तो ये आम बात भी हो सकती है कि कुछ भी ना हो जस्ट, या समथिंग एज सीरियस एज कैंसर भी हो सकता है, तो ये डेफिनेटली इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको अपने गायनेक के पास जाके ये इसका सोल्यूशन, सोनोग्राफी अगर करना चाहे वो, या बायोप्सी करना चाहे, तो डेफिनेटली करना चाहिए।
1: जी, तो चलिए गीत आपकी पसंद का और सुनते हैं और उसके बाद इस चर्चा को जारी रखते हैं।
0: मेरा ऑल टाइम फेवरेट दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए।
1: क्या बात है। लेकिन यहाँ आप हमारे मरीजों की जान बचाने आई हैं। गाना हम आपको जरूर ये सुनाने वाले हैं कि दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, उमराव जैन फिल्म से ये गाना
0: आशा भोसले
1: जी, आशा भोसले की आवाज में बहुत सुंदर गजल है, सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहिबा, एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर अब हम आ गए हैं जब बात मेनोपॉज की चल रही है, और आप अभी बता रही थी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी होती है, आम महिला तो बिल्कुल नहीं जानती, और मुझे लगता है पढ़ी लिखी महिलाएं भी बहुत ज्यादा इस विषय पर बातचीत नहीं करती हैं कि क्या है ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो क्या है ये थेरेपी, हम आपसे ही जानना चाहते हैं, और इसे कब लेना आवश्यक हो सकता है?
1: जी, तो जैसे मैंने बताया कि जब मेनोपॉज के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो, जैसे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हॉट फ्लशेस हैं, या पेशेंट को एक्चुअली शी वांट्स कि मेरा वज़न बढ़ रहा है, या मेरी स्किन लूज हो रही है, या मेरे बाल झड़ रहे हैं, या मतलब इफ़ शी इज़ डिमांडिंग कि मुझे रिप्लेसमेंट थेरेपी चाहिए, डिप्रेशन में जा रही है, या ऐसी कोई भी, मतलब अगर पेशेंट को बहुत तकलीफ हो रही है मेनोपॉज के कारण, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस बहुत सिवियर है, मतलब हो रहा है, या उसको फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक्स हैं, तो ऐसे पेशेंट्स अगर वो सामने से पूछते हैं कि हमको लेना है, तो वी कैन डेफिनेटली गिव देम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, अगर पेशेंट के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं तो। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में पैचेस होते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन के पैचेस होते हैं, या क्रीम होती है, या टैबलेट्स होते हैं।
0: अच्छा
1: जी, तो दैट मीन्स आर्टिफिशियली हम ये ईस्ट्रोजन हार्मोन को हम रिप्लेस कर रहे हैं, और इसके साथ हम प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन भी देते हैं जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन को थोड़ा बैलेंस करते हैं, ताकि ईस्ट्रोजन जब ज़्यादा होता है, तो मैंने बताया था कि कैंसर का रिस्क है, मैंने बोला था कि जो लेडीज को लेट पीरियड तक रहता है, तो दे हैव, तो जब अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन एक्शन बहुत लंबे टाइम तक रहता है, तो उनको स्लाइट रिस्क ऑफ कैंसर रहता है, तो हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन भी साथ में दे सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब दिस इज एब्सोल्युटली अंडर सुपरविजन, या प्लेन ईस्ट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, क्रीम्स, पैचेस, या विद ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द, मतलब जो गायनेक जैसे अपने हिसाब से डिसाइड करें,
0: हाँ, डॉक्टर अपने हिसाब से तय करेगा कि किस तरह से ट्रीटमेंट करना है।
1: जी, जी।
0: तो ये कितना लंबा चलता होगा, ये थेरेपी कितने समय तक चलती होगी?
1: मतलब सेफली 2-3 साल तक तो ले सकते हैं, बट अब्रॉड तो विमेन बहुत लंबे टाइम तक भी लेती हैं, 8-10 साल भी ले सकती हैं। जी,
0: तो क्या एक आम महिला इसके खर्च को वहन कर सकती है?
1: यस, देखें, मतलब इतनी भी महंगी नहीं है, बहुत चीप भी नहीं है, बट इतनी भी महंगी नहीं है।
0: तो क्या ग्रामीण महिलाओं की अगर हम बात करें, जो बहुत मेहनत करती हैं, हाड़ तोड़ मेहनत करती हैं, उनके सामने भी समस्या आ सकती है क्या? उनके लिए भी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जरूरी होती है, क्योंकि उन्हें तो इस बात का
1: नहीं आए, जरूरी तो नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि जो ग्रामीण औरतें हैं वो इतनी सहनशील होती हैं, फिजिकल एक्टिविटी इनकी इतनी होती है कि मुझे नहीं लगता है कि उनको खास कोई जरूरत होती है। जी,
0: मतलब उनकी मेहनत ही उनका सबसे बड़ा।
1: यस, और यस, और अब मेहनत है उनकी, जॉइंट फैमिली में रहना, वो एक एटमोसफियर, जो फैमिली, देसी खान पान, देसी हवा, ऑल दैट,
0: ये सभी मिलकर जो उसे मजबूत बना देते हैं। डॉक्टर साहिबा, हम जब बात कर रहे थे कि चेंजेस आते हैं महिला की जिंदगी में खासतौर से, तो गर्भ के दौरान भी उसकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आते हैं, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर। तो प्रसव के बाद होने वाले हार्मोनल बदलाव कौन कौन से होते हैं, और उनके शरीर को या मन को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं?
1: आफ्टर डिलीवरी बेसिकली एक हार्मोन होता है जिसको हम प्रोलैक्टिन बोलते हैं, ये हार्मोन के कारण ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीट होता है।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: जी,
1: तो ये एक हार्मोन जो प्रोलैक्टिन है वो बढ़ जाता है, ताकि माँ अपने बच्चे को दूध पिला सके, और ये कुछ हद तक गर्भ निरोधक भी है, मतलब नेचर ने इतना ब्यूटीफुल ये बनाया है कि अभी ये बच्चे को फीड करिए, बच्चा छोटा है तो प्रेग्नेंट जल्दी नहीं होना चाहिए।
0: जी, जी।
1: और दूसरा कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी एक अभी काफ़ी ज़्यादा मैं देख रही हूँ, स्पेशली सिटीज़ में, कि डिलीवरी के बाद वुमन डिप्रेस हो जाती है, उसका फिगर चला जाता है, उसकी नींद ठीक से नहीं हो रही है, बच्चे की देखभाल 24/7 बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलना, तो ये भी एक थोड़ा हार्मोनल चेंजेस के कारण ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर ये है तो फिर ये डेफिनेटली एड्रेस करना चाहिए, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। डिलीवरी के बाद अगर बच्चे को ध्यान नहीं दे पा रही है, बहुत रो रही है, या कुछ भी ऐसे लक्षण डिप्रेशन के लक्षण हो, तो उसको नज़रअंदाज ना करके उसकी ट्रीटमेंट लें।
0: यानी डिलीवरी के बाद भी इतने सारे हार्मोनल चेंजेस आ सकते हैं कि महिला डिप्रेशन

0: किचन में भी जा सकती
1: जी.
0: है. ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई और इसको हम लोग बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, या वही जो हमने कहा कि व्यवहार पर इसको टाल कर
1: जी.
0: बात को वहीं खत्म कर
1: जी,
0: देते
1: जी,
0: हैं
1: जी.
0: कि कुछ समय परेशान है, बच्चे को संभाल रही है, घर संभाल रही है
1: जी.
0: या वर्किंग वीमेन है, ऑफिस का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है
1: जी.
0: बच्चे का स्ट्रेस है, ये सब मिलकर इसको डिप्रेशन में ले आए हैं.
1: जी.
0: लेकिन इसके पीछे कुछ और कारण भी
1: यस,
0: हो सकते हैं
1: यस.
0: जिसके बारे में हमें सोचना होगा.
1: यस एंड डेफिनेटली अगर ऐसा लगता है तो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को मिलना बहुत जरूरी है.
0: बहुत अच्छी बात. और महिला को अपने हार्मोन की जांच कब कब करवानी चाहिए?
1: वैसे तो हार्मोन की जांच रेगुलरली करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं आप, तो थायराइड है, प्रोलैक्टिन है, और अगर आपकी एज में भी 30 के ऊपर है, 30-32 के ऊपर है, तो AMH करके एक टेस्ट आता है कि अंडे की क्वांटिटी कम तो नहीं है, तो ये हार्मोनल टेस्ट हम कर सकते हैं. बट अदरवाइज ऐसे रेगुलरली कोई हार्मोनल टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती.
0: अच्छा,
1: एक बहुत मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी काफ़ी हद तक सिटीज़ में है,
0: जी
1: जो शायद ग्रामीण क्षेत्र में कम हो क्योंकि खेती बाड़ी करते हैं, सन एक्सपोजर काफ़ी है. बट सिटीज़ में विमेन कहाँ धूप में जाती हैं, इनफैक्ट वो खुद को प्रोटेक्ट ही करती हैं.
0: महानगरीय व्यवस्था में
1: यस
0: तो और भी ज्यादा
1: जी.
0: दिक्कत है.
1: तो अपना विटामिन डी और विटामिन B12 अगर जांच करवाना ही है अपना रेगुलरली, तो ये दो तो ज़रूर से करवाएं, क्योंकि ये विटामिन डी के डेफिशिएंसी से या B12 की डेफिशिएंसी से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. PCO का प्रॉब्लम भी रिलेटेड टू विटामिन डी डेफिशिएंसी बोला गया है. मतलब बहुत सारे इश्यूज, इनफर्टिलिटी भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिलेटेड कहीं कुछ हद तक है. तो अगर टेस्ट करना है रेगुलरली तो अपनी जो रूटीन टेस्ट, जैसे आफ्टर 40 हम बॉडी चेकअप करवाते हैं. थायराइड इज अनदर हार्मोन जो, अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ थायराइड है, अगर मम्मी को थायराइड है या आप PCO हो, आपको डायग्नोस किया है, तो आई एम श्योर कि गायनेक टेस्ट करेंगी ही थायराइड की, तो थायराइड भी रेगुलरली चेक करवाना चाहिए. जी,
0: यानी हमें हर 6 महीने में या साल भर में,
1: साल भर में इज फाइन,
0: रूटीन चेकअप
1: जी
0: होना चाहिए.
1: जी
0: तो डॉक्टर साहिबा, हम महिलाओं के लिए कोई ऐसा एक लाइफस्टाइल रूटीन बताइए जो अलग अलग उम्र में हमारे हार्मोनल स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकता है और हम स्वस्थ रह सकते हो. ऐसा क्या रूटीन होना चाहिए, लाइफस्टाइल हमारी कैसी होनी चाहिए?
1: कोई भी स्टेज में, चाहे आप युवावस्था में हो या आप मेनोपॉजल हो या आप बच्ची हो, वेरी वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल हर एक स्टेज पे, किशोर अवस्था में भी वैसा ही होना चाहिए और वो कंटिन्यू रहना चाहिए. तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि जल्दी उठना, जल्दी सोना, सोशल मीडिया से थोड़ा सा
0: दूर रहना
1: अपनी डाइट पे ध्यान रखना, खास करके जो अभी आजकल बच्चे हैं जो पैकेज फूड्स, चिप्स ले लिया, रिफाइंड सब कुछ, मतलब पैकेट खोल के प्रिजर्वेटिव वाला ले लिया, वो अवॉइड करें. होममेड फूड, वेजिटेबल्स आजकल लड़कियां नहीं खाती हैं, काफ़ी मदर्स मुझे कंप्लेन करती कि वो वेजिटेबल्स तो खाती ही नहीं है. तो वो अगर नहीं खाएंगे तो डेफिनेटली उसके प्रॉब्लम्स, जो विटामिन की डेफिशिएंसी, काफ़ी मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स, फाइबर की डेफिशिएंसी होने ही वाली है. तो ये रेगुलर एक्सरसाइज यानी एक्टिविटी, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, बच्चे आजकल खेलते भी कहाँ हैं.
0: हाँ, वो खेल बंद हो गया जो हम अपने जमाने में बचपन में खेला करते थे.
1: जी.
0: और इतना खेलते थे डॉक्टर साहिबा कि थकते भी नहीं
1: थक,
0: थे.
1: यस.
0: और घर आकर इतना शानदार खाना खाते थे.
1: यस, और फिर सो जाते थे थक के. यस,
0: चिंता फिक्र नहीं थी, पढ़ाई का इतना
1: बोझ नहीं था. जी जी.
0: और घर का बना हुआ खाना, ना उस वक्त पिज्जा बर्गर तो होते नहीं.
1: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल.
0: और आज तो 2 मिनट जो रेसिपी बन गई है.
1: जी.
0: माता पिता भी चूंकि वर्किंग हो गए हैं तो उन्हें लगता है कि चलिए 2 मिनट में कोई खाना बनता है तो बच्चे को खिला दिया जाए. ये सभी कारण भी मिलजुल कर इन चीजों को देखते
1: हैं. तो ये सब एक्चुअली खान पान, लाइफ स्टाइल, मतलब सोना टाइम पे, उठना टाइम पे, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैं तो ये बोलूंगी कि हम इंडिया से हैं जिसने पूरी दुनिया को योग दिया है.
0: जी.
1: तो हम सबको हर घर में योग होना बहुत ही जरूरी है.
0: बहुत अच्छी बात आप लगातार इस इंटरव्यू में बता रही हैं कि योग, प्राणायाम और ध्यान करना हमारे जीवन में कितना जरूरी है.
1: बहुत. काफ़ी सारे लाइफस्टाइल कोचेस अभी आ गए हैं कि आप अपनी डिजीजेस को प्रिवेंट करें, ना कि वो आए उसके बाद उसके पीछे, यू नो, कि मैं अब रिवर्स कैसे करूं इस चीज़ को. इंडिया इज़ वन ऑफ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. तो ये अगर हम जागरूक हो जाते हैं इस चीज़ के लिए पहले से ही, अपने बच्चों को बचपन से ही इस सिखाते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, और खुद भी वो फॉलो करना है. एक्चुअली आप बोलते हो कि टाइम नहीं है, बट हम सोशल मीडिया देखते देखते कहाँ एक घंटा निकल गया, पता भी नहीं चलता है. तो ये अगर हम एकदम जागरूक होके कि नहीं, मुझे तो ये करना ही है, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफस्टाइल अगर रखेंगे तो डेफिनेटली कुछ तो बदलाव आएगा.
0: बिल्कुल, आपने कहा. और कुछ

0: बहुत ज्यादा बदलाव हम खुद ही महसूस करेंगे और उसके बाद हमें लगेगा कि अरे जिस चीज से हम बच रहे थे या हमने अपने आप को बचाए रखा था वो चीज ही हमारे लिए कितनी जरूरी थी।
1: जी
0: तो एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का और उसके बाद और महत्वपूर्ण बातचीत आपसे करते हैं। कौन सा गीत सुनेंगी आप?
1: There are so many कि तू रूठा तो मैं रो दूंगी सनम।
0: ये गाना सुनना चाहती है, फिल्म जवानी से ये गाना है और आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये बहुत ही खूबसूरत गीत।

0: डॉक्टर ज्योति, हम आपसे अभी बात कर रहे थे जो समस्याएं महिलाओं से संबंधित है उसके बारे में। एक और महत्वपूर्ण बात हम आपसे करना चाहते हैं IVF पर, जिसकी आप विशेषज्ञा हैं। और लेकिन आम महिला, आज भी अगर हम ग्रामीण तबकों की बात करें तो शायद इस बात से बिल्कुल ना वाकिफ हैं कि क्या है ये शब्द और इसके मायने क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि IVF है क्या और किन परिस्थितियों में डॉक्टर किसी दंपत्ति को IVF की सलाह देता है।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछा है आज के करंट सिचुएशन में, स्पेशली सिटीज में।
0: जी,
1: ये क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी थोड़ा बहुत कि प्रेगनेंसी कैसे रुकती है, मतलब द फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी ताकि ये समझ सके।
0: जी।
1: तो नॉर्मली जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर महीने एक

0: अंडा फूटता है आइदर राइट ओवरी या लेफ्ट ओवरी से. यूट्रस है, यूट्रस के साइड में दो ट्यूब्स हैं. हर महीने जब अंडा फूटता है तो जो ट्यूब है उसके एंड पे टेंटिकल्स यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं जो वो एग को सक कर देते हैं और वो एग ट्यूब में चला जाता है. और जब स्पर्म्स एग को मिलते हैं इन द ट्यूब तो एक एम्ब्रियो या बच्चा बनता है इन द ट्यूब. और फिर वो बच्चा को ट्यूब के अंदर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, बाल जैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो वो एम्ब्रियो को पुश करते हैं इनसाइड द यूट्रस. और जब वो चिपक जाता है यूट्रस के अंदर तो वो पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो. तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है इसमें कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है. तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी क्या है. इनफर्टिलिटी मतलब कि जब एक कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है फॉर मोर देन वन ईयर. ये बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि शादी हुई और चलो दो महीने में प्रेगनेंट होना चाहिए या चार महीने में हो ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं है. वन ईयर के बाद भी जब प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है वुमेन उसको हम डिफाइन करते हैं एज इनफर्टिलिटी. तो ये IVF जो है ये एक टेक्निक है इनफर्टाइल पेशेंट्स को प्रेग्नेंट होने में हेल्प करता है. तो इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं.
1: जी,
0: यानी जो बच्चा है वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो ट्यूब्स में होती है नेचुरली नॉर्मली वो हम लेबोरेटरी में करते हैं. तो ये जो नेचुरल प्रोसेस में कहीं पे भी अगर पेशेंट को कोई इशू है जैसे अंडे फूट नहीं रहे हैं या अंडे की प्रमाण मात्रा कम है या ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या यूट्रस में क्षमता नहीं है बच्चा रखने के लिए, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जैसे ट्यूबरक्लोसिस के कारण पूरा यूट्रस कभी कभी अंदर चिपक जाता है तो भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, तो IVF काफी हद तक ये सब प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है.
1: जी.
0: तो पेशेंट्स को नॉर्मली एक अंडा फूटता है. IVF में हमको चाहिए कि पेशेंट्स को कम से कम 4-5 या उससे ज्यादा अंडे फूटे, मतलब हमको मिले. तो उसके लिए पेशेंट को हम आर्टिफिशियली इंजेक्शंस देते हैं. नॉर्मली नेचुरली तो एक ही अंडा बढ़ने वाला है. हम इंजेक्शन दे के ज्यादा अंडा जितने हो सके उतने पॉसिबल अंडे विद इन लिमिट्स ऑफकोर्स हम स्टिमुलेट करते हैं, उसको हम स्टिमुलेशन बोलते हैं. और फिर वो पेशेंट को अंडर एनेस्थीसिया वो अंडों को बाहर निकाल के टेस्ट ट्यूब में या हम बाहर लैब में रखते हैं. फिर हस्बैंड के सीमन को वॉश करके उसके जो स्पर्म्स हैं इंजेक्ट करते हैं, मतलब मिक्स करते हैं. अगर इंजेक्ट करते हैं उसको इक्सी बोलते हैं, एक फर्टिलाइजेशन अगर हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं मतलब तो वो इक्सी बोलते हैं, या नेचुरली हम मिक्स कर दें स्पर्म्स के साथ तो उसको प्लेन IVF बोलते हैं. फिर जो बच्चे जो एम्ब्रियोज जो बनते हैं वो हम लैब में लेबोरेटरी में बनते हैं. नॉर्मली जो ट्यूब में मैंने बताया एम्ब्रियो बनता है, ये IVF में लेबोरेटरी में बच्चा को हम मतलब रखते हैं और फिर जो पेशेंट है उसके यूट्रस में हम ट्रांसफर कर देते हैं आफ्टर अ फ्यू डेज. तो ये प्रोसेस को हम IVF बोलते हैं.
1: जी, तो आपने एक बहुत गहराई से ये बात बताई कि IVF आखिर है क्या. तो क्या हर ऐसे दंपत्ति को IVF की जरूरत होती है जिन्हें गर्भधारण में परेशानी हो रही है, जिसको आपने कहा कि इनफर्टिलिटी बांझपन की जो शिकार दंपत्ति है?
0: तो सबको तो नहीं होती है. कई बार जैसे PCO पेशेंट्स ने अपना लाइफस्टाइल बदल लिया, बहुत वजन है, वजन कम कर दिया. इनफैक्ट इवन 5% अगर वजन कम कर देते हैं, सिर्फ 5%,
1: अच्छा,
0: तो भी काफ़ी हद तक PCO के जो चेंजेस हैं वो रिवर्स हो जाते हैं और पेशेंट नेचुरली भी प्रेग्नेंट हो सकती है. इनफैक्ट कितने सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल बदल के,
1: अच्छा
0: जी, अगर स्मोकिंग है ड्रिंकिंग है वो सब बंद करके, रेगुलर एक्सरसाइज, ये सब जो मैंने बताया, ये सब प्रॉपर डाइट वगैरह फॉलो करके, तो काफ़ी हद तक ये
1: दूर कर दी
0: नेचुरली, यस, विदाउट एनी ट्रीटमेंट. और दूसरे एक IUI करके भी एक प्रोसीजर है जिसमें हम सिर्फ मतलब नेचुरली है प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन वगैरह जैसे मैंने नेचुरल फर्टिलाइजेशन होता है वैसे ही होता है, बट इसमें जो है स्पर्म्स जो है हस्बैंड के स्पर्म्स हम जो नॉर्मली वजाइना में डिपोजिट होते हैं नेचुरल इंटरकोर्स में, यहाँ पे हम IUI में उसको वॉश करके यूट्रस के अंदर डिपोजिट करते हैं, बस खाली उतना
1: फैसिलिटी.
0: हाँ, तो ये एक छोटा सा हेल्प अगर स्पर्म काउंट कम है.
1: अच्छा, तो कैसे दंपति ये विचार करेगा या डॉक्टर विचार करता है कि IUI से ये काम करना है या IVF को अपनाना है, ये डॉक्टर
0: पहले तो
1: करता है?
0: यस, ये पहले सब टेस्ट होती हैं. ये मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ वुमेन के कारण बच्चा नहीं है, ये नहीं है ये जो नॉर्मल हमारे लोग समझते हैं कि लेडी में ही प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं है. काफी हद तक आई वुड से 40% चांस ये है कि हस्बैंड में प्रॉब्लम,
1: ये समस्या होती है. और ये तो
0: कई बार दोनों में होती है, कई बार हस्बैंड में होती है, लेडी में नहीं होती है.
1: लेकिन
0: ब्लेम होता है खास करके विलेजेस में.

0: ये तो बहुत ही
1: जी, जो
0: डिफिकल्ट
1: गांवों में तो इस बात को आज भी माना जाता है कि
0: है।
1: महिला
0: यस
1: बांझ है और
0: जी
1: उसे बड़ा मतलब बुरा सुनना पड़ता है,
0: यस
1: जिसका
0: यस
1: दुख होता
0: यस
1: है। आज इन चीजों से पर्दा उठा है कि महिला और पुरुष दोनों ही बांझपन के कारण हो सकते
0: जी।
1: हैं।
0: और
1: जी
0: एक दूसरा है कि जो अपने कल्चर में बेटा बेटा स्पर्म्स यानी हस्बैंड के जेनेटिक मटेरियल से बनना, जब बेटी होती है तो सब बोलते हैं कि तेरे कारण बेटी हो, बट एक्चुअली हस्बैंड हु इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव आइदर अ गर्ल,
1: बॉय,
0: लड़की या बॉय।
1: जी बिल्कुल सही कहा। इस पर से भी लोगों का अभी काफी जो
0: जी
1: है भ्रम उतरा है। तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का,
0: तेरे मेरे होठों पे चांदनी फिल्म
1: चांदनी फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

0: जो इनफर्टिलिटी है, यानी बांझपन है, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं किसी महिला में या पुरुष में बांझपन, उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए कि जो दंपति उस दौर से गुजर रही है उन्हें आप क्या सलाह देंगी?
1: जो मैंने आपको बताया कि नेचुरल प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ये मैंने आपको बताया। तो कहीं पे भी प्रॉब्लम आ सकती है ना, जैसे ओवरी में प्रॉब्लम है, अंडे फूट नहीं रहे हैं, या ट्यूब ब्लॉक्ड है, या लाइनिंग सही नहीं है, बहुत पतली है, या हस्बैंड में स्पर्म काउंट, एक सर्टेन स्पर्म काउंट होना ज़रूरी है, उससे कम हो तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले ये सब इन्वेस्टिगेट करें, अपने डॉक्टर को मिलें, इन्वेस्टिगेट करें, डिसाइड करें कि प्रॉब्लम कहाँ है, और फिर सही तरह से उसका इलाज करें। मतलब IVF ऐसा नहीं है कि IVF करने से 100% है, इनफैक्ट सक्सेस रेट ऑफ IVF सिर्फ 30-40% ही है। तो ऐसा नहीं है कि IVF से हो ही जाता है सबको,
0: हाँ,
1: तो ये भी बहुत
0: इस बात का भी ध्यान
1: ध्यान
0: रखना है।
1: रखना।
0: तो
1: जी
0: जब बात हम कर रहे थे कि इनफर्टिलिटी के शिकार कुछ दंपतियां हैं, तो क्या ऐसा भी है कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है और उसके बाद जो है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी है?
1: यस
0: इसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं, अगर ये है तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, और हाँ, दंपति में जो मतभेद या मनमुटाव हो जाते हैं इन विषयों को लेकर, उन्हें भी हम दूर करना चाहेंगे।
1: जी प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब कि वो लेडी कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है,
0: अच्छा, ठीक है।
1: यानी कोई अबॉर्शन भी नहीं हुआ है, मतलब कभी भी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मतलब कि आइधर उसको पहले बच्चा है और अब नहीं हो रहा है, या पहले अबॉर्शन हो चुके हैं एक दो या ज़्यादा और अब नहीं हो रहा है, तो उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। हाँ, डॉक्टर के पास जाएं, दोनों अपना टेस्ट्स कराए हैं, और फिर लेट द गायनेक डिसाइड करे कि इनको क्या ट्रीटमेंट। पेरेंटहुड एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ और सिर्फ एक औरत की जिम्मेदारी नहीं है। आजकल विमेन आर वर्किंग, तो वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रही हैं फाइनेंसेस में, घर चलाने में, तो ये एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हस्बैंड को भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए जितना कि एक वुमन को रहना चाहिए। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि मेरे में प्रॉब्लम नहीं है, तेरे में ही प्रॉब्लम है, तो ये एक चेंज होना ज़रूरी है, बिकॉज स्पर्म काउंट जब कम रहता है तो वो एक बहुत बड़ा कारण है कि इनफर्टिलिटी का। तो मतलब अगर प्रॉब्लम हस्बैंड में है और हम वाइफ को ट्रीट करें तो वो कैसे ही प्रेग्नेंट होगी। अगर उनका अल्कोहल या टोबैको सेवन है तो वो भी, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कपल आके हस्बैंड डिस्कस करें, जो भी इश्यूज हैं उसको
0: डॉक्टर के सामने
1: सामने
0: रखें।
1: रखें और फिर उसको से डील करें, क्योंकि ये जॉइंट डिसीजन होना चाहिए कि और दोनों ही रेडी होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जन रेडी नहीं है और एक जन को, दोनों को सेम पेज पे आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली
0: आएंगी,
1: आएंगे।
0: और मेल
1: यस,
0: ईगो यहाँ पर नहीं आना
1: नहीं
0: चाहिए।
1: आना
0: और
1: चाहिए।
0: जब आपको परिवार आगे बढ़ाना है तो दोनों को मिलकर सोचना होगा, डॉक्टर के पास जाकर इस समस्या का हल लेना होगा।
1: ये जो फर्टिलिटी जो है, ये मैक्सिमम जो है ये अपनी 20s और अर्ली 30s में होती हैं। अर्ली 30s यानी 35 के पहले फर्टिलिटी जो है, नेचुरल फर्टिलिटी जो अच्छी रहती है, आप अगर डिले ना करें ज़्यादा प्रेगनेंसी, बिकॉज नहीं तो फिर आपको ट्रीटमेंट की या डॉक्टर की हेल्प की शायद ज़रूरत पड़े, वैसा है। और दूसरे की अगर शादी नहीं हुई है, एक फ्रीजिंग भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, यानी आपके अंडे फ्रीज कर दिए, या आपकी शादी हो चुकी है लेकिन अभी बच्चा नहीं चाहिए
0: नहीं
1: तो
0: चाहते।
1: आप एम्ब्रियो को फ्रीज कर सकते हैं। कि एक बार एक डॉक्टर गायनेक को डेफिनेटली मिल लें, जो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग भी अगर करें, जैसे देर आर सर्टन डिजीजेज लाइक थैलेसीमिया, जो एक ब्लड डिसऑर्डर है जहाँ पे आपके जो बच्चे हैं उनको हर हफ्ते या हर 10 दिन या हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता है, वो थैलेसीमिया। तो वो अगर आप प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर सर्टन टेस्ट करते हैं, तो काफ़ी हद तक ऐसे बच्चे को आप इस दुनिया में आने से प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब आप अवेयर होने चाहिए उस चीज़ के बारे में, सर्टेन इन्फेक्शंस हैं, अगर वो इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में अगर हो जाता है तो बच्चे में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए वो प्रेग्नेंट होने से पहले अपने डॉक्टर के पास जाके कि मुझे अभी प्रेग्नेंट होना है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, विटामिन्स लेने होते हैं, फोलिक एसिड है, विटामिन डी है, ये सब तो ऑलवेज बेटर है कि एक बार एक विजिट करके आए, खास करके अगर आपकी शादी लेट हुई है तो।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई कि इसमें देरी नहीं करनी
1: बिल्कुल
0: चाहिए।
1: नहीं।
0: डॉक्टर साहिबा, चलिए यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, ठीक है? सुनते हैं आपकी पसंद का ही की।
1: चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना।

0: के परामर्श से अपना जीवन यापन करें।
1: जी, तो जैसे हम बोलते हैं कि चाहे औरत हो या मर्द हो, हम 40 साल या 35 साल के बाद सर्टन ब्लड टेस्ट, सर्टन टेस्ट, जो बॉडी चेकअप जो टेस्ट कराते हैं वो तो करानी ही है दोनों को। उसके अलावा एज अ वुमन थोड़े से स्पेसिफिक टेस्ट हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर, थैली के मुंह का कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप टेस्ट होती है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी होती है, और एंडोमेट्रियल और ओवेरियन कैंसर्स के लिए रेगुलर सोनोग्राफी होती है। तो मैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जैसे ही सेक्सुअल एक्सपोजर हो जाता है उसके 3 साल के बाद पैप टेस्ट हर साल कराना चाहिए। पैप टेस्ट एक सिंपल सा टेस्ट है, एक ओपीडी में ही होता है, एक 10 सेकंड भी नहीं लगते हैं पैप टेस्ट के लिए। तो ये हर लड़की या हर वुमन को जाना चाहिए पैप टेस्ट करने के लिए, फॉर सर्वाइकल स्क्रीनिंग फॉर कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जो इंडिया में नंबर वन कैंसर है। सिटीज में ब्रेस्ट कैंसर की प्रमाण मात्रा ज्यादा है, तो उसके लिए है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी एक एक्सरे है, एक टाइप ऑफ एक्सरे जिससे हमको छोटा सा कोई भी गांठ जो वैसे पता नहीं चलता है लेकिन मैमोग्राफी में पता चलता है। इसके अलावा एवरी वुमन हर पीरियड्स के बाद या मेनोपॉज के बाद कि कोई गांठ या निप्पल्स में से कोई डिस्चार्ज आना, कोई ब्लडी डिस्चार्ज आना, या स्किन एक साइड पे खींची हुई है या कुछ भी अलग दिखे अदर देन रूटीन, तो ये सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खास करके आफ्टर 35-40 फॉर ब्रेस्ट कैंसर। एंड सोनोग्राफी जैसे मैंने बताया एंडोमेट्रियल कैंसर और ओवेरियन कैंसर के लिए वन सोनोग्राफी वंस एवरी ईयर ये करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल वुमेन कि रेगुलर चेकअप, जैसे आप अपना हीमोग्लोबिन कराते हैं, थायराइड चेकअप कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल का टेस्टिंग करते हैं, ECG निकालते हैं, अपने आईज टेस्ट करना है ग्लोकोमा के लिए या चश्मे के लिए, स्ट्रेस टेस्ट कराते हैं, ये सब के अलावा ये टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है।
0: बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी कि महिला को आम तौर पर कितना सचेत रहना चाहिए जो आज हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं। डॉक्टर ज्योति शाह, आपने विविध भारती के स्टूडियो में आकर हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी और अपना अमूल्य वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे PCOD और IVF इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहयोग मिला मनीषा सिंह का, तकनीकी सहयोग दिया अनुश्री गुप्ता ने, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

डॉक्टर ज्योति, आज हमने आपसे महिलाओं को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातचीत की है और अब आखिर में कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक आम महिला के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगी कि 40 पार की जो महिलाएं हैं किस तरह से ओवरऑल अपना चेकअप कराएं, साल में, महीने में, छह महीने में किस तरह से अपनी दिनचर्या वो सेट करें, किस तरह से डॉक्टर

0: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है, एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय शाम के 5 बजने को हैं। आकाशवाणी दिल्ली से अब हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के तहत भारत में रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और विकास में अवसर तलाश सकती है। इससे पहले भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणालियों और अवसंरचना क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा ज्यूरिख अप्लाइड साइंसेज विश्वविद्यालय के बीच नवाचार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उद्यमिता में सहयोग के लिए समझौता किया गया। ये समझौते नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामला के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद हुए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय स्विट्जरलैंड संबंधों के लिए राष्ट्रपति गी पहामला की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया था।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पहामला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
2: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत की राजकीय यात्रा पर आए स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के आधार पर दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की राष्ट्रपति पहामला की भावना की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में म्यूनिख नेताओं की बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है। वित्त मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा कि ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इंकार कर दिया। ये याचिका निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान एक तरफा फैसले लेने के आरोपों के संबंध में दायर की गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार के नाम को मंजूरी दी है। नामांकन भरने की अंतिम तिथि कल है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। 5:05 हुए हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्मी गीत।

आप तो ऐसे ना थे। आपने इस फिल्म का गीत सुना, उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी। अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी के साथ उषा खन्ना का गाया हुआ गीत।

ये गीत आपने सुना यसुदास की आवाज़ में। श्रोताओ, फिल्म का नाम था दादा। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया ये गीत।

लता मंगेशकर का गाया आपने आखिर क्यों फिल्म से ये गीत सुना। ये फिल्मी गीत आप सुन रही थी विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोता, इस समय शाम के 5:30 हुए हैं और अब हम आपके लिए प्रसारित कर रहे हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। तो सबसे पहले सुनते हैं सुविचार। भेजने वाले हैं अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी। वो लिखते हैं,
3: जो निश्चल प्रेम में रहते हैं वो छल समझ नहीं पाते और जो छल में रहते हैं वो निश्चल प्रेम नहीं समझ पाते।
2: जी आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
3: तो हमें पहला संदेश मिला है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, बंटी और बबली वर्मा।
3: और बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि, रोशनी

0: और ख्याति सारवा,
1: छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू,
0: और छत्तीसगढ़ हसदा नंबर दो से कमलेश साहू, जितेंद्र साहू और पायल साहू,
1: राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी,
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है।
1: हम उमंग कार्यक्रम में मासिक संस्करण श्रोता संवाद का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस कार्यक्रम से महत्वपूर्ण जानकारी सुनने को प्राप्त होती है। सच मानिए, ये कार्यक्रम जानकारी का महत्वपूर्ण खजाना है। 7 सितंबर के कार्यक्रम श्रोता संवाद में शिक्षा में जेंडर समावेशन विषय पर डॉक्टर श्वेता तंवर जी से अजीत सर जी की बातचीत बहुत अच्छी लगी। शिक्षा में जेंडर समावेशन विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी सरल शब्दों में सुनवाई गई। ये जानकारी सुनवाने के लिए डॉक्टर श्वेता तंवर जी के साथ साथ अजीत जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: अगला संदेश हमें मिला है सहसपुर छत्तीसगढ़ से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू और सती बाई साहू जी का।
1: ईदूग्राम ईदू पोस्ट कारकल तालुका उडुपी जिला कर्नाटक से एच सिद्धार्थ जी लिखते हैं।
0: आप लिखते हैं, आदरणीय कार्यक्रम के बारे में हमारी प्रतिक्रिया
1: जी।
0: स्त्री शिक्षण को आपने प्रोत्साहन देकर महिलाओं में हिम्मत बढ़ाई है। पुराने जमाने में पुरुष प्रधान समाज में सामाजिक कार्यकलाप ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को लोग खारिज करते थे
1: जी।
0: जेंडर डिस्पैरिटी पर आपका श्रोता संवाद बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब सुनिए पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
0: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि दक्षिण गंगोत्री क्या है और ये कहाँ स्थित है।
1: इसका उत्तर है साथियों, दक्षिण गंगोत्री दक्षिण ध्रुव पर स्थित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है।
0: और हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया।
1: इसका उत्तर है, बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री के आर नारायणन द्वारा उसकी माता को दिया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न था, सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के भीतर भूकंप, भूगर्भीय, ज्वालामुखीय और टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों के कारण सुनामी आती है। समुद्र के भीतर भूस्खलन भी इसका मुख्य कारण है।
0: और हमारा अगला सवाल था कि मेघालय शब्द का क्या अर्थ है।
1: मेघालय शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है, मेघ और आलय
0: जी।
1: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो अर्थ बना मेघालय यानी मेघों या बादलों का घर।
0: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए।
1: गांधी जी द्वारा रचित संभवतः सबसे अधिक चर्चित किताब का नाम है, मेरे सत्य के प्रयोग
0: जी। और अब सुनिए आज का प्रश्न, तो हो जाइए तैयार। हमारा आज का प्रश्न है, सूर्योदय की भूमि किस देश को कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: सूर्योदय की भूमि किस देश को कहते हैं।
0: श्रोताओ, 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए
1: जी।
0: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। तो श्रोताओ, अब प्रस्तुत है आज का पहला कार्यक्रम। तो आज के पहले कार्यक्रम के क्रम में हम सुनेंगे हमारा मासिक संस्करण श्रोता संवाद।
1: आइए सुनते हैं श्रोता संवाद।
0: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, प्रस्तुत है उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हर महीने के पहले सोमवार को हम आपके लिए लेकर आते हैं ये विशेष कार्यक्रम, जिसमें हम चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और NCERT द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही विभिन्न पहलों पर। तो आज इस क्रम में हम बात करेंगे NCERT की नई पाठ्य पुस्तकों की। तो श्रोताओं, आपको हम बता दें कि आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर गौरी श्रीवास्तव। आप NCERT के सामाजिक विज्ञान और शिक्षा विभाग की अध्यक्षा हैं। तो प्रोफेसर गौरी श्रीवास्तव, आज के उमंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
2: नमस्कार, आप सभी को स्वागत करती हूँ और आपने समय दिया मुझको सुनने के लिए, इसका मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि विद्यालय में सामाजिक विज्ञान एक बहुत अहम विषय है और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पे हमारी जो पाठ्य

0: पुस्तक है समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के बारे में बताने का कोशिश करूंगी।
1: तो डॉक्टर गौरी श्रीवास्तव, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे, मेरा प्रश्न ये है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में एनसीईआरटी की पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे की विषय वस्तु के बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए और बताइए कि यह सामाजिक विज्ञान से कैसे जुड़ा है।
0: हाँ अजीत जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और मैं पूरा प्रयास करूंगी। आप सभी को पता है, जब हम सामाजिक विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं तो विषय तो समाज से जुड़ा ही होता है।
1: जी
0: दूसरा, समाज और प्रकृति में क्या समन्वय है, उसके बारे में भी हम बताने का कोशिश करते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से।
1: जी
0: और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बल दिया है कि जब भी हम बच्चों को समाज के बारे में बताने का प्रयास करें तो हमें समाज के जो विषय हैं, जैसे आप जानते ही हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र, ये इसका समावेश है। और हम इसको सोशल साइंस कहते हैं, यानी समाज शास्त्र। आप हमारी पाठ्य पुस्तक मिडिल स्टेज की ले लीजिए और आप देखिए कि जितनी भी पाठ्य सामग्री है, भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी, अतीत के चित्रपट, हमारी संस्कृति, विरासत एवं ज्ञान परंपरा, शासन और लोकतंत्र, हमारे आसपास का आर्थिक जीवन से क्या जुड़ाव है,
1: जी
0: इन विषयों को हम अपनी 6ठी, 7वीं, 8वीं में दिए हैं। और उसके अंदर जब आप विषय वस्तु को पढ़ेंगे गहन ढंग से, आप देखेंगे कि उसमें एक लीनियर प्रोग्रेशन है, यानी

0: संस्कृति, विरासत एवं ज्ञान परंपरा, शासन और लोकतंत्र, हमारे आसपास का आर्थिक जीवन से क्या जुड़ाव है,
1: जी
0: इन विषयों को हम अपनी 6वीं, 7वीं, 8वीं में दिए हैं। और उसके अंदर जब आप विषय वस्तु को पढ़ेंगे गहन ढंग से, आप देखेंगे कि उसमें एक लीनियर प्रोग्रेशन है। यानी कि हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए इतिहास ले लीजिए कि समय सारणी से जो भी घटना घटी है उसके बारे में हमारा विषय वस्तु आपको बताने का प्रयास करता है। साथ ही साथ घटनाओं का विवरण हम जब करते हैं तो हमारा विषय वस्तु आपको जोड़ने की कोशिश करता है, ताकि आपके मन में जिज्ञासा, आपके मन में उस विषय के बारे में और गहन ढंग से कहाँ से लें उसके बारे में, और तीसरा आप किन गतिविधियों के माध्यम से ये विषय को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने प्रकृति आपदा के बारे में आपकी जिज्ञासा हुई, तो प्रकृति आपदा के बारे में आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ सकते हैं, साथ साथ अपने सराउंडिंग्स में देख सकते हैं कि क्यों ये घटती है और हमें क्या करना चाहिए।
1: जी
0: इसी तरह हमारे पाठ्य पुस्तक में आप देखिए, जो विषय हमारे भूगोल से जुड़ा है, हम बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारी जो
1: प्राकृतिक संसाधन कह ले,
0: हमारी प्रकृति संसाधन है वो क्या है, और साथ साथ हम बताने की कोशिश करते हैं उसकी संरचना हम कैसे करें। ताकि आज आपने सुना होगा हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो छोटी छोटी गतिविधि से हम कैसे अपनी ये धरोहर का संरक्षण करें। जब आप पाठ्य पुस्तक उठाते हैं और ये विषय पढ़ते हैं, हमारी संस्कृति, विरासत एवं ज्ञान परंपरा, तो एक गौरव जैसी भावना आती है कि हमारे भारतवर्ष में ये विषय कितना अहम था। हमारे जितने भी पर्सनालिटीज थे, आप कोई भी विषय ले लीजिए, उन्होंने गहन ढंग से अध्ययन करके, विज्ञान के क्षेत्र में ले लीजिए, साहित्य के क्षेत्र में ले लीजिए, कितनी अच्छी बातें बताई जो आज भी प्रासंगिक हैं और मनुष्य को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी आगे ले जाता है। साथ साथ प्रकृति के बारे में भी बताने का प्रयास किया जाता है, क्यों और क्या, ऐसे सवालों का जवाब भी हमारी ज्ञान परंपरा में आपको मिलेगा जब आप हमारी पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे।
1: जी,
0: अनेकता में एकता एक ऐसा पाठ है हमारी सभ्यता संस्कृति में जुड़ा है हमारे पाठ्य पुस्तक में, जहाँ मानचित्र के माध्यम से बताने की कोशिश की कि हमारे जो रीति रिवाज हैं या हमारे जो फेस्टिवल्स हैं वो विभिन्न तो होते ही हैं, लेकिन हर विभिन्नता में एक एकता की भी
1: भावना
0: आती है। और हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको एक सूत्र में जोड़ करके हमारी विकसित यात्रा, सभ्यता और संस्कृति का भी एक बहुत अहम स्थान है, और हमारी पाठ्य पुस्तकों में इसको अच्छी तरह से 6वीं, 7वीं, 8वीं में दर्शाया है। इसको कृपा करके पढ़िए और अपने प्रांत में भी देखने की कोशिश कीजिए कि इसको हम कैसे मनाते हैं, कब मनाते हैं और किस तरह से हम उससे जुड़े रखते हैं। कितने समय से ये शुरू हुआ, लेकिन आज भी हम उसको बड़े ही धूमधाम से इसको मनाते हैं, गाना गाते हैं। और आप देखिए, आज हम लोग की जो हेरिटेज है, आर्ट है, कितना लोग इसको लोकप्रिय ढंग से अपने जीवन में इसको उतारते हैं। और बच्चे, आप लोग तो अपने प्रोजेक्ट वर्क में भी इसका समावेश करते हैं, और ये सारी चीजें आपको हमारी पाठ्य पुस्तक में मिलेगी। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में भी चर्चा किया गया, कौन कौन से विभिन्न कार्य करते हैं हमारे भारतवर्ष में, उसके बारे में भी चर्चा की गई है। और साथ साथ ये भी बताया गया है कि बार्टर से आज मोनेटाइजेशन में हमारी यात्रा कैसे रही, साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में भी विभिन्न ढंग से बताया गया है, तो हमारी पाठ्य पुस्तक में ये भी आप पाएंगे। और लोकतंत्र के बारे में भी अच्छी तरह से बताया गया है। तो ये एक जुड़ाव जो हमारी सामाजिक विज्ञान को बनाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे हम इसको पढ़ें, एग्जाम्पल्स कैसे हम दे सकें, और साथ ही साथ जब हम विश्लेषण करें तो तथ्यों के आधार पे हमें निष्कर्ष पे आना चाहिए, ना कि केवल पढ़ करके। क्योंकि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो हमारे NEP 2020 में दिया गया है, वो भी आप तथ्यों का पहले एकत्रित करिए, उनका विश्लेषण

0: करिए, तब आप नतीजे पे आ सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ये भी हमारे पाठ्यपुस्तक में दिया है, गतिविधि कई दी हैं जो आप कर सकते हैं और खुद जुड़ सकते हैं इस विषय से, क्योंकि जब हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं तो हमारे जीवन से जुड़ा है। कुछ ऐसे हमारे पाठ हैं जो अतीत से जुड़े हुए हैं, लेकिन अतीत को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक हमारा ऑब्जेक्टिव है सामाजिक विज्ञान का, कंटिन्यूटी एंड चेंज, किस तरह से हम धीरे धीरे प्रगति किए और क्या बात है कि कुछ चीज आज भी प्रासंगिक है, उसको हम लेते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, जैसे हमारी आर्ट है, संगीत है, हमारी सभ्यता संस्कृति है,
1: अलग अलग कलाएं हैं हमारी,
0: अलग अलग कलाएं हैं, इन सबको हम आज भी जोड़ते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें खुद को गौरव महसूस कराते हैं और हमारी आइडेंटिटी को, इंडियननेस को स्ट्रेंथन करने का कोशिश करते हैं।
1: जी तो प्रोफेसर गौरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े विस्तार से इस पाठ्य पुस्तक के बारे में जानकारी दी। मेरा एक प्रश्न और है आपसे, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये होने जा रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे, इस पुस्तक को पढ़ाने के लिए आप शिक्षकों को किस प्रकार का निर्देश देना चाहेंगे?
0: देखिए, मैं भी शिक्षक रह चुकी हूँ और मेरा अपना मानना है कि हम विधि को बहुत ही सरल ढंग से और बाल केंद्रीय अगर हम बनाते हैं तो बच्चे का जुड़ाव होना चाहिए। कक्षा में हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि बच्चों को हम समय दें कि वो प्रश्न करें, अपनी जिज्ञासा के बारे में औरों को भी बताने की कोशिश करें, क्योंकि आप एक किरण बच्चों के अंदर लाते हैं कि ये विषय केवल पढ़ने का ही नहीं है, समझने का भी है, और आप खुद उसके साथ संवाद करें, क्योंकि बुक तो आपके सामने है लेकिन जब आप उसको आंखों से भी पढ़ेंगे, उसका अध्ययन भी करेंगे और उसको चर्चा करेंगे, इसका मौका आपको बच्चों को देना होगा। हम सब मानते हैं कि क्लास का समय जो है निर्धारित होता है, लेकिन उसको हम कैसे पढ़ाएं, कैसे पढ़ाने के लिए आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज कर सकते हैं, यानी जो भी विधि पाठ में दी गई है उसको हम एक टीचिंग एड के माध्यम से बता सकते हैं, बच्चों का समावेश कर सकते हैं क्लास में, बच्चों को मौका देना चाहिए कि वो अपनी बात बताएं, एक चर्चा करने का मौका मिले उनको, साथ ही साथ उनको हम डिबेट करने का मौका दें। और अगर हमने कोई पाठ के बारे में बताया, सभ्यता और संस्कृति मान लीजिए हमारी पाठ है, तो हम बच्चों को आसपास के जो ऐतिहासिक स्थल हो या हम बच्चों को भौगोलिक स्थिति के बारे में बता रहे हैं, तो उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कहते हैं, यानी उनको विजिट कराने की बहुत जरूरी
1: जरूरत है, उनको
0: लेके जाएं। और हमारा प्रयास ही होता है कि मान लीजिए गांव में कोई अच्छा आर्टिजन है या कुम्हार है, लोहार है, इनसे बच्चों का जुड़ाव होना चाहिए, जिससे उनको पता चले कि ये जो कार्य हैं, ये कार्य कितने मुश्किल हैं और इनकी जो उन्होंने चीजें बनाई हैं वो आम जीवन से कैसे जुड़ा हो, और इससे बच्चों का जुड़ाव संस्कृति से भी होगा, कार्य से भी होगा, अर्थव्यवस्था से भी होगा। तो आप देखिए, आपने एक लिंकेज बताया, इंटरडिसिप्लिनरी भी बताया, बच्चों को अपने स्थानीय परिप्रेक्ष्य जोड़ने की कोशिश की और साथ ही साथ पाठ को रुचिकर बनाया। बच्चों के अंदर बहुत जिज्ञासा होती है, सपना होता है उनके मन में, और ये आप ही कर सकते हैं। विषय को इतना रुचिकारक बनाइए कि बच्चों को लगे हाँ, समाज शास्त्र में है जिससे हम अपने जीवन को जोड़ सकते हैं। बच्चों के अंदर प्रोजेक्ट बनाने की बहुत जिज्ञासा होती है, मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ और जब भी मेरे क्लास में कोई विषय मुझे अच्छा लगता था तो मैं सोचती थी कैसा प्रोजेक्ट बनाऊं, क्या पेंटिंग करूं, क्या एक प्रोजेक्ट ऐसे ही बनाऊं या ऑडियो वीडियो बनाऊं। तो ये सारी चीजें अगर उनके मन में आ जाती है तो इसका मतलब वो एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, और जब ऐसा होता है तो समाज का जो अन्य विषय है उससे भी जुड़ाव होता है। इसीलिए आप देखेंगे 6 से 8 की जो पाठ्य पुस्तक है वो एक है, इट इज वन टेक्स्ट बुक, और इस टेक्स्ट बुक की जो विशेषता ये है कि वो जितने भी विषय हैं उसको पिरो करके एक पाठ बुक में बनाया गया है, और इसको आगे करते हुए, क्योंकि आप पे बहुत दायित्व है कि आप इसको कैसे बच्चों तक पहुंचाएं, जब उनको इन सारे विषयों से जोड़िए, पिरोइए और उनके जीवन से जोड़िए, और ये बताने की कोशिश करिए कहाँ थे और हम कहाँ आ गए।
1: जी,
0: ये बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी।

0: चेंज।
1: जी, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे कि हम ये जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं की ओर से कि इस पुस्तक में, यानी समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे, इसी पुस्तक की हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस पुस्तक में महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है, हम ये जानना चाहेंगे।
0: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा अजीत जी।
1: जी,
0: मैं बताने की कोशिश करूंगी कि हमारी पाठ्य पुस्तक में महिलाओं को जहां जहां उन्होंने योगदान दिया है उसको समावेश किया है, और उन्होंने बॉक्स आइटम में भी दिया है, लेख में भी उनका विवरण किया है, और जहां जहां समाज में अपना योगदान दिया है उसके बारे में भी दिया है। जैसे आप ले लीजिए हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 6, कक्षा 6 में जो महिलाओं के बारे में दिया गया है, जैसे कि गार्गी जी के बारे में बताया है, वंदना बहादुर मैदा के बारे में दिया गया है जो एक सरपंच थी अपने गांव की और उन्होंने काफी अच्छा कार्य किया था। इसी तरह कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में कनगी महारानी के बारे में बताया गया है और प्रभावती गुप्ता जी के बारे में भी इस पाठ में दिया गया है। कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में मुतम्मा के बारे में बताया गया है, और हमारी कक्षा 8 की पुस्तक में रानी दुर्गावती, ताराबाई, अहिल्याबाई होलकर, रानी अकब्बा, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, इन महिलाओं का योगदान जिस जिस क्षेत्र में किया है उसके बारे में दिया गया है। और अगर आप हमारी सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक देखें तो आप देखिएगा कि कक्षावार जहाँ जहाँ महिलाओं ने योगदान दिया है उनके बारे में चर्चा किया गया है, और ये क्यों किया गया है, ताकि आपको भी प्रोत्साहित किया जाए, ताकि आप एक खोज करिए कि ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने समाज में गहन योगदान दिया है, पर कुछ कारणवश, जिनको हम कहते हैं लेसर नोन, उनके बारे में भी आप एक प्रोजेक्ट बनाइए, ताकि आपको खुद एहसास होगा कि जब भी समाज विकास के रास्ते पे चला, महिलाओं का योगदान हमेशा ही रहा। और आज भी आधुनिक भारत में भी आप देखिए कि हमारी महिलाएं किन किन क्षेत्र में कामयाबी के ढंग से अपना योगदान दे रही हैं। आर्मी में भी देख लीजिए, नेवी में देख लीजिए, पायलट देख लीजिए, जिनको पहले हम कहते थे अनकन्वेंशनल रोल,
1: कार्य के किसी भी क्षेत्र में आजकल महिलाएं देखी जा सकती हैं,
0: क्षेत्र में
1: जी
0: उनका योगदान है। और हम बहुत गर्व के साथ भी कहना चाहते हैं कि हमारी एक पाठ्य पुस्तक फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग के में, जब भी पुस्तक आप उठाइए तो खेल के क्षेत्र में महिलाओं का क्या योगदान है वो बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है। तो आप देखिए कि पाठ्य पुस्तक में विजुअल कंटेंट में महिलाओं का समावेश है, जिसको हम कहते हैं जेंडर इंक्लूसिवनेस।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर गौरी जी कि आप हमारे स्टूडियो में आई और एनसीईआरटी की इस विशेष पाठ्य पुस्तक के बारे में आपने बड़े विस्तार से जानकारी दी। तो श्रोताओं की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और हमारी आशा है कि इसके द्वारा हमारे श्रोता बहुत लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद अजीत जी, आपने मुझे मौका दिया। हम अपने सारे श्रोताओं का धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे सुना, पर मैं और धन्यवाद आपको दूंगी जब आप हमारी पाठ्य पुस्तक पढ़िए और एक यात्रा में जाइए कि हम और इसको अपने जीवन से कैसे जोड़ें। तथ्यों को एकत्रित करिए और कोशिश करिए कि पाठ में आप और क्या जोड़ सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से। धन्यवाद सभी को, आपको अजीत जी
1: धन्यवाद। तो श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रोता संवाद। तो अब सुनते हैं आज का अगला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है आम का पेड़।
1: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बच्चों को पौध रोपण के लिए प्रोत्साहित किया गया है तथा बताया गया है कि मात्र पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी लगातार देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है।
0: आम का पेड़।
2: गर्मियों के दिन थे, सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे, सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा,
3: ऐसे ही मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा।
2: उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी। वहां आम की एक गुठली डाल दी। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। वह प्रतिदिन सुबह वहां पानी डालता। कुछ दिन बीत गए, आम का पौधा नहीं निकला। उसने पानी डालना बंद कर दिया। एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। सामने ही लाल लाल कोंपलों वाला नन्हा सा पौधा लगा था। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा।
4: अरे वाह, पौधा निकल आया।
2: कहते कहते वह अंदर भागा। अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले आया। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। सौरभ बोला,
4: ये पौधा मैंने लगाया है, ये आम का पौधा है, इसमें खूब मीठे आम लगेंगे।
2: दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए। पिताजी बोले,
5: क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो।
2: प्रिया बोली,

0: पिताजी बगीचे में आम का पौधा निकल आया है। अगले वर्ष हम अपने ही पौधे का आम खाएंगे।
1: उसकी बात सुनकर पिताजी हंसे, फिर प्यार से बोले,
2: अरे बच्चों, छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। 4-5 वर्ष में ये एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसका तना मोटा होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, तब इसमें आम लगेंगे।
1: ये सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई, पर सौरभ तुरंत बोला,
0: कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे, एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे।

0: तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आम का पेड़।
1: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। पर उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
2: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
0: और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु,
0: मुकुल सिंह,
3: वीरेंद्र
0: और हमारी आज की विशेषज्ञ
3: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे हमारे केंद्र से आज शाम 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार समीक्षा। इसके अलावा प्रादेशिक मुख्य समाचार सुनवाएंगे आपको शाम 7:45 पर और फिर रात 10:30 पर भी। इस समय श्रोताओं शाम की 6:00 वाली हैं, तो आकाशवाणी दिल्ली से अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों का संयुक्त उत्पादन और विकास कर सकती हैं।
1: The MOU on Migration and Mobility Partnership.
2: दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, युवा पेशेवरों का आदान प्रदान और गतिशीलता से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच आशय पत्र और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कार्यान्वयन समझौता हुआ।
1: And Department of Science and Technology, our DST.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के लिए राष्ट्रपति गी पामला की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले वर्ष अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया था।
3: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच

0: एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पहमला ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार संघ के बीच संबंधों को और मजबूत करने की राष्ट्रपति पहमला की भावना की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। नई दिल्ली में आज म्यूनिक सम्मेलन में श्रीमती सीतारामन ने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के पर्यटन आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है। नई दिल्ली में आज एडवांटेज भारत एक उभरता वैश्विक रसायन केंद्र विषय पर इंडिया कैम्प के 14वें संस्करण में सुश्री पटेल ने वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं में आ रही बाधाओं के बीच पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग के फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को अदालत ने मंजूरी नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसकी पुष्टि की। शीर्ष न्यायालय ने बदलाव से जुड़े दस्तावेज मंगाए हैं ताकि पता चल सके कि ये बदलाव किसने किए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ स्कूलों के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण नीति के मसौदे पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सरकार देश के शिक्षा तंत्र में मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को एक अहम हिस्सा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार के नाम को स्वीकृति दी। मौसम विभाग ने कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और लक्षद्वीप में भी कल तक बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
1: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
2: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
1: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
3: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
3: जग घूमे थारे जैसा ना कोई,
2: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
1: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें

0: हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172
1: और हमारा ईमेल आईडी है akashwanichandigarh@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: अब हम सुन रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ जो आराधना फिल्म का गाना बोल ने आनंद बख्शी दे ते संगीत है SD परमंदा।
3: तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना।

किशोर कुमार दी आवाज च हुणे तुसी सुन रहे सी आराधना फिल्म दा एक गाना FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। इस वेले शाम दे 6:10 होने वाले ने कुछ ही पलां च प्रसारित किए जाणगे प्रादेशिक समाचार। पहला हिंदी विच 6:10 ते साडे केंद्र तो फिर 6:20 पंजाबी विच आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप पुष्पा ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर सुधार आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में सहायक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिंगापुर में सिंग फोरम के मंच पर विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी के विस्तार के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सैन्य भूमि देने की मांग की। हरियाणा के खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर नायब सिंह सैनी ने खिलाड़ियों को बधाई दी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर जीएसटी सुधार आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, राजस्व बढ़ाने और देशभर के उद्यमों के लिए अधिक अवसर पैदा करने में सहायक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अगली पीढ़ी का जीएसटी कराधान प्रक्रिया को सरल और अधिक पूर्वानुमानित बना रहा है तथा व्यवसायों और परिवारों को भी सहयोग प्रदान कर रहा है। वित्त मंत्री ने अपने लेख में कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार करदाताओं को राहत देने और अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के दोहरे उद्देश्यों को

0: पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक सरल, अधिक पूर्वानुमानित और करदाता हितेशी जीएसटी प्रत्येक क्षेत्र और आकार के उद्यमों को विकसित होने और विकसित भारत की परिकल्पना में योगदान देने में सक्षम बनाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सिंगापुर में सिंह फोरम के मंच पर विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और प्रदेश में निवेश के नए अवसरों पर विस्तृत चर्चा की। इस बैठक में प्रदेश में डाटा सेंटर स्थापित करने, हिसार के आसपास रक्षा क्षेत्र में निवेश, आधारभूत संरचना को और मजबूत बनाने तथा नई तकनीक अपनाने से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार उद्यमियों और निवेशकों को हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी उपस्थित उद्यमियों को हरियाणा आने और यहां निवेश करने के लिए आमंत्रण दिया। श्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि सरकार निवेशकों के हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहेगी और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। बैठक में पानीपत और गुरुग्राम आवासीय क्षेत्र के विकास संबंधी विषयों पर भी गहन मंथन हुआ। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी नागरिक अस्पताल के विस्तार को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर सैन्य भूमि देने की मांग की है। आज अंबाला छावनी में पत्रकारों से बातचीत में ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन्होंने कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर यह मांग की।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मिलकर मैंने अंबाला छावनी का सिविल अस्पताल के विस्तार के लिए साथ लगती आर्मी की भूमि लेने की बात की है, क्योंकि जब ये छावनी बसी थी उस वक्त यहाँ की पॉपुलेशन 30-40 हजार होगी, तो उसके हिसाब से उन्होंने अस्पताल के लिए जितने जगह रखी थी, अब इसकी पॉपुलेशन होगी 3-4 लाख, तो जगह कम पड़ रही।
0: श्री विज ने कहा कि अस्पताल के लिए कुछ परियोजनाएं मंजूर हुई हैं, पर उनका काम भूमि न होने के कारण नहीं हो पा रहा है।
1: कुछ प्रोजेक्ट हमारे पास भी हुए, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कैंसर अस्पताल के तीमारदारों के लिए धर्मशाला बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए दिए हुए। ऐसे ही स्पाइन इंजरी सेंटर जो सारे हरियाणा में कहीं भी नहीं है, वो भी अम्बाला छावनी के लिए मंजूर हुआ है, परंतु जगह नहीं है।
0: उन्होंने कहा कि अब पूरे दस्तावेजों के साथ सैन्य भूमि लेने की शर्तों के अनुसार रक्षा मंत्रालय से पत्राचार किया जाएगा। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने जापान में आयोजित एशियाई खेलों में दमदार प्रदर्शन करके लौटे हरियाणा के खिलाड़ियों का दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल 32 पदक जीते हैं, जिसमें 14 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। खेल मंत्री ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने ये पदक जीतकर हरियाणा की खेल शक्ति का लोहा मनवाया है। हरियाणा के खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।
2: जापान में एशियन गेम्स जिनमें भारत ने 85 पदक जीते हैं, जिनमें से 21 स्वर्ण पदक शामिल हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि इनमें से 32 पदक हरियाणा ने जीते हैं, जिसमें हमारे बेटी बेटियों ने 14 स्वर्ण पदक जीते हैं। आपने सिर्फ पदक नहीं जीते, देश के तिरंगे और हरियाणा के मान को बढ़ाया है।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने कहा है कि महाविद्यालयों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में खाली पदों का सर्वेक्षण कराया गया है और भर्ती के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग को भी लिखा गया है। वे आज हांसी में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बैठक में कुल 10 शिकायतें रखी गई और 7 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया, जबकि 3 शिकायतों को आगामी कार्रवाई के लिए लंबित रखा गया है। शिक्षकों के तबादले को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता हर शिक्षक को उसकी पसंद के स्टेशन पर भेजने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने जनप्रतिनिधियों को लोगों

0: समस्याओं के हल के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने को कहा।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों से ये कहा कि आप लोग जनप्रतिनिधि हो, लोगों की समस्या के लिए आप अपना सर्वश्रेष्ठ दें। बहुत बड़ी बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही, प्राकृतिक खेती की जाए, नहीं तो ना ये जमीन बिल्कुल बंजर हो गई है, जमीन जहर उगलने लगी है, हमारे परिवार सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है। अगर हमें सुरक्षित रहना है तो प्राकृतिक खेती की तरफ जरूर लोगों को अवेयर करना चाहिए।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज गुरु नानक देव जी के ज्योति जोत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के माध्यम से दुनिया को सत्य, करुणा, मानवता और सद्भाव का संदेश दिया। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, भेदभाव, जातिगत ऊंच नीच और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ निडर होकर आवाज उठाई। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रेम, करुणा, सेवा, सत्य, भाईचारे और परस्पर सम्मान पर आधारित गुरु नानक देव जी का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज सिख पंथ के संस्थापक एवं प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के ज्योति ज्योत दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि जीवन और उपदेशों के माध्यम से समस्त मानवता को प्रेम, भाईचारे, सत्य और सेवा का मार्ग दिखाया है। पानीपत की अनाज मंडी में धान खरीद को लेकर जिला उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने आज पानीपत अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। उनके साथ उपमंडल अधिकारी मनदीप कुमार भी मौजूद रहे। जिला उपायुक्त ने मार्केट कमेटी और गोदाम निगम के अधिकारियों के साथ धान खरीद से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विशिष्ट ने कहा कि उन्होंने धान खरीद के लिए पोर्टल की व्यवस्था की जानकारी अधिकारियों से ली और मंडी में मौजूद किसानों से भी बातचीत कर खरीद प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की।
2: सारी व्यवस्थाएं ठीक है, कोई समस्या नहीं है। कुछ सफाई का जरूर आढ़तियों ने कुछ कंप्लेंट की है, उस पर हम काम करेंगे। आज से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने भी अपना हेल्प डेस्क लगा दिया है। किसी भी किसान को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे अगर कोई भी कोई समस्या आती है तो उसका भी तुरंत निदान किया जाएगा।
0: उन्होंने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। सेवा संकल्प अभियान के तहत आज उपमंडल हथीन के गांव उटावड़ में सेवा सेतु शिविर के दौरान नागरिकों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं विभागीय सेवाओं की जानकारी दी गई। हथीन के उपमंडल अधिकारी हरिराम ने बताया कि शिविर में योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र लाभार्थियों को आवेदन करने की प्रक्रिया भी समझाई गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर सुधार आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में सहायक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिंगापुर में सिंह फोरम के मंच पर विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अम्बाला छावनी के विस्तार के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सैन्य भूमि देने की मांग की। हरियाणा के खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर नायब सिंह सैनी ने खिलाड़ियों को बधाई दी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए।
3: नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: एनी रात गए SMS? KYC अपडेट करो नहीं तो खाता ब्लॉक हो जाएगा। लिंक ते क्लिक कर दा, ब्लॉक ना हो जाए किते।
5: रुको, चेक कितना लिंक सिक्योर है, सेंडर तोड़ा बैंक है। KYC अपडेट ले अनजान लिंक खोलना मतलब चोरों वास्ते अपना दरवाजा खोलना। फर्जी KYC अपडेट लिंक तो बचो। RBI कहता है,
6: जानकार बनो ते सचेत रहो।
7: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब दे मुख्यमंत्री दफ्तर नाल संबंधित कथित भ्रष्टाचार अते नकदी बदले तबादले मामले दी CBI जांच दे हुकम दित्ते। पंजाब कैबिनेट वालों आज रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी RTA बिल 2026 मंजूर। जलंधर नेड़े बंगा फगवाड़ा शाहरा ते बस पलट जाण कारण 4 व्यक्तियों की मौत अते 16 जख्मी। पंजाब ने दोबारा खून दान करन वाले

0: निरपेक्ष सेवा के संकल्प को धरातल पर मूर्त रूप दिया जा रहा है। आज हम बात करेंगे जनसेवा से देश सेवा की कड़ी में शुरू की गई आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। सरकारें सामाजिक सुरक्षा और जन कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जैसी योजनाओं का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। हालांकि किसी भी योजना की सफलता तभी संभव है जब पात्र लोगों तक उसकी जानकारी और लाभ सही तरीके से पहुंचे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध कराया जाता है। सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में इसका लाभ लिया जा सकता है। योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने से पहले और उपचार के बाद की निर्धारित अवधि में जाँच तथा दवाइयों से संबंधित खर्च भी शामिल हैं। इस योजना का दायरा वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय की परवाह किए बिना योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कदम है। दूसरी ओर स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल माध्यम से जोड़ने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल स्वास्थ्य पहचान यानी ABHA की व्यवस्था भी की गई है। हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को आगे बढ़ाते हुए आयुष्मान भारत चिरायु योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी स्वास्थ्य सुरक्षा का दायरा प्रदान किया है। परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों से जुड़ी यह व्यवस्था प्रदेश के जरूरतमंद परिवारों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है। हरियाणा में बड़ी संख्या में परिवारों और नागरिकों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध करवाए गए हैं तथा सरकारी और निजी अस्पतालों के माध्यम से उपचार की सुविधा दी जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जोर इस बात पर है कि आयुष्मान भारत और चिरायु योजना के पात्र मरीज सरकारी अस्पतालों में उपचार करवाने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित हों। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को प्रोएक्टिव होकर काम करने की आवश्यकता है। जिन सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत मरीजों की संख्या बढ़ेगी, वहां चिकित्सकों, सहायक कर्मचारियों और आयुष्मान मित्रों को विशेष प्रोत्साहन देने की व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाओं में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा पैदा कर सकती है। सरकार की ओर से यह प्रयास भी महत्वपूर्ण है कि सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के अंतर्गत उपलब्ध उपचार पैकेजों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि अधिक से अधिक मरीजों को निशुल्क उपचार मिल सकें। आंखों से जुड़ी डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी गंभीर बीमारी को भी सरकारी अस्पतालों में निशुल्क उपचार के दायरे में लाना मरीजों के लिए बड़ी राहत होगी। इंजेक्शन आधारित उपचार की सुविधा उपलब्ध होने से ऐसे मरीजों को समय पर उपचार मिल सकता है और उनकी दृष्टि को बचाने में मदद मिल सकती है। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है। अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता भी जरूरी है। इसी उद्देश्य से चिकित्सकों, रेडियोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट के रिक्त पदों को भरने पर जोर दिया जा रहा है। नियमित भर्ती के साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए खुली भर्ती या आवश्यकता आधारित सेवाओं का विकल्प भी उपयोगी हो सकता है। इससे विशेषज्ञ अपनी सुविधा के अनुसार निर्धारित अवधि और स्थान पर सरकारी अस्पतालों में सेवाएं दे सकेंगे। विशेष रूप से रेडियोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सेवानिवृत्त विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में पंजीकृत विशेषज्ञों के अनुभव का लाभ उनके निकटवर्ती सरकारी अस्पतालों में लिया जाए तो विशेषज्ञों की कमी को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। जरूरत के अनुसार आयु सीमा में उचित छूट देकर अनुभवी चिकित्सकों को फिर से स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना भी व्यावहारिक कदम होगा। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।
1: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਮੀਖਸ਼ਾ FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ

0: की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में फौजी भाई सुनेंगे जयमाला कार्यक्रम।
1: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
4: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश, या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
5: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां, स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
6: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
5: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
6: HIV
5: नहीं पता ना, समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
7: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम जय माला।

अभी आपने कर्मा फिल्म में कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और साथियों को सुना। संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी। अब आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक के स्वर में, गीत है दिल क्या करे, फिल्म का नाम है। जतिन ललित के संगीत निर्देशन में बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: लीजिए सुनिए कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति को फिल्म माशूक में। गौहर कानपुरी के लिए इस गीत की धुन बनाई है श्याम सुरेंदर ने।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जयमाला कार्यक्रम में अब सुनिए भूपिंदर सिंह और सुरेश वाडकर को फिल्म है मासूम। गुलजार के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

कयामत से कयामत तक। लीजिए अब सुनिए अलका याग्निक और उदित नारायण को इस फिल्म में मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने।

0: ਵਈ ਮੋਨੂ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦਾ।
1: ਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਸ ਕਦੇ ਮਾਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
0: ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, HIV ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?
1: HIV
0: ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀਰੇ, ਤਾਂ ਸੁਣ, HIV ਕਿਵੇਂ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਸੂਈ ਸਰਿੰਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੁਰਕਸ਼ਿਤ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ, ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਖੂਨ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ HIV ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2: ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਏਡਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1097 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ।
3: एड्स, HIV ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
4: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
3: पहला, असुरक्षित यौन संबंध, यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
4: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
3: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए
5: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

पप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में अभी आपने अनजान का लिखा गीत सुना। आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की थी, फिल्म थी शराबी। इसी के साथ ही जयमाला कार्यक्रम यही समाप्त होता है।

0: आइए सुने कामनाचंद्रा की लिखी नाटिका परिवर्तन का दूसरा भाग। प्रस्तुत करता है अनुराधा शर्मा।
1: बहुत जन सेवा हो गई, अब तो हमें थकान महसूस हो रही है। रामेश्वर
2: आज्ञा दीजिए गुरुदेव।
1: भैया बाकी लोगों से हम कल मिलेंगे।
2: अभी काफी लोग बाहर खड़े हैं महाराज,
1: उनसे कहो शाम को या कल आए। सारी रात पूजा पाठ और जन्म कुंडली देखी है, अब हम विश्राम करेंगे।
2: ये आज का चढ़ावा है महाराज।
1: यहाँ तकिए के नीचे चाबी पड़ी है
2: जी,
1: मेज पर रखे वो नोट भी उठा लो।
2: अच्छा अच्छा,
1: और सुनो चढ़ावे के साथ सेफ में रखकर चाबी वापस ले आओ।
2: जी अच्छा, जो आ गया। लीजिए प्रभु।
1: चढ़ावे की मिठाई नारियल वगैरह संभाल कर रखो, और भोजन तैयार हो जाए तो हमें उठा देना। हाँ बस अब 2-4 घंटे हम पूर्ण विश्राम करेंगे।

0: पंडित मुफ्त का माल दबाकर बड़ी गहरी नींद आ रही है।
1: मुफ्त का क्यों भगवान? अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है।
0: बुद्धि का प्रयोग झूठ बोलने में, लोगों को ठगने में।
1: ठगना कैसा प्रभु? उनका भविष्य बताता हूँ, उनके मन को शांति देता हूँ।
0: तुम्हें अपना भविष्य मालूम नहीं, दूसरे का क्या बताओगे?
1: अंदाजा लगाता हूँ भगवान, कभी कभार सच भी निकल जाता है।

0: झूठी आशा दिलाकर लोगों को लूटते हो और पंडिताई का दम भरते हो। शर्म नहीं आती?
1: शर्म क्यों आएगी प्रभु, कोई चोरी की है, कोई डाका डाला है।
0: कोई हाथों से डाका डालता है, तुम जबान से झूठी बातों के चंगुल में लोगों को फंसाते हो।
1: प्रभु मैं पंडित हूँ, पंडित भविष्यवाणी करता हूँ।
0: नहीं, तुम धूर्तराज हो
1: प्रभु,
0: झूठ बोलकर लोगों का उल्लू पीटते हो।
1: भगवान,
0: इस बेईमानी की कमाई का करोगे क्या? बच्चे तो है नहीं।
1: तुम्हारे कितने हाथ पैर जोड़े, पूजा अर्चना की, परंतु हमें संतान नहीं दी तुमने, नहीं दी। बहुत निर्दयी हो प्रभु, बहुत निर्दयी हो।
0: जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम्हारे लिए धन दौलत संतान से बढ़कर है, वो मिल गया, अब शिकायत कैसी?
1: इंसान धन दौलत औलाद के लिए ही तो बटोरता है ना प्रभु, जब वो ही नहीं तो धन का क्या करेंगे हम।
0: इस देश में बहुत बच्चे हैं, उन्हें अपना लो, तुम्हारे झूठ और पापों का हिसाब किताब बराबर हो जाएगा।
1: मैंने कोई पाप नहीं किया प्रभु।
0: ये तो समय ही बताएगा, क्या पता तुम्हारा धन चोर ले जाए या तुम्हारे घर में आग लग जाए।
1: प्रभु
0: ये भी हो सकता है तुम्हें लकवा मार जाए।
1: नहीं प्रभु, ऐसा मत करना।
0: मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा, जो भी करेंगे तुम्हारे कर्म करेंगे। बबूल बोकर आम की आशा करना व्यर्थ है, झूठ और धोखे का परिणाम तड़पती हुई जिंदगी या सिसकती हुई मौत कुछ भी हो सकता है।
1: क्षमा प्रभु, क्षमा, अनजाने में अपराध हुआ है, अनजाने में। मैं तो लोगों में आशा और विश्वास जगाने की कोशिश कर रहा था।
0: तो अब जानबूझकर प्यार और सुख बांटो। जनता अज्ञान और गरीबी के चंगुल में फंसी है, उसे अपने धन और बुद्धि की सहायता से ऊपर उठाने का प्रयत्न करो।
1: मैं क्या कर सकता हूँ प्रभु?
0: उन्हें तुम पर विश्वास है, तुम्हारा कहा वो सुनेंगे। ज्ञान बांटो, प्यार बांटो
1: प्रभु।
0: संतान के लिए मन में जो तड़प है उसे अनाथ बच्चों को अपनाकर मिटा लो।
1: जो आज्ञा प्रभु।
0: चारों ओर निराशा और अज्ञान है, आबादी बढ़ रही है, कष्ट बढ़ रहे हैं, फूल से कोमल बच्चे धूल में मिल रहे हैं, और तुम सबसे उदासीन आंखें बंद करके धन बटोरने में लगे हो।
1: प्रभु
0: धिक्कार है तुम पर, अभी संभल जाओ वरना अनंत काल के लिए नरक में तड़पना होगा।
1: नहीं नहीं नहीं, क्षमा प्रभु, क्षमा करो, दया करो, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो, क्षमा करो।
2: आज भी हर दिन की तरह प्रेमी जनों की भीड़ है, लोग बड़ी उत्सुकता से पंडित सर्वदानंद के बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आखिर सुंदर भविष्य की इच्छा किसे नहीं होती, लेकिन ये क्या पंडित जी की चाल और चेहरे के भाव कुछ बदले बदले से लग रहे हैं।
3: पंडित सर्वदानंद की
4: जय,
3: पंडित सर्वदानंद की
4: जय।
5: शांत शांत भाइयों, शांत। जय मेरी नहीं उस प्रभु की बोलो जो सारे संसार का रचयिता है। बोलो हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण।
6: पंडित जी, पंडित जी, मेरे पास भजन कीर्तन सुनने का वक्त नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ, कृपया आप अंदर चलिए।
5: नहीं नेताजी, आज बातें यहीं होंगी।
6: देखिए पंडित जी, मेरी शंका का समाधान तुरंत होना चाहिए, मेरे भविष्य के साथ जनता का भविष्य जुड़ा हुआ है।
5: भविष्य तो ऊपर वाला ही जानता है नेताजी, परंतु हाँ, वर्तमान सुधारने का प्रयत्न हर व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए।
6: क्या कहा
5: श्रीमंत? आज दो टूक बातों का अवसर आ गया है, मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए हैं।
7: पंडित जी, फिर तो भविष्य और ज्यादा साफ दिखाई दे रहा होगा, और ज्यादा साफ।

0: खैतराव का पंडित जी बोलिए ना।
1: साफ तो यही दिखाई दे रहा है कि अतीत पर किसी का वश नहीं, वर्तमान सुधार लीजिए, भविष्य आप ही बन समर जाएगा। छल कपट, झूठ, बेईमानी, क्रोध, अहंकार से ऊपर उठिए, तभी तो प्रभु की कृपा दृष्टि होगी।
2: पंडित, ज्यादा पहेलियां बुझाने की कोशिश मत करो, जो है सो हमारे पास फालतू टेम नहीं है।
1: आपके पास तो सिर्फ करोड़ों रुपया जमा करने के लिए समय है, क्या आप इसे छाती पर रख कर ले जाएंगे करोड़ी मलची?
2: और जो तुमने तिजोरी में माल भरा है उसका क्या करोगे?
1: उसकी चिंता आप न करें, उसका हिसाब किताब मैं अपने गिरधर गोपाल को दूंगा।
0: पर पंडित जी क्या नाटक है?
1: नाटक नहीं, जीवन का कटु सत्य है अभिनेता जी। आप जिस तरह की बेहुदा बकवास फिल्मों में हद से ज्यादा भोंडी एक्टिंग करते हैं, उन्हें कौन देखना पसंद करेगा?
0: अच्छा, कल तक तो मैं चोटी का अभिनेता था और मेरी फिल्में जिन्हें आप कमरे का दरवाजा बंद करके वीडियो पर चार चार बार देखते थे, तो
1: मैं अपनी मूर्खता पर लज्जित हूँ।
3: अपनी मूर्खता पर लज्जित हूँ? अरे मुझे तो लगता है इस पंडित का भेजा भर गया है।
1: सच्ची बात बहुत कड़वी लगती है नेताजी, परंतु आप जैसे लालची स्वार्थी लोग देश का क्या भला करेंगे?
3: पाखंडी पंडित, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर इस बार चुनाव में जीत गया तो मैं तुझे देख लूंगा। अरे कल तक तो हम सबसे झूठ बोल बोल कर ये रकम बटोरता रहा है और आज बगुला भगत बनता है।
1: अतीत तो बिगड़ गया, परंतु वर्तमान सुधारने की इच्छा मन में जागी है। भाइयों, आप सब भी मेरे साथ आइए।
2: जो है शोक, कहाँ कहाँ आना है?
1: सच्चे सुख की खोज में। ये धन दौलत, ये सोना चांदी सब यहीं रह जाएगा, वक्त रहते इसे दीन दुखियों की सेवा में लगा दो। भाइयों,
4: दीन दुखियों की सेवा में लगा दो और हमारे बच्चों का क्या होगा? मेरे बेटे की भविष्यवाणी का क्या हुआ पंडित जी?
1: एक लड़के के चक्कर में पड़कर परिवार बढ़ा रही हो तुम।
4: हमारा परिवार तुम्हारे ऊपर बोझ क्यों बन रहा है पंडित जी?
1: मुझ पर नहीं, इस देश की धरती पर। अरे कुछ तो सोचो, इस बढ़ती हुई आबादी ने हमारी तरक्की के रास्ते में कांटे बिछा रखे है।
4: औलाद नहीं है ना पंडित जी, इसीलिए बहुत ज्ञान बघार रहे हो।
1: कल तक मैं भी अपने को बेऔलाद समझता था, परंतु आज लगता है देश का हर बच्चा मेरा अपना है।
5: ठीक है, अगर आप हर किसी को अपना बच्चा समझते हैं तो जब तक मेरी नौकरी नहीं लगती मुझे अपने आश्रय में ले लीजिए।
1: नरेश, आश्रय लेते नहीं देते हैं। तुम जवान हो, हृष्ट पुष्ट हो, मेहनत करने वालों को काम की कमी नहीं है।
5: आपका मतलब है मैं ठेला चलाने लगूं?
1: क्यों, इसमें बुराई क्या है? शारीरिक परिश्रम से तुम्हारा पेट भी भरेगा और ज्ञान और बुद्धि का विकास भी होगा। खाली बैठकर अपने भाग्य को कोसना कहां की बुद्धिमानी है?
5: आप जैसे पाखंडी को ये उपदेश शोभा नहीं देते।
1: मानता हूं नरेश, मैंने झूठ और अनुमान का सहारा लेकर आपसे पैसा लिया है, मैंने अपराध किया है।
0: ये क्या कर रहे हैं महाराज, बने बने काम को एक पल में नष्ट कर दिया, परसों की मेहनत मट्टी में मिला थी।
6: महाराज महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं, ये कैसा परिवर्तन है?
1: अधीर होने की आवश्यकता नहीं है रामेश्वर, सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते।
2: जो है शो, ऐसे ही ज्ञानी महात्मा बन गए हो तो लौटा दो हमारी धनराशि।
1: लौटा दूंगा, अवश्य लौटा दूंगा, परंतु आप लोगों को नहीं।
3: हमारी चीज हमें मिलनी ही चाहिए, आप इस तरह जनता को धोखा नहीं दे सकते। क्यों भाइयों?
5: हमारी चीज हमें मिलनी ही चाहिए,
2: मिलनी ही चाहिए।
1: सुनिए सुनिए, मैं अपनी सब संपत्ति इस देश के अनाथ गरीब बच्चों की देखरेख में लगा दूंगा। आज से इस आश्रम का नाम बाल सेवा आश्रम होगा। आप सबसे प्रार्थना है कि अपना सहयोग देकर अनुग्रहित कीजिए। देखिए, मैं आप लोगों का भविष्य तो नहीं बता सकूंगा, परंतु इस बाल सेवा आश्रम के आंगन में खेलते

0: शिशुओं का वर्तमान और भविष्य सुधारने में आपकी सहायता अवश्य चाहूंगा। अब तक आप लोग मुझसे आशीर्वाद मांगा करते थे, आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं दीन दुखियों की सेवा में अपना ये जीवन लगा सकूं, परोपकार में आनंद और शांति पा सकूं।
1: परिवर्तन, कामना चंद्रा की लिखी नाटिका का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे अरुण माथुर, राम सिंह, प्रकाश मिश्र, किशन भूटानी, सी एस ख्योरा, किशोर कपूर, अरुण बख्शी, अमरकांत दुबे, श्रीमती हेमलता दीपक और ज्योति शर्मा। तकनीकी सहायक अनंत पेवेकर, प्रस्तुति सहायक कब्बन मिर्जा, प्रस्तुतकर्ता अनुराधा शर्मा।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिनड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, चित्रलोक कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का एक बार स्वागत है दिल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुखविंदर सिंह और रेखा भारद्वाज के गाए युगल गीत से। गुलजार के लिखे इस गीत की धुन बनाई है विशाल भारद्वाज ने। फिल्म का नाम है ओ रोमियो।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

लीजिए सुनिए तुलसी कुमार, आलम खां, ऐश्वर्या मजूमदार और डब्बू मलिक को फिल्म है एक पहेली लीला। कुमार के लिखे इस गीत की धुन बनाई है उजैर जायसवाल ने।

अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए अब सुनिए ट्रैफिक सिग्नल फिल्म का गीत, जिसे गा रहे हैं नुसरत फतेह अली खां। खिलेश शर्मा के लिखे इस गीत की धुन बनाई है

किलो कार्यक्रम में अब सुनिए मोहम्मद इरफान अरिजीत सिंह सैम भट्ट को फिल्म है मर्डर 2। सैयद कादरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है मिथुन ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और आवागमन क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली। आजादी के बाद पहली बार मालवाहक पोत असम से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते बांग्लादेश रवाना। 80 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग फिर शुरू। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच समझौता। क्षेत्रीय हवाई संपर्क मजबूत करने के लिए राज्य में 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। और जर्मनी तथा अमरीका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए नोबेल चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार तथा उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पाहमला ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला से भेंट की। डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पाहमला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण

0: और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और विकास कर सकती हैं। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों देशों के बीच कई समझौते और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए।
1: The MOU on migration and mobility partnership.
2: दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, युवा पेशेवरों का आदान प्रदान और गतिशीलता से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच आशय पत्र और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कार्यान्वयन समझौता हुआ।
1: And Department of Science and Technology, our DST.
0: भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौते के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
3: प्रधानमंत्री मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के बीच बातचीत बहुत व्यापक रही। उन्होंने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, नवाचार एवं AI, रक्षा उत्पादन और परमाणु ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने शांति, कूटनीति और वैश्विक संस्थाओं में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। दोनों नेताओं ने दुनिया में चल रहे संघर्ष की स्थिति पर भी चर्चा की। यूक्रेन की स्थिति को लेकर भारत का रुख बहुत स्पष्ट है कि नई दिल्ली कूटनीतिक समाधान के पक्ष में है। भारत ने इस मामले का कूटनीतिक समाधान तलाशने में स्विट्जरलैंड की भूमिका की भी सराहना की। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के संदेश की बहुत सराहना की कि यह युद्ध का युग नहीं है बल्कि शांति का युग है। सुपर्ण सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि विकासशील देशों को उम्मीद है कि भारत विश्व मंच पर उनकी चिंताओं को मजबूती से उठाएगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में कहा कि भारत विकासशील देशों की खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से जुड़ी चिंताओं के प्रति सजग है। विदेश मंत्री ने कहा कि विश्व के साथ जुड़ने की भारत की व्यापक नीति अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाता है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत अब सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं बल्कि नई तकनीक बनाने वाला देश बनना चाहता है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में आज उन्होंने कहा कि AI ने काम करने, लेन देन और फैसले लेने के तरीकों को बदल दिया है। श्री सिंधिया ने कहा कि टेलीकॉम नेटवर्क आज डिजिटल हाईवे बन चुका है और डेटा AI अर्थव्यवस्था का ईंधन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: को हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट एट AIR News हिंदी और पब्लिक पर एट AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए मेथनॉल ले जाने वाले पहले मालवाहक पोत को झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे लगभग 80 वर्ष बाद ब्रह्मपुत्र नदी को वैश्विक व्यापार मार्ग के रूप में फिर से विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस पहल से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सीधा, पर्यावरण अनुकूल और किफायती व्यापारिक गलियारा शुरू हो जाएगा।
5: भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई जब मिथानॉल की एक खेप डिब्रूगढ़ स्थित बोगीबिल टर्मिनल से बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह के लिए रवाना हुई। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विश्वास व्यक्त किया कि यह टर्मिनल क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति देगा। उन्होंने घोषणा की केंद्रीय सरकार बोगीबिल टर्मिनल पर 200 करोड़ रुपए की लागत से शिपिंग क्षेत्र के लिए एक नए कौशल विकास केंद्र की स्थापना करेगी। यह केंद्र अगले 10 वर्षों में असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा जिससे उन्हें समुद्री और शिपिंग उद्योग में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से इस ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि बागडोगरा में एक नया टर्मिनल भी बनाया जाएगा।
6: आज MOUs में हमने 4 नए एयरपोर्ट बनाने की लक्ष्य हमने रखा है। उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक हसीमारा और कलाईकुंडा में जो सिविल एनक्लेव्स बनाने का, वहाँ पे 2700 मीटर का ऑलरेडी उपस्थित रनवे है जिससे कि दूर की कनेक्टिविटी भी वहाँ से हो सकती है। उसके साथ ही बालूरघाट में जहाँ पे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी लैंड है, वहाँ पे भी हम जो उपस्थित स्ट्रिप है उसको भी

0: एक्सपैंड कर वहां से भी एयर ऑपरेशंस को शुरू करने का एमओयू में शामिल किया है।
1: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार से कोलकाता से यूरोपीय शहरों के लिए सीधी उड़ान शुरू करने और आंदल से प्रमुख गंतव्यों तक पहुंच बढ़ाने का आग्रह भी किया गया है। उन्होंने अयोध्या, तिरुपति और अमृतसर के लिए भी सीधी उड़ान शुरू करने की मांग की। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफ

0: आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को स्वीकृति नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने आकाशवाणी को बताया कि समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थियों को शामिल होने की संभावना है।
1: इस दीक्षांत समारोह में वर्ष 2024, 2025 और 2026 इन 3 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ 3 विद्यार्थियों को उपराष्ट्रपति के हाथ से गोल्ड मेडल दिलाया जाएगा और प्रत्येक वर्ष में जो नामित मेडल है विभिन्न लोगों के द्वारा स्पॉन्सर्ड है 20-20-20 यानी 60 बच्चों को हम गोल्ड मेडल देंगे, 240 PhD स्कॉलर्स को PhD का सर्टिफिकेट देंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा की मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि वंदे भारत रेलगाड़ियों की शुरुआत के जरिए इस परिकल्पना को किस तरह साकार किया गया।
2: 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में आधुनिक परिवहन व्यवस्था की अहम भूमिका है। भारतीय रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ट्रेन देश के अलग अलग शहरों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक रेल सेवा प्रदान कर रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत फरवरी 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। पिछले साल नवम्बर में वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को रवाना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
3: वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही, ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है जिस पर हर भारतीय को गर्व है।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के गौरांग शुक्ला ने वंदे भारत ट्रेन की सराहना करते हुए कहा कि यह ट्रेन आत्मनिर्भर भारत के विजन को दर्शाती है।
4: वंदे भारत आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतीक है। रेलवे के आधुनिकीकरण, स्वदेशी तकनीक और बुनियादी ढांचे में सरकार के निवेश ने वंदे भारत को भारत की तेज, स्मार्ट और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बनाया है।
2: भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को देश के अलग अलग शहरों के बीच बेहतर रेल सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित है और इसे अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। इस समय देश भर में 160 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं और देश के प्रमुख रेल मार्गों पर संपर्क को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। इस वर्ष का नोबेल चिकित्सा पुरस्कार कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में आज इसकी घोषणा की गई। एक रिपोर्ट।
5: तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। ऑप्टोजेनेटिक्स ऐसी तकनीक है जिसमें प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तकनीक से जीवित मस्तिष्क में किसी खास तंत्रिका कोशिका को सक्रिय या निष्क्रिय करना संभव है। इससे वैज्ञानिकों को मस्तिष्क में याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। पीटर हेगे

0: जॉन और जॉर्ज नागेल ने चैन लारोडोप्सिन नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्ल डाइस रोथ अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बायो इंजीनियरिंग, मनोचिकित्सा और व्यवहार विज्ञान के प्रोफेसर हैं, जबकि पीटर हेगेमन जर्मनी के बायोफिजिसिस्ट और जॉर्ज नागेल न्यूरोसाइंटिस्ट हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में डिजिटल युग में ई कचरे की चुनौतियां, समाधान और भविष्य की कार्य योजना पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और आवागमन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से अमेरिका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली। आजादी के बाद पहली बार मालवाहक पोत असम से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते बांग्लादेश रवाना। 80 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग फिर शुरू। और जर्मनी तथा अमेरिका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क की गतिविधियां नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए नोबेल चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं उषा अय्यर और आशा भोसले के गाए युगल स्वर से। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आर डी बर्मन ने। फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा।

लीजिए सुनिए मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत, आवाजें मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की फिल्म का नाम अदालत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे से

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए और ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश अनुभव फिल्म से, जिसे गाया है गीता दत्त ने, बोल लिखे हैं गुलजार ने, संगीत कनु रॉय का।

गीता दत्त के गाए इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

0: ਵਈ ਮੋਨੂ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦਾ।
1: ਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਸ ਕਦੇ ਮਾਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
0: ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, HIV ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?
1: HIV
0: ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀਰੇ, ਤਾਂ ਸੁਣ, HIV ਕਿਵੇਂ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਸੂਈ ਸਰਿੰਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੁਰਕਸ਼ਿਤ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਖੂਨ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ HIV ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2: ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਏਡਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1097 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ।
3: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
4: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
3: पहला, असुरक्षित यौन संबंध, यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
4: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
3: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

0: कोई माने ना माने, मैं तो कहता हूँ उनको खुदाओं के खुदा। मेरा यार मेरा प्यार, मेरा यार मेरा प्यार, वो तो आँखों में खुमार लेके आया है। हसीन वादियों
1: अपने दौर की संगीतकार रही जद्दनबाई और सरस्वती देवी के बाद एक अंतराल के पश्चात उषा खन्ना का परिचय सुनने वालों से हुआ बतौर संगीतकार। वो फिल्म थी 1959 में बनी दिल देके देखो।
0: प्यार की कसम है न देख ऐसे प्यार से।

उषा खन्ना अरेबिक संगीत से हमेशा प्रभावित रही हैं, लेकिन कोई भी गीत उन्होंने अरेबिक म्यूजिक में पूरी तरह नहीं ढाला, बल्कि उस विधा का हल्का सा पुट अपनी शैली में बांधकर उषा खन्ना ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट मौलिक संगीत रचनाएं बनाई।

उषा खन्ना को फिल्मी या संगीतमय परिवेश तो पूरी तरह हासिल नहीं था, लेकिन उनके पिता मनोहर खन्ना जो ग्वालियर में मुलाजिम थे और 1946 में किसी काम से तत्कालीन बंबई आए जो आज का मुंबई है, तो उनकी मुलाकात जानी मानी अभिनेत्री नरगिस की माँ जद्दनबाई से हुई जो खुद एक संगीतकार थी। जद्दनबाई के कहने पर मनोहर खन्ना ने जावेद अनवर के नाम से कई गजलें लिखीं और वो गीतकार भी बने। इसी दौरान उषा खन्ना को भी संगीत ने प्रेरित किया।

जाने माने संगीतकार ओपी नैयर ने उषा खन्ना की मुलाकात करवाई फिल्म मेकर शशधर मुखर्जी से। उनके लिए उषा जी ने एक गीत भी गाया। मुखर्जी साहब ने इसी दौरान उषा जी की योग्यता को पहचान लिया और उन्होंने उषा खन्ना को संगीतकार बनने की सलाह दी। यही नहीं, शशधर मुखर्जी ने उषा खन्ना को अपनी फिल्म दिल देके देखो के लिए साइन भी किया। फिल्म सुपरहिट रही। उसके बाद मुखर्जी साहब ने उषा खन्ना से अपनी अगली फिल्म हम हिंदुस्तानी का संगीत भी तैयार करवाया।

0: अब चले तो।
1: सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि उषा खन्ना ने मोहम्मद रफी और आशा भोसले के साथ मिलकर अपनी टीम भावना से काम आगे बढ़ाया और इस टिकड़ी ने तमाम हिट गानों का निर्माण किया।

0: लौटाया हूँ।
1: फिल्मकार और गीतकार सावन कुमार टाक का नाम तो आपने सुना ही होगा। इन्होंने अपनी तमाम फिल्मों का संगीत उषा खन्ना से ही तैयार करवाया है। लगातार संपर्क में आने के बाद दोनों ने विवाह भी किया, जो ज्यादा समय टिक नहीं पाया। लेकिन गीतकार और संगीतकार के बतौर दोनों का व्यावसायिक संबंध हमेशा कायम रहा।

दोस्तों, तत्कालीन उभरते गायकों जैसे अनुपमा देशपांडे, पंकज उधास, हेमलता, मोहम्मद अजीज, रूप कुमार राठौड़, शब्बीर कुमार और सोनू निगम को भी उषा खन्ना ने अपने संगीत में गाने का मौका दिया था। दक्षिण के जाने माने गायक के जे येसुदास ने भी उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में बेहतरीन गाने गाए हैं। फिल्म दादा में येसुदास की गई रचना को फिल्म फेयर अवार्ड भी प्राप्त हुआ।

उषा खन्ना ने हिंदी में 150 से ज्यादा फिल्मों के अलावा मलयालम फिल्मों में भी संगीत दिया है। 60 से लेकर 80 तक के दशकों में उन्होंने अपने कर्णप्रिय संगीत से सभी का दिल बहला दिया।

0: क्या दिए।
1: ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जानी मानी संगीतकार उषा खन्ना पर, संपादन और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को इजाजत, नमस्कार।
2: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
3: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
2: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
3: HIV
2: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउन नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
4: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।

0: मिली धड़कन विविध भारती से आप सुनेंगे छाया गीत बस कुछ ही लम्हों बाद।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक रात एक बात लिखूंगी, तेरा नाम साफ साफ लिखूंगी। रोशन चांद ठंडी हवा लिखूंगी, तुझको अपने साथ लिखूंगी। तेरे हाथ में अपना हाथ लिखूंगी, हकीकत में तो तू मिला नहीं हमको। तो अपनी किताबे मोहब्बत में एक मुलाकात लिखूंगी। तू मेरा ना हो सका क्यों, ये सवाल लिखूंगी। तेरे दिल में ना हम समा पाए तो कोई बात नहीं, और हम बस तेरे हैं ये बात लिखूंगी। हर कोई पढ़ सके इतना साफ साफ लिखूंगी। एक रात मैं ये बात लिख दूंगी।
1: मुझे इश्क है तुझी से,

जानते हैं वो, फिर भी अनजान बनते हैं। पूछते हैं हमसे कि आपकी पसंद क्या है, खुद जवाब होकर हमसे सवाल करते हैं। सुनो तुम, खुशबू की तरह मेरी हर सांस में अपना प्यार बसाने का वादा करो। रंग जितने तुम्हारी मोहब्बत के हैं मेरे दिल में सजाने का वादा करो। सिर्फ लफ्जों से इकरार होता नहीं, यक तरफा प्यार होता नहीं। मैं तुम्हें याद रखने की कसम उठाऊं, तुम मुझे ना भुलाने का वादा करो।

दिल की हर धड़कन आपका नाम सुनाती है, आपसे इश्क है बेहद और बेहिसाब, ये बात मेरी खामोशी सुनाती है। एक तुम ही को खुदा से मांगा है, जब भी मांगी कोई दुआ पास आओ, ये इल्तिजा सुन लो, प्यार है तुमसे बेपना सुन लो। इब्तिदा इश्क की हुई तुमसे, तुम हो चाहत की इंतहा सुन लो। इश्क भी तुमसे प्यार भी तुमसे, मेरे इंतजार की राहत मेरे दिल की चाहत हो तुम। आँखों से छलकता जाम हो तुम, मेरी जिंदगी का दूसरा नाम हो तुम, सिर्फ तुम।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। ये मोहब्बतें, ये इनायतें, ये मसर्रतें तेरे नाम, मेरे हम कदम, मेरे हम नशी, ये रफाकतें तेरे नाम। कभी गुमशुदा, कभी रूबरू, कभी आईना, कभी अक्स तू, मेरे हम नवा, मेरी ख्वाहिशें, मेरी मोहब्बतें तेरे नाम। कभी ये हंसी, कभी ये नमी, कभी रंजिशें, कभी कुर्बतें, मेरी जिंदगी की ये सभी हसीन इबारतें तेरे नाम।

मुझे तब भी मोहब्बत थी, मुझे अब भी मोहब्बत है तेरी हर एक आदत से, तेरी बेजा शिकायत से, तेरी राहों में रुकने से, तेरे कदमों की आहट से, तेरी मुस्कुराहट से, तेरी आँखों के जादू से, तेरी बातों की खुशबू से, तेरी दिलकश अदाओं से, तेरे कातिल जफाओं से, मुझे तब भी मोहब्बत थी, मुझे अब भी मोहब्बत है तुमसे।

गए चांद की किरणों, तुम उसको छू कर आओ ना। वो कब क्या करता है, वो जागता है या सोता है, वो शाम को कैसा लगता है, वो रात को कैसा दिखता है, जब सोए तो कैसा लगता है, जब जागे तो कैसा दिखता है। तुम चुपके चुपके जाओ ना, तुम उसको छू कर आओ ना। हम उसके बिना अधूरे हैं और जीना मुश्किल है। कानों में उसके कह दो ना कि कोई याद बहुत उसे करता है। ऐ चांद की किरणों जाओ ना, जरा उसको छू कर आओ ना।

0: साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का, तो आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। पेश ने मुख प्रादेशिक खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वस्तुआं ते सेवावां टैक्स सुधारां दी अगली पीढ़ी आर्थिक गतिविधियां नूं वधाउण विच मदद करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिंगापुर विच सिंह फार्म विच निवेश करन लई वख-वख कंपनियां दे प्रतिनिधियां नूं सद्दा दित्ता। हरियाणा दे ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नूं अंबाला छावनी दे विस्तार लई फौज दी जमीन देण दी बेनती कीती। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के एथलीटा नूं उन्हां दे शानदार प्रदर्शन लई वधाई दित्ती। हरियाणा के सिक्ख्या मंत्री महीपाल टांडा ने कहा कि राज के विद्यक अदारियां विच खाली असामियां नूं भरन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्तूबर नूं गुरुग्राम विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनतक जीवन के 25 साल पूरे होने ते होने वाली विकसित भारत संकल्प सभा विच इकट्ठ नूं वर्चुअली संबोधित करनगे। जापान विच होईयां एशियाई खेडां विच हरियाणा दे 5 खिडारियां ने व्यक्तिगत मुकाबलियां विच सोन तमगे जिते, जदों कि 9 ने टीम मुकाबलियां विच सोन तमगे जिते। एशियाई खेडां विच महिला रिकर्व टीम तीरअंदाजी मुकाबले विच भारत लई सोन तमगा जितण वाली कीर्ति शर्मा दा जींद दे उसदे पिंड रितौली पहुंचण ते शानदार स्वागत किया गया। पलवल पुलिस की CIA टीम ने अज एक नशा तस्कर नूं 13 किलोग्राम 85 मिलीग्राम हैरोइन नाल गिरफ्तार किया। मुख प्रादेशिक खबरां खत्म हुईयां। असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं FM 107.2 MHz दी। थोड़ी ही देर विच तुसी सुनोगे पंजाबी गीतां दा प्रोग्राम सुरसांझ।
2: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
3: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
2: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
3: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
4: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
5: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
6: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
5: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
6: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
5: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
1: सारे सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम विच। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं जसपिंदर नरूला के इस गीत तों।

0: HIV AIDS से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें। सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें। नई सुई का ही प्रयोग करें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
1: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV AIDS फ्री बनाएं। HIV AIDS की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो इस वेले तुसी सुन रहे हो पंजाबी गीतां दा प्रोग्राम सुरसांझ। तो हुण वारी अगले गीत दी। आओ सुनते हैं जस्सी दी आवाज़ विच एक गीत।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे,
1: SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
2: आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो इस वेले तुसी सुन रहे हो पंजाबी गीतां दा प्रोग्राम सुरसांझ अपने रेडियो दोस्त काजल दे नाल। आउन सुन दिया प्रोग्राम दा अगला गाना जैसी बीती आवाज़ विच।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पहमलान ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमलान का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क सहित कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान से भेंट की। डॉ. जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पहमलान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली में ने आज इसकी घोषणा की गई। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल ने चेनरो रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज से 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से जीतने के बाद अब 5 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए मैदान में उतरेगी। दोनों टीमों के बीच पहला T20 मैच कल लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा।